सुप्रभात। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026। माफ कीजिएगा, आज तिथि है शक संवत 1948 के वैशाख मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 मई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 5:48 और 45 सेकंड हो रहे हैं। हम हाजिर हैं आपकी सेवा में पहली सवा के कार्यक्रमों के साथ।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: अगर हम विश्व इतिहास पर नजर डालें तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि अपने कर्म से भाग्य बनाने वालों की कमी नहीं है। उन कर्मयोगियों में अटूट साहस, परिश्रम की अनवरत शक्ति और संकल्प बल का होना ही मायने रखता है, और वैसे ही पुरुषार्थी स्वयं के बल पर अपना भाग्योदय कर सके। उन्होंने न सिर्फ अपने भाग्य का बल्कि राष्ट्र के भाग्य का भी निर्माण किया। आज से लगभग 2200 वर्ष पूर्व हमारे देश की गौरव गरिमा सुनकर विदेशियों का आक्रमण शुरू हो चुका था। यदि उस विकट परिस्थिति में चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य ने अपनी कूटनीति से सिकंदर को भारत में प्रवेश करने से न रोका होता तो हमारा देश कब का उस विश्व विजेता के आधिपत्य में आ चुका होता। सिकंदर ने न केवल चाणक्य की नीतियों का लोहा माना, बल्कि वह पूरी तरह टूट गया। चाणक्य रचित कौटिल्य अर्थशास्त्र और चाणक्य सूत्र को राजनीति और अर्थशास्त्र का आधार ग्रंथ माना गया है, जिसे अपने जीवन में आत्मसात करके कोई भी व्यक्ति सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है। चाणक्य बड़ा ही पुरुषार्थी था और अपने पौरुष के बल पर ही उसने भाग्य का निर्माण किया। महर्षि दयानंद ने भारतीय राजनीति, समाज, शिक्षा और दर्शन में नवजीवन का संचार किया। वे महान राष्ट्रभक्त, समाज सुधारक और महायोगी थे। उन्होंने भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता की नींव रखी और जिस आर्य समाज की स्थापना की, उसने अन्याय के विरुद्ध आंदोलन ही खड़ा कर दिया। उन्होंने स्वदेशी प्रचार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर जोर, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, दलित उद्धार, अछूत निवारण और जाति प्रथा निषेध जैसा कार्यक्रम चलाया जो राष्ट्रवाद को पुष्ट करता है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के कायाकल्प में लगा दिया। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर देश का बच्चा बच्चा अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। रूसो अपने नाना के घर पला बढ़ा और पादरी की शिक्षा ने उसके व्यक्तित्व को निखारा। जनता को स्वयं शासित, अपनी इच्छा से समाज कल्याणकारी बनना चाहिए, उसकी इसी धारणा ने प्रजातंत्र को जन्म दिया और सामंत शाही की जड़ हिला दी। आज महान दार्शनिक रूसो फ्रांसीसी राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। दर्शन शास्त्र के गहरे अध्ययन के बाद बालक नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए, जिनसे इन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, और यही बालक नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने गुरु के नाम पर बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अपनी लगन, मेहनत और अभ्यास के बल पर इन्होंने जो यश अर्जित की, उसकी तुलना बेमिसाल है। आज से लगभग 115 वर्ष पूर्व अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय धर्म संस्कृति पर जो आख्यान दिया, उससे उनकी कीर्ति का डंका समग्र विश्व में बज उठा। वे ऐसी शिक्षा के पक्षधर रहे जिससे छात्र पश्चिमी देशों का ज्ञान विज्ञान तो सीखें, मगर उनकी सांस्कृतिक चेतना भारतीय ही रहे। उनका संन्यास

0: धर्म व्यक्ति मुक्ति के लिए नहीं अपितु समाज मुक्ति के लिए था। इनके अलावा योगीराज अरविंद, समर्थ गुरु रामदास, लाला हरदयाल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आदि कर्मयोगी भारत में पैदा हुए, जिन्होंने अपने कर्म से अपना भाग्योदय किया और पूरी देश दुनिया पर छा गए।
1: ये था आज का चिंतन। लीजिए सुनिए कृषि सूचनाएं। विषय है ट्राइकोडर्मा का प्रयोग और वार्ताकार है श्रीनिवास सहाय।
2: किसान भाइयों नमस्कार। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो आपके खेत में पाए जाने वाले हानिकारक जीवों को मारते हैं, नाश करते हैं। उनमें से एक ट्राइकोडर्मा भी है। ट्राइकोडर्मा के द्वारा भी आप खेतों में जैविक प्रबंधन कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा स्वतंत्र रूप से जमीन यानी कि मिट्टी में एवं सड़ती लकड़ी पर पाया जाने वाला एक फफूंद है। इसका उपयोग हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है। इससे निकलने वाले रस से सड़ने वाले एवं जमीन में रहने वाले फफूंद के द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले फफूंद को नष्ट करने में काम आ सकता है। यानी कि ट्राइकोडर्मा द्वारा जो अन्य फफूंद हैं जो कि रोग पैदा करते हैं, उन रोगों के नियंत्रण हो सकता है। फ्यूजेरियम, फाइटोप्थोरा, स्क्लेरोसियम जो मिट्टी जनित फफूंद हैं, उनको ट्राइकोडर्मा नष्ट करता है और पौधे को सुरक्षित रखता है। कुछ रोग जो कि फफूंद के द्वारा फैलते हैं, जैसे फसल और सब्जियों में मृदुगलन रोग, डैम्पिंग ऑफ, जिसमें कि पौधा जो है उगने के साथ ही मुरझाने लगता है और उसका जो धड़ भाग सड़ जाता है और पौधा नष्ट हो जाता है। सब्जियों में जड़ गलन एवं कॉलर सड़न रोग जो कि फ्यूजेरियम मैक्रोफोमिना से होता है। चना एवं मसूर में जड़ सड़न एवं उकठा रोग जो होता है वो भी फफूंद के द्वारा ही होता है। और इन सब रोगों के नियंत्रण में ट्राइकोडर्मा का आप प्रयोग कर सकते हैं इन रोगों की रोकथाम के लिए। ये ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी काम करता है। ट्राइकोडर्मा पौधों में वृद्धि सहायक होता है। इसके उपयोग के कारण फास्फेट एवं सूक्ष्म तत्व पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जड़ अधिक नीचे तक जाने के कारण पौधों में सूखा सहने की क्षमता भी बढ़ जाती है। कीटनाशी का अपघटन भी ट्राइकोडर्मा के प्रयोग से होता है। ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट एवं कार्बामेट कीटनाशी का मिट्टी में अपघटन ज़्यादा होता है। अब आप जान लीजिए कि ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कैसे करेंगे। तो इसके द्वारा बीज उपचार भी किया जा सकता है। यानी कि बीज जनित जो फफूंद होते हैं उनके द्वारा जो नुकसान होता है उससे बचाव हेतु, उस नुकसान से बचाव हेतु ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा फार्मुलेशन जो है यानी कि पाउडर जो है उसे 1 किलोग्राम बीज को उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। नर्सरी का भी आप उपचार कर सकते हैं। 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 लीटर पानी के घोल में आप प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र नर्सरी को उपचारित कर बीज की बुआई कर सकते हैं। मिट्टी उपचार कर सकते हैं। 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम भींगे हुए गोबर खाद में मिलाकर छाया में फर्श पर फैलाकर पॉलीथीन से ढक दें। 3-4 दिन बाद इसे उलट पुलट कर पुनः पॉलीथीन से ढक दें। 7 दिन बाद गोबर खाद मिश्रित ट्राइकोडर्मा को खेत में मिला दें। ट्राइकोडर्मा के 1% घोल को जुताई के कुछ समय पूर्व छिड़काव कर भूमि जनित जड़ गलन, धड़ गलन एवं उकठा रोगों से भी बचाया जा सकता है। तो इस तरह से ट्राइकोडर्मा एक फफूंद है, लेकिन जो हानिकारक फफूंद आपके खेतों में पाए जाते हैं, आपके फसलों को नुकसान करते हैं, उनको ये नियंत्रित करता है। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग आप गमला में भी कर सकते हैं, क्योंकि गमला में जब भी आप पौधे लगाते हैं या शोभाकारी पौधे लगाते हैं, कैक्टस लगाते हैं, तो एक समस्या उसमें बहुत देखने को मिलती है कि आपका पौधा जो है जड़ के पास से यानी कि जैसे अंकुरित हुआ या जैसे वो उसका धड़ भाग है वो लसलसा हो जाता है, वो गल जाता है, फिर पौधा आपका सूख जाता है, मुरझा जाता है। तो इस तरह से इस रोग को भी नियंत्रित करने के लिए यदि आप गमले में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें तो ट्राइकोडर्मा के प्रयोग से ये जो बीमारी है वो नहीं लगेगी। ट्राइकोडर्मा बाजार में आपको पाउडर के रूप में मिलता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि ये फफूंद है, इसका जो जैविक भाग है वो

0: बाजार में आपको पैकेट में मिलता है, उसका आप लेकर के गमले में भी प्रयोग कर सकते हैं, खेतों में प्रयोग कर सकते हैं, बीज उपचार कर सकते हैं, नर्सरी उपचार कर सकते हैं, मिट्टी का उपचार कर सकते हैं। तो इस तरह से जड़ गलन, धड़ गलन, उकठा रोग और मृदु गलन रोग जो है, वो सारे रोग जो हैं इससे आप नियंत्रित कर सकते हैं, अन्य फफूंद को मार सकते हैं।
1: ट्राइकोडर्मा का प्रयोग, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे श्रीनिवास सहाय। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, सुबह के 6 बजने को है और ये समय है हिंदी समाचार का। इसे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: वी हैव अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप विद स्वीडन ऑन डिफेंस।
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
2: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
5: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल

0: चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा, वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिज़ुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं देश वंदना से।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम

यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रामचरितमानस से पाठ। मुख्य स्वर है ए हरिहरण का।

अयोध्या की राजसभा में श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं बहुत आंखें दिखाई, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। ये शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण छा गया।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस से पाठ। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य सूचनाएं। विषय है उच्च रक्तचाप और जीवन शैली। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार और इनसे बातचीत कर रहे हैं अनिल कुमार।

0: अच्छा ली। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार और इनसे बातचीत कर रहे हैं अनिल कुमार तिवारी।
1: श्रोताओं नमस्कार, हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं डॉक्टर राकेश कुमार, जो केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में मेडिसिन विभाग के विशेषज्ञ हैं। और हम इनसे बातें करेंगे ब्लड प्रेशर और जीवन शैली, उच्च रक्तचाप और जीवन शैली। डॉक्टर साहब, आज अधिकांश लोग जो 40 से ज़्यादा उम्र के हैं या 40 से कम उम्र के भी हैं, उसमें आधे से ज़्यादा लोग ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनके पास में। तो जरा हमारे सुनने वालों को बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कुछ लोग तो दवा ले रहे होंगे, कुछ लोग बिल्कुल मार्जिन पर होंगे, तो वैसे लोग कैसी जीवन शैली अपनाएं जिससे कि वो लोग अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रख सकें और स्वस्थ जीवन जी सकें।
2: रक्तचाप का सीधा संबंध हमारे जीवन शैली से है। हमारा जीवन शैली अगर एक्टिव रहेगा, अगर ढंग से हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो हम रक्तचाप में बहुत हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। विशेष करके जब हम अपनी शारीरिक जो एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं करते हैं, अत्यधिक भोजन वसायुक्त भोजन करते हैं, उसमें नमक ज़्यादा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ने लगती है। हमारे धमनी, हमारे सिराए में फैट, चर्बी जो है वो जमा होने लगता है, जिससे हमारे शरीर का मोटापा बढ़ने लगता है, शरीर का वजन बढ़ता है, और इस मोटापा के कारण हमारे रक्तचाप में बढ़ोतरी होने लगती है। तो हम अगर एक्सरसाइज करें, संतुलित भोजन करें, तो हमारे शरीर में चर्बी की मात्रा नियंत्रित रहेगी और हमारे शरीर का प्रेशर जो है, ब्लड का प्रेशर भी, रक्तचाप भी हमारा नियंत्रित रहेगा
1: जी। और इसमें खान पान के बारे में थोड़ा बताते।
2: संतुलित, मैं जैसे मैंने पहले पहले कहा कि संतुलित भोजन, जैसे कि कम फैट वाले जो भोजन है वो करें, जिसमें कि नमक अत्यधिक सेवन ना करें, और तनाव, जैसे पहले मैंने चर्चा में बताया था कि तनाव से दूर रहें, और नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम करने से हमारे शरीर की जो चर्बी है या फैट है वो बर्न होती है, और हमारे शरीर के जो सिराए हैं या धमनी है, उसमें से एक्स्ट्रा जो फैट है वो निकल जाता है, इसके कारण हमारा प्रेशर अंदर का वो नॉर्मल हो जाता है।
1: जी, तो व्यायाम के बारे में, जैसे हर उम्र के लोग इस तरह की बीमारियों के शिकार होते हैं, तो कैसा व्यायाम करें, कितना व्यायाम करें, टहले तो कितना टहलें?
2: देखिए, वो तो व्यक्ति के उसके क्षमता पर निर्भर करता है कि वो कितना टहल सकता है या कितना एक्सरसाइज व्यायाम कर सकता है, लेकिन जितनी क्षमता है कोशिश करें कि उस अनुसार अपना व्यायाम करें। सुबह सुबह कम से कम, अगर समय मिल पाता है तो सुबह में मॉर्निंग में वॉकिंग करें, टहले कम से कम 4 से 5 किलोमीटर सुबह में टहलें, और जो अगर संभव है तो योगा जो होते, योगा जो बताए हुए किसी योग एक्सपर्ट के द्वारा, उनसे सीखें, उनके संपर्क में योगा सीख करके घर में ही योगा करें, तो उससे भी हमारा शरीर का जो है वजन और चर्बी और प्रेशर हमारा मेंटेन रहेगा।
1: अच्छा, क्या क्या खाएं, उन वस्तुओं का नाम बताएं जो खाना चाहिए, जिसकी जिसकी सलाह आप देते हैं।
2: संतुलित भोजन में हमारा जो उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं, कोई भी किसी भी पोषक तत्व की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, वो संतुलित होनी चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में, हमारे जो भी भोजन है उसमें 60 से 70% कम से कम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। प्रोटीन हमारे शरीर जो भोजन है उसमें कम से कम 10% लगभग भोजन प्रोटीन से मिलना चाहिए, ऊर्जा। अब जो बचे हुए जो रेस्ट जो हमारा जो पदार्थ, भोज्य पदार्थ है, वो आप फैट है, वो फैट, उससे फैट ले सकते हैं। तो हमारा जो जो है वो बैलेंस फूड में हम जो भी खाते हैं उसमें ये ध्यान रखें कि अत्यधिक चर्बी ना हो उसमें, और नमक की मात्रा भी ज़्यादा ना हो, और हमारे शरीर जो भी भोजन है उसमें रेशा युक्त भोजन जो भी है, जैसे फ्रूट्स हो गया, सलाद हो गया, इसका सेवन ज़्यादा करेंगे तो हमारे फैट का एब्जॉर्प्शन कम होगा, नमक का एब्जॉर्प्शन होगा, और हमारे शरीर में चर्बी की मात्रा कम रहेगी, नमक की मात्रा कम रहेगी।
1: और क्या क्या न खाएं?
2: क्या क्या न खाएं, उसमें जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा वसा युक्त भोजन ना करें,
1: तली फली चीज़,
2: तले वाले चीज़ को कम खाएं, साथ में जो अल्कोहल का सेवन कम करें, स्मोकिंग ना करें, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर ये सब चीज़ पर नियंत्रण रखेंगे तो हमारे जीवन शैली में बहुत हद तक परिवर्तन हो सकता है।
1: तो डॉक्टर राकेश कुमार साहब, आपने ब्लड प्रेशर और जीवन

0: शैली के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
2: उच्च रक्तचाप और जीवन शैली, इस विषय पर डॉक्टर राकेश कुमार से बातचीत कर रहे थे अनिल कुमार तिवारी। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें, आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा।

इस सभा में यानी अब से कुछ ही देर बाद सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हालचाल। पॉप म्यूजिक का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 7:15 पर और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रीकांत वाकरे से शास्त्रीय गायन राग अहिर भैरव सुबह 7:25 पर।

सांध्यकालीन सभा में शाम 4:30 पर आप सुनेंगे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी। मैथिली कार्यक्रम भारती का प्रसारण होगा शाम 5:30 पर।

शाम 6:30 पर सुनेंगे ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल और शाम 7 खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

रात्रि 8 बजे आप आनंद उठा सकते हैं फिल्म संगीत का, और रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में शोभना राव से कुछ गजल।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसे दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे और रात्रि 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के कार्यक्रम में आप सुनेंगे विवेक सोनार से बांसुरी वादन, ये दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, ये थे आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: बेंगलुरुदलेन स्पर्धिष्यति। ततः सायं सार्धसप्तवादने दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेडो और जेनेल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो जी फेई और नूरुजीद्दीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल

0: और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, हालचाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 मई और 17 मई का दिन देश और दुनिया के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। भारतीय खेल जगत से लेकर वैश्विक विज्ञान तक इस तारीख का एक खास महत्व है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज हम मनाते हैं विश्व दूर संचार और सूचना सोसाइटी दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की स्थापना की याद में हर साल आज ही के दिन ये दिवस मनाया जाता है। वहीं आज मनाया जाता है वर्ल्ड हाइपोटेंशन डे यानी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। समाज में हाई ब्लड प्रेशर के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन समर्पित है। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो 1498 में आज ही के दिन यानी 17 मई को वास्को डिगामा पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा ने भारत के कालीकाट के पास धरती पर पहली बार लंगर डाला था। वहीं 1540 में शेरशाह सूरी ने हरदोई के युद्ध में मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान मेरठ से शुरू हुई क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को दिल्ली में स्वतंत्र मुगल बादशाह आज ही के दिन घोषित किया गया था। तो 1949 में 17 मई के दिन भारत ने आजादी के बाद भी राष्ट्रमंडल देशों के समूह में बने रहने का ऐतिहासिक फैसला किया था। भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने 1987 में आज ही के दिन टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। तो वहीं 2010 में भारतीय मुक्केबाजों ने आज ही के दिन कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी 6 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था।

जिससे कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रह सकें। इसके लिए हमें हर दिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना चाहिए और व्यायाम में आप दौड़ना, तैरना या योग को भी शामिल कर सकते हैं। वहीं स्वस्थ भोजन करें, अपने आहार में फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करें और जंक फूड से बचें। हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें। तनाव कम करने के लिए आप योग, ध्यान या फिर अन्य गतिविधियां करें। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नकारात्मक आदतों से बचें, धूम्रपान और शराब से दूर रहें। अपने जीवन में फिटनेस को लेकर लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। साथ ही अपने आप पर विश्वास रखें और सकारात्मक बने रहें।

श्रोताओं, इसके साथ ही हालचाल का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए कुछ पॉप म्यूजिक। डिस्को डांसर फिल्म से ये गाना आपके लिए लेकर आए हैं पार्वती खान की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, इस गाने के साथ ही पॉप म्यूजिक का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। आज सुनेंगे श्रीकांत वाकरे से शास्त्रीय गायन राग अहिर भैरव। तबले पर इनका साथ दे रहे हैं महेंद्र सिंह और तानपुरे पर हैं रामपति पाठक। इनसे हम पहले सुनेंगे विलंबित एक ताल में निबद्ध और फिर सुनेंगे द्रुत तीन ताल में। तो लीजिए सुनिए राग अहिर भैरव श्रीकांत वाकरे से।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीकांत वाकरे से शास्त्रीय गायन राग अहिर भैरव। तबले पर इनका साथ दे रहे थे महेंद्र सिंह और तानपुरे पर थे रामपति पाठक।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं

0: बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहा

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।

0: अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक प्रभु राम।
1: वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता।
0: सुनिए प्रतिदिन प्रातः 6:35 पर संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान।
2: भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं।

साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री

0: श्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और

0: साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक है। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजाशेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
0: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट

0: के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट UG पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार NTA ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से CBSE के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर VAT को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today.

0: बदल दिया है। वजीर आजम मोदी स्वीडन के अपने दो रोजा दौरे पर आज गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। इस दौरान वजीर आजम स्विट्जरलैंड के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत करेंगे। महकमा आसार कदीमा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं को भोजशाला मंदिर में बिला रुकावट दाखिले की इजाजत दे दी है। हुकूमत ने चांदी की दरामद में कटौती करते हुए इसे पाबंदी वाली अशिया के जुमरे में डाल दिया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में हवाई जहाजों के ईंधन पर वैल्यू एडिड टैक्स में कटौती करते हुए इसे 25% से घटाकर 7% कर दिया है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के फाइनल में आज सत्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के वजीर आजम रॉब जेटन के दरमियान हेग में वसीतर मुजाकिरात के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने अपने बाहमी ताल्लुकात को एक कलीदी शराकतदारी की सतह पर ले जाने से इत्तेफाक किया है। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, दिफा, टेक्नोलॉजी, पानी के बंदोबस्त, साफ तवानाई, हिफ्जाने सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन का जायजा लिया।
1: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
0: तरजीही शोबों में वसी इश्तराक के लिए कई समझौतों पर भी दस्तखत किए गए। बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी तक ले जाने का ऐलान करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान ताल्लुकात में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है और उन्होंने नीदरलैंड को भारत का एक कलीदी यूरोपीय शराकतदार करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात, मुश्तरका जमहूरी अकदार, मजबूत माशी तआवुन और अवाम से अवाम के दरमियान गहरे रिश्तों पर मबनी है।
2: हम नीदरलैंड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से मानते हैं। नीदरलैंड भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। हमारे हिस्टोरिकल, कल्चर और पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत गहरे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, ये हमारी साझी सोच का हिस्सा है। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए।
0: नीदरलैंड के वजीर आजम रॉब जेटन ने भारत के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात की अहमियत पर भी जोर दिया और माशी और कलीदी शोबों में मजबूत तआवुन की हिमायत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन के दो रोजा दौरे पर आज गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। ये दौरा भारत और स्वीडन के दरमियान वसत पा रहे इश्तराक के लिए एक तारीखी संगे मील साबित होगा। जनाब मोदी बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेने की खातिर स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत करेंगे और बाहमी बातचीत को तिजारत को बढ़ाने के साथ साथ मसनू जहानत, AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, दिफा, खला, आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई और अवाम के दरमियान रिश्तों और कार्रवाई माहौल दोस्त बदलाव की जानिब मुंतकली को बढ़ाने के लिए तआवुन के नए मौके तलाश किए जाएंगे। दोनों मुल्कों के वज़ीरे आज़म सनद के लिए यूरोपियन गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे, जो यूरोपियन कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डर लायन के साथ एक सरकर्दा पैन यूरोपियन सरबराहों का फोरम है। ये बातचीत वजीर आजम के वसी यूरोपी दौरे के तीसरे मरहले का एक हिस्सा है और जनवरी 2026 में हुए भारत यूरोपियन आजाद तिजारती मुआहदे FTA के बाद से खित्ते का ये पहला दौरा है। ये दौरा बाहमी ताल्लुकात का जायजा लेने की गरज से तैयार किया गया है और इसका मकसद तेजी से बढ़ती हुई तब्दीलियों और पेचीदा जोग्राफियाई चैलेंजों के दौर में तआवुन का पता लगाना है। ये दौरा इक्तिसादी सरगर्मियों में तेजी के रुझान के बाद हो रहा है, जहां दो तरफा तिजारत साल 2025 में रिकॉर्ड 7.75 अमरीकी डॉलर हो गई और साल 2000 से 2025 के दरमियान भारत ने स्वीडन के रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम 2.825 अरब डॉलर्स रहा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: स्वीडन जो दुनिया की

0: से ज़्यादा इख्तराई मईशतों में से एक है, भारत के डिजिटल पूल के साथ कुदरती हम आहंगी तलाश कर रहा है। फिलहाल 280 से ज़्यादा स्वीडिश कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, जबकि 75 भारतीय फर्म स्वीडन में कायम हो चुकी हैं। इस दौरे की एक ख़ास बात वज़ीरे आज़म की यूरोपीय कमीशन की सदर के साथ यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस बराए सनत से मुश्तरक तौर पर खिताब है। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन सनती इंजमाम की तरफ बढ़ते हुए एक मरकजी सुतून में तब्दील हुआ है। इन ताल्लुकात की जड़ें 2009 के दिफाई ताउन के माहिरे और 2019 के जनरल सिक्योरिटी माहिरे में पेवस्त हैं। मसनूई जहानत एआई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में ताउन इस शराकतदारी की बुनियाद फराहम करता है। इसके अलावा दोनों ममालिक खलाई तहकीक में भी ताउन कर रहे हैं। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए आलात फराहम कर रहा है। आखिर में वज़ीर आज़म का गोटेनबर्ग का दौरा तारीखी एतमाद को मुस्तकबिल के लिए तैयार अहदाफ से जोड़ता है। गोटेनबर्ग स्वीडन से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: भारत और स्वीडन के दरमियान तिजारत और अवाम से अवाम के दरमियान राब्तों की विरासत है जो एक सदी से ज्यादा अरसे पर मुहित है और इसकी जड़ें बाहमी एहतराम पुरअमन बका और अहिंसा के नज़रिए में पेवस्त हैं। इस गहरे ताल्लुक की निशानदेही नोबेल इनाम याफ्ता रविंद्रनाथ टैगोर के साल 1926 के स्वीडन दौरे के 100 साल मुकम्मल होने से होती है। आज ये ताल्लुकात सकाफती बुनियादों से आगे बढ़कर जामे सनती इक्तिसादी शराकतदारी में बदल रहे हैं। कीमती धातुओं पर इजाफी कस्टम ड्यूटीज आयद करने के कुछ ही दिनों बाद हुकूमत ने अब चांदी की दरामद में कटौती की है। गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टोरेट जनरल DGFT ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि चांदी पर सोने का पानी चढ़ी चांदी और प्लेटिनम समेत चांदी पर दरामदी पॉलिसी को फौरी तौर से आज़ाद से पाबंदी शुदा के जुमरे में तब्दील किया गया है। हुकूमत ने बुध के रोज कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी। पाबंदियां आयद किए गए जुमरे की अशिया की दरामद के लिए हुकूमत की लाइसेंस की जरूरत होती है। दिल्ली हुकूमत ने एक अहम कदम उठाते हुए कौमी दारुल हुकूमत में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैल्यू एडिड टैक्स को 25% से घटाकर 7% करने का फैसला किया है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि ये फैसला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से कनेक्टिविटी और माशी सरगर्मियों को मजबूत बनाने पर जोर देने से मुताबकत रखता है, जिसका मकसद शहरी हवाबाजी के शोबे को राहत फराहम करना, सियाहत और लॉजिस्टिक्स से मुतालिक सरगर्मियों को फरोग देना है। वजीर आला ने बताया कि ये रियायती शरह आइंदा 6 माह तक नाफिज रहेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महकमा आसार कदीमा ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में वाक़ भोजशाला कॉम्प्लेक्स इमारत में हिंदुओं को पूजा पाठ और दीगर मकासद के लिए बिला रुकावट रसाई की इजाज़त दे दी है। महकमा आसार कदीमा का ये फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आया है, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले में भोजशाला को सरस्वती देवी का मंदिर करार दिया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: महकमा आसार कदीमा के हुक्मनामे का हवाला देते हुए एक अफसर ने बताया कि भोजशाला मंदिर के अलावा संस्कृत जबान कवायद और अदब सीखने सिखाने और तहकीक का मरकज भी रही। अफसर ने मजीद बताया कि हिंदू बिरादरी के सरस्वती देवी की पूजा और सीखने सिखाने के कदीम तरीक़ेकार से ताल्लुक़ की बिना पर उन्हें कॉम्प्लेक्स में बिला रुकावट रसाई की इजाज़त होगी। इससे पहले जुमे के रोज़ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले के भोजशाला कॉम्प्लेक्स को सरस्वती देवी का मंदिर करार दिया था और कहा था कि मरकज और ASI इसके इंतजाम व इंसराम तय कर सकते हैं। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 7 अप्रैल 2023 के महकमा आसार कदीमा के उस हुक्मनामे को भी कलदम करार दिया, जिसमें मुसलमानों को हर जुमा को भोजशाला कॉम्प्लेक्स में जुमे की नमाज अदा करने की इजाज़त थी। दलाइल की समाअत कर रही बेंच ने यह भी कहा कि मुसलमान बिरादरी जो ASI के तहफ़ वाली 11वीं सदी की इमारत को कमाल मौला मस्जिद मानती है, वो ज़िले में मस्जिद की तामीर के लिए अलहदा ज़मीन अलाटमेंट की खातिर रियासती हुकूमत से रुजू कर सकती है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए ज़मीर रज़वी।
1: CBI ने नीट पेपर लीक केस के सिलसिले में पुणे से एक और अहम मुलजिमा को गिरफ्तार किया है। मुलजिम प्रोफेसर मनीषा मंधारे पुणे में एक कॉलेज में बॉटनी के उस्ताद हैं। CBI के मुताबिक कौमी जांच एजेंसी ने इम्तिहान के अमल में एक एक्सपर्ट के तौर पर

0: उनका तकर्रुर किया था। इससे पहले 14 मई को एक और मुलजिमा मनीषा वाघमारे को भी पुणे से गिरफ्तार किया गया था। दोनों मुलजिमान को पुणे की एक अदालत में पेश किया गया था और बाद में मजीद तफ्तीश के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस शंपा सरकार और जस्टिस तीर्थांकर घोष की एक डिवीजन बेंच की जानिब से आरजीकर मेडिकल कॉलेज असमत दरी और कत्ल केस की समाअत की जाएगी। इससे पहले इस हफ्ते जस्टिस राजा शेखर मांथा और जस्टिस राय चट्टोपाध्याय ने ज्यादा मसरूफियत का हवाला देते हुए खुद को इस केस से अलग कर लिया था। इस केस में संजय राय जनवरी 2025 में उम्र कैद की सजा पाने वाले वाहिद मुजरिम है। मुतवफी डॉक्टर की वालिदैन ने कोलकाता की सियालदा अदालत में एक केस दायर किया था जिसमें उन्होंने टीएमसी के साबिक एमएलए निर्मल घोष, संजीव मुखोपाध्याय और घोला पुलिस स्टेशन के उस वक्त के इंचार्ज की गिरफ्तारी की अपील की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के निफाज के जरिए भारत के चीफ जस्टिस को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 33 से 37 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कानून और इंसाफ की वजारत की तरफ से शाया करदा एक गेजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक एक्ट 1956 में तरमीम की गई है। एक मुल्क एक चुनाव बिल से मुतालिक मुश्तका पार्लियामानी कमेटी ने कल सियासी पार्टियों, कानूनी बिरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ बेंगलुरु में वसी तर तबादला ख्याल किया। बाद में अखबार नवीसों को जानकारी देते हुए कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने बताया कि मुख्तलिफ रियासतों के अपने दौरे के दौरान मुश्तका पार्लियामानी कमेटी की तरफ से एतराजात और सिफारिशात जमा की जा रही हैं। बैडमिंटन में बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में आज सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रॉली कॉर्नेंडो और डेनियल मार्टिन से जोड़ी से होगा। इससे पहले कल सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी मलेशिया के गो ज़ीफी और नूर इजुद्दीन को हराकर फाइनल में पहुंची है। टेनिस में आलमी नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर इटालियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में रोम के कैंपो सेंट्रेल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। आज फाइनल में सिनर का मुकाबला कैस्पर रूट से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर जगह दी है। रोजनामा इंकलाब ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे की खबर को सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म कल एम्स्टर्डम पहुंचे जहां भारतीय बिरादरी ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मशरक़ वस्ती में जंग और बढ़ती आलमी गैर यकीनी कई दहाइयों की तरक्की को उलट सकती है और बड़ी आबादी को दोबारा गुरबत में ढकेल सकती है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने तमिलनाडु में वुज़रा में कलमदानों की तकसीम से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर जगह दी है। अखबार के मुताबिक वजीर आला जोसेफ विजय ने दाखला और आम इंतजामिया जैसे अहम महकमे अपने पास रखे हैं। रोजनामा प्रताप ने दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के उस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बेटियों की तालीम सिर्फ खानदान ही नहीं बल्कि समाज और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद होती है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हम मनसब रॉब जेटन के दरमियान बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल दिया है। वजीर आजम मोदी स्वीडन के अपने दो रोजा दौरे पर आज गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। इस दौरान वजीर आजम स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत करेंगे। महकमा आसार कदीमा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं को भोजशाला मंदिर में बिला रुकावट दाखिले की इजाजत दे दी है। हुकूमत ने चांदी की दरामद में कटौती करते हुए इसे पाबंदी वाली अशिया के जुमरे में डाल दिया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में हवाई जहाजों के ईंधन पर वैल्यू एडिड टैक्स में कटौती करते हुए इसे 25% से घटाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन लाइव मन की

0: संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कहां चलती है? इधर तो
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नालंदा के राजगीर में मलमास मेले का करेंगे उद्घाटन। और मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिनों के दौरान पटना सहित प्रदेश के 20 जिलों में बनी रहेगी उमस भरी गर्मी की स्थिति, अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। इससे पहले सरकार ने कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। गौरतलब है कि प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। CBSE ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं में 3री भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। नालंदा के राजगीर में आज से 1 माह तक चलने वाला मलमास मेला शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस राजकीय मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। पर्यटन विभाग के विशेष सचिव सह निदेशक उदयन मिश्रा ने बताया कि आज ध्वजारोहण, देवी देवताओं के आवाहन और पूजन के साथ मेले का शुभारंभ होगा। उन्होंने बताया कि 27 मई को प्रथम शाही स्नान, 31 मई को द्वितीय, जबकि 11 जून को तृतीय शाही स्नान का आयोजन किया जाएगा। मेले की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट।

0: अध्यात्म, आस्था और संस्कृति के अद्भुत संगम का प्रतीक ऐतिहासिक राजकीय मलमास मेला के लिए राजगीर पूरी तरह सज धज कर तैयार हो चुका है। जिला प्रशासन की ओर से कल्पवासियों और तीर्थयात्रियों के लिए आवासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता और भीड़ नियंत्रण की व्यापक व्यवस्था की गई है। राजगीर के गर्म जल के कुंडों, विशेषकर ब्रह्मकुंड, सप्तधारा और पवित्र नदियों में स्नान के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मान्यता है कि मलमास के दौरान यहां स्नान करने से पापों का क्षय होता है, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर 3 वर्ष पर आयोजित होने वाला यह पौराणिक मेला सदियों से आस्था का केंद्र रहा है। मेले में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए 500 CCTV और AI आधारित कैमरे लगाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार।
1: कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राज्य में कृषि अवसंरचना कोष के तहत सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। पटना में विभागीय समीक्षात्मक बैठक में श्री सिन्हा ने कहा कि योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के सभी ऋणों पर प्रतिवर्ष 3% की दर से ब्याज में छूट दी जाएगी। यह सुविधा अधिकतम 7 वर्षों के लिए होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 2045 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री राजू रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मुंगेर के पोलो मैदान में अत्याधुनिक फुटबॉल टर्फ मैदान का उद्घाटन किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने जिले में लगभग 38 लाख रुपए की लागत से जिला परिषद भवन के सौंदर्यीकरण कार्य का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक भवनों का सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण न केवल कार्य संस्कृति को बेहतर बनाता है बल्कि आम जन के बीच भी सकारात्मक संदेश देता है। पटना उच्च न्यायालय ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान संचालित होने वाली वैकेशनल बेंच की सुनवाई पूरी तरह वर्चुअल मोड में करने का निर्णय लिया है। न्यायालय प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार कल से 4 जून तक कार्य दिवसों में वैकेशन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक कोर्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के मद्देनजर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने कल से सचिवालय कर्मियों के लिए विशेष इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। परिवहन सचिव राजकुमार ने बताया कि इस पहल से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मियों को सुलभ और समयबद्ध आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही निजी वाहनों पर निर्भरता कम होने से ईंधन की बचत को बढ़ावा मिलेगा। इधर परिवहन विभाग अब दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए भी विशेष बस सेवा शुरू करेगा। पहले चरण में इन बसों का परिचालन पटना जिले में किया जाएगा। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक व्यवस्था में नई जिम्मेदारी दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अनुसार अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के 34 अधिकारियों को अलग अलग जिलों का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार को पटना जिला और संतोष कुमार मल्ल को भोजपुर जिले का प्रभारी सचिव बनाया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार गया जिले के लिए रॉबर्ट एल चौंगथू, सारण के लिए पंकज कुमार और मधुबनी के लिए नर्मदेश्वर लाल को प्रभारी सचिव बनाया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने सोशल मीडिया पर जारी उस वीडियो को खारिज कर दिया है जिसमें गया जी में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और पेट्रोल पंप खाली होने का दावा किया गया है। HPCL ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि यह वीडियो भ्रामक, निराधार और वास्तविकता से परे है। कंपनी ने कहा है कि वीडियो में किया गया दावा पूरी तरह गलत है और पेट्रोल पंपों पर वास्तविक स्थिति से पूरी तरह विपरीत है। HPCL ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित गुमराह करने वाली ऐसी खबरों पर विश्वास न करें। कंपनी ने लोगों से आधिकारिक सूचना माध्यमों पर भरोसा करने का आग्रह किया है। प्रदेश के जनजातीय बहुल गांवों में कल से 25 मई तक जन भागीदारी अभियान सबसे दूर सबसे पहले का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की इस योजना में इन गांवों में शिविर लगाकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से आवेदन लिया जाएगा और उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि जिले के किशनगंज, त्रिवेणीगंज और वसंतपुर प्रखंड के चयनित गांवों में शिविर का आयोजन किया जाएगा।

0: समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। राजधानी पटना सहित प्रदेश के 20 जिलों में उमस भरी गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों के दौरान पटना, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, गया और औरंगाबाद सहित कई जिलों में दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अररिया और किशनगंज जिले के कुछ स्थानों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। इधर इस दिवस पर कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बिहार इकाई की ओर से पटना में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इन शिविरों में लोगों को उच्च रक्तचाप से निपटने की सलाह दी जाएगी। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के कंधरापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक कंटेनर और एक चारपहिया वाहन की टक्कर में एक ही परिवार के चार समेत पांच लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक सीवान जिले के सिसवन प्रखंड के गयासपुर के रहने वाले थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कार सवार लोग सीवान जिले से हरियाणा के फरीदाबाद जा रहे थे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जमुई जिला स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय में 11वीं कक्षा में नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 14 मई निर्धारित थी। लखीसराय जिला प्रशासन ने बाईपास स्थित रेल ओवर ब्रिज के स्पैन में आए दरार को देखते हुए लखीसराय बाईपास पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा है कि वैकल्पिक मार्ग तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस आरओबी की निर्माण एजेंसी को काली सूची में डाला गया है। सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के इंग्लिश गांव में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से एक पिस्टल, 25 कारतूस और 4 मोटरसाइकिल समेत एक चारपहिया वाहन जब्त किया गया है। अररिया जिले के रानीगंज, पलासी सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष छापामारी अभियान के तहत आधा दर्जन गैर जमानती वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड में फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र मामले में 6 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त शिक्षकों से वेतन और अन्य मद में दी गई राशि की वसूली करने का भी निर्णय लिया गया है। भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया टोल प्लाजा के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने लगभग 500 ग्राम मादक पदार्थ, हेरोइन के साथ

0: तस्कर को गिरफ्तार किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं एक अन्य मैच में दिल्ली में 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। इधर कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटन्स को 29 रनों से हरा दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा देश का तीसरा निफ्टेन हाजीपुर में खुलेगा। अखबार लिखता है 100 एकड़ जमीन सरकार ने दी, केंद्र से मिली मंजूरी। दैनिक जागरण लिखता है आय से अधिक संपत्ति मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता के घर ईओयू का छापा, लाखों की नकदी और सोना चांदी भी बरामद। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है तय समय 2027 तक जमीन सर्वे पूरा करने के लिए सरकार की रणनीति, बंटवारा नहीं तो जिनके नाम जमीन है उन्हीं का नाम होगा सर्वे में। प्रभात खबर ने नीट पेपर लीक से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है एनटीए ने जिस बॉटनी टीचर को बनाया था एक्सपर्ट उसी ने लीक किए प्रश्न। आज अखबार का शीर्षक है बिहार के 4 स्मार्ट शहरों में यातायात पुलिस की बड़ी बहाली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नालंदा के राजगीर में मलमास मेले का करेंगे उद्घाटन। और मौसम विभाग ने कहा अगले 2 दिनों के दौरान पटना सहित प्रदेश के 20 जिलों में बनी रहेगी उमस भरी गर्मी की स्थिति, अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
2: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।
1: ई जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच, शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
3: जागो ग्राहक जागो।
2: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: इधर आइए, इधर।
8: इधर?
7: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
9: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
8: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
9: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
8: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
9: शुभ वाणी,
8: लाभवाणी,
7: आकाशवाणी।

0: अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक प्रभु राम।
1: वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता।
0: सुनिए प्रतिदिन प्रातः 6:35 पर संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान।
2: भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं।

यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है, पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

अख्तर मेहताब आलम से शगुफ्ता परवीन की गुफ्तगू होगी और प्रोग्राम के आखिर में चंद गजलों का लुत्फ उठाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं पंकज उदास की इस प्यारी सी गजल से।

0: सामईन अभी आप पंकज उदास की आवाज़ में सुन रहे थे ये प्यारी सी गज़ल। आइए अब करते हैं आज की बात। आज है हाई ब्लड प्रेशर डे। कुछ जगहों पर इसे हाइपरटेंशन का आलमी दिन भी कहा जाता है, और दरअसल ये एक साइलेंट किलर भी है। यानी ये ब्लड फशारे खून का आलमी दिन है जो हर साल 17 मई को मनाया जाता है, जिसका मकसद आम लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की अलामत, इससे बचाओ और इससे बचाव और इसके इलाज, जो इसके इलाज होंगे उसके हवाले से आगाही पैदा करना होता है। हाइपरटेंशन को खामोश यानी कातिल, जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इस अक्सर मरीजों को इसकी अलामत जैसे सर दर्द, घबराहट वगैरह जो होते हैं, इसका इल्म तब होता है जब हार्ट अटैक आता है या पैरालाइज्ड हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें जब हो जाती हैं तब उन्हें समझ में आता है कि ये कितना खतरनाक है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, और इसकी खास वजह जो है वो होती है खाने पीने में बदएहतियाती। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं तो वो भी इसकी वजह होती है, मोटापा, वर्जिश नहीं करना, और मुख्तलिफ ज़हनी दबाव वगैरह से भी हाइपरटेंशन होते हैं या हाई ब्लड प्रेशर हो जाते हैं। इससे बचने के लिए हमेशा ब्लड प्रेशर पर तवज्जो देना चाहिए। इसके लिए जो भी वर्जिश हो सकता है वो करें, नमक का इस्तेमाल कम करें, और ताज़ा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल अपने खुराक में शामिल करने चाहिए। और अगर आपको आपके आसपास में जो शहर में जो भी क्लिनिक हो, अगर मुमकिन हो तो उसमें जाकर के अक्सर इसके जो है ब्लड प्रेशर की जांच भी कराना चाहिए। आपको बता दें कि तकरीबन दुनिया भर में तकरीबन 1.13 मिलियन अफराद हाई ब्लड प्रेशर की तशखीस हुई है। ये सबसे आम है, जो खौफजदा भी है, जिससे आपके जिस्म और दिमाग पर तवील मुद्दती असरात होते हैं। अगर किसी मरीज़ को दिल और शरानी या की दी तकलीफ़ है या मुस्तकिल दबाव का सामना करना पड़ता है तो इससे कई दिगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। 17 मई को इसकी शुरुआत जो है 2005 में ही की गई थी, ताकि इसके तहत जो भी मुख्तलिफ तंजीमें हैं, सेहती तंजीमें, वो बेदारी फैलाने का काम करती हैं और अपने अपने तरीक़े से ये बेदारी फैलाने का काम तो करती भी हैं। और इसके पीछे वाहिद ख्याल लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के खतरात से आगाह करना ही है। तो चलिए, ये थी आज की बात। अब करते हैं अपने प्रोग्राम, अगले प्रोग्राम की जानिब चलते हैं और सुनते हैं आज का सेहतनामा। आज के सेहतनामा का मौजू है जिल्द के मुख्तलिफ अमराज और हिफाजती तदबीर, और इस मौजू पर बात हो रही है डॉक्टर महताब आलम से, शगुफ्ता परवीन की।
1: सामिन, जैसा कि आपको पता है, हमारी जिल्द यानी स्किन जिस्म का एक अहम हिस्सा है। ये हम इंसानों के बैरूनी सतह को तो ढांकती ही रहती है, साथ ही साथ ये हमारे जिस्म को कई तरह की बीमारियों से भी बचाती है। लेकिन हमारी जिल्द यानी स्किन कई तरह की बीमारियों से दो चार भी होती रहती है, तो आज हम स्किन

0: कि मुख्तलिफ अमराज यानी कि बीमारियों पर बात करने जा रहे हैं। एक सेहतमंद जिल्द यानी स्किन को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर तफसील से बात करने के लिए हमने स्टूडियो में जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन के माहिर डॉक्टर महताब आलम को मधु किया है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस स्टूडियो में खैर मकदम है।
1: बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझे यहाँ बुलाया।
0: डॉक्टर साहब, बातों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो हमारी स्किन है ये हमारे जिस्म के लिए कैसे और क्यों अहम है।
1: देखिए, स्किन तो बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और इसकी अहमियत आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि बॉडी के हर दूसरे ऑर्गन को ये प्रोटेक्ट करती है, और प्रोटेक्शन के अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी इसका बहुत रोल है। आज के दौर के हिसाब से अगर जिसकी स्किन बहुत अच्छी है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, तो स्किन तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको नज़रअंदाज नहीं ही कर सकते हैं बिल्कुल भी।
0: चेहरे से ही बिल्कुल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। इससे एक सवाल और निकल करके आता है जो हमारे खास करके नौजवान बच्चे बच्चों के लिए है कि डॉक्टर साहब, ये जो बलागत की जो उम्र होती है जिसको हम टीनेज कहते हैं, तो इस टीनेजर की उम्र में कई तरह की जो तब्दीली होती है बच्चों के जिस्म के अंदर, उसमें अक्सर हम ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं बहुत सारे कील मुहासे उनके चेहरे पर आना शुरू होते हैं, तो इससे बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? और उस वक्त जब वो नाखून लगा देते हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें करते हैं तो किस तरीके से वो अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं और मुहासे वाले जो उम्र का जो दौर है उससे वो बासानी खूबसूरत रहते हुए सब कुछ बहुत अच्छे से वो दौर उनका निकल जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: देखिए, कील मुहासे जो होता है वो हार्मोनल होता है मेनली, तो जिन लोगों के अंदर यह है कि थोड़ा हार्मोनल फ्लक्चुएशन होता है एक एज के दौरान टीनेज आने पर, तो कील मुहासे निकलना बहुत आम बात है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन हाँ, आप देखते होंगे कुछ लोगों में नहीं ही निकलता है, कुछ लोगों में थोड़े बहुत निकलते हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर उनके चेहरे पर बाद में नहीं दिखता है। कुछ लोगों में देखिए कि बहुत ज़्यादा सीवियर होती है चीज़, कि उनके चेहरे में पूरे गड्ढे वगैरह पड़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर किसी को ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है, ये चीज़ें दाने वगैरह निकल रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इसके लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि अगर 4-5 महीने थोड़े लंबे टाइम तक खा लें तो आगे कील मुहासे निकलने के चांसेस 95% तक कम हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा इसका फूड से कोई रिलेशन नहीं होता है। हाँ, अगर किसी को ज़्यादा कील मुहासे हो रहे हैं तो थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स वो अवॉइड कर सकते हैं, ये एक हेल्दी हैबिट है। और बाकी अगर ज़्यादा कुछ भी दिक्कत हो तो उनको तुरंत ही डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि
0: तो
1: उनको फ्यूचर के किसी तरह के स्किन पे जो स्कार्स वगैरह रहते हैं, जो दाग रहते हैं, जो लाइफ लॉन्ग बदर करते हैं लोगों को, उससे वो बच सकें।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अक्सर हम ये देखते हैं कि हम खूबसूरत दिखने के लिए थोड़ा दाना हो गया, दाग धब्बा हो गया, तो हम जाते हैं मेडिकल कॉर्नर पे और जाकर के वहां से कोई ना कोई ऐसी क्रीम लेकर के लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की जो क्रीम हम लगाते हैं इसका क्या असर पड़ता है हमारे जिल्द के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर?
1: आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। अभी का जो टाइम मैं देख रहा हूँ पेशेंट्स रोज इतने देखने के बाद, मेरे को ये फील हो रहा है कि आजकल जो मेडिकल पर ओवर द काउंटर जो मेडिकेशंस मिल रही हैं, जो कुछ लोग गोरे होने के नाम पर या कुछ लोग दाग धब्बे मिटाने के नाम पर ख़रीद रहे हैं, ज़्यादातर दवाइयों में स्टेरॉइड्स हैं। और स्टेरॉइड्स क्या है, जब आदमी लगाता है तो उस टाइम उसको बहुत फील गुड होता है कि चेहरा साफ़ हो रहा है, चमक रहा है, ग्लो आ रहा है, पर आखिर में आप देखेंगी तो चेहरा स्किन पतला होता जाता है, धीरे धीरे उसके साइड इफेक्ट समझ में आने लग जाते हैं। धूप में जाने पे स्किन रेडनेस आने लग जाती है, स्किन लाल होने लग जाता है, जलने लग जाता है। औरतें जो होती हैं किचन में जाती हैं तो उनका स्किन जलने लग जाता है। कुछ टाइम बाद जब आप उसको छोड़ेंगे क्रीम को लगाना, तो आपका स्किन जैसा पहले था उससे भी ज़्यादा बुरा हो जाता है, स्किन पे कालापन आने लग जाता है, फिर से दाने वगैरह निकलने लग जाते हैं, कोई क्रीम लगाने पे सूट नहीं करता है, कोई मेकअप सूट नहीं करता है, और मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। तो स्टेरॉइड जो आजकल ओवर द काउंटर बहुत ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, मुख्तलिफ नामों से है, तो जो बहुत ज़्यादा फेमस नाम है लोग यूज़ करते हैं, तो मेरे हिसाब से किसी भी सूरत में बगैर एक्सपर्ट ओपिनियन लिए हुए, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की शक्ल में ले, किसी डॉक्टर की शक्ल में ले, इनको यूज़ करना कहीं से भी जायज़ नहीं है।
0: कुछ लोग स्किन के ऊपर बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ मेकअप ऐसा करेंगे, जैसे खास के फीमेल की बात की जाए, जैसे अभी आपने मेकअप के बारे में कहा, तो वो बहुत सारा मेकअप करती हैं, तो ये जो मेकअप का जो असर होता है इसका भी असर स्किन के ऊपर कुछ मनफी पड़ता है?
1: देखिए, कोई भी चीज़ एक्सेस में तो हार्मफुल होता ही है, चाहे वो मेकअप हो या कुछ भी हो। लेकिन अब ये है कि अगर हेल्दी तरीके से मेकअप कर रहे हैं, एक लाइट मेकअप कर रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कोई स्टेरॉइड्स नहीं मिला हुआ है, तो उसको कुछ टाइम बिंग के लिए कर सकते हैं। हर किसी का खूबसूरत दिखना हर किसी का हक है, दिख सकते हैं, मेकअप करें, कोई दिक्कत नहीं है, बट ओवर यूज़ किसी भी चीज़ का हम रिकमेंड नहीं करेंगे।
0: सर के बाल के ऊपर बात करती हूँ, एक तो बाल झड़ना अलग बात होती है, लेकिन उन बालों के बीच में जो रूसियाँ हो जाती हैं ना, ये कई बार बहुत तकलीफदेह होती है लोगों के लिए। तो क्या इन रूसियों का भी कनेक्शन है हमारे चेहरे के जो

0: है, उसकी जो स्किन है उसके ऊपर आने वाली मुहासे या फिर कुछ और तरह के जो इश्यूज होते हैं, रेडनेस वगैरह, तो रूसी कहाँ तक इसका रोल प्ले करता है इसमें?
1: देखिए, दाने मुहासे में रूसी का रोल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर यह है कि रूसी स्कैल्प का अपना प्रॉपर्टी है। किसी का स्कैल्प है कि वो रूसी वाला है तो उसमें डैंड्रफ आएगा, किसी का नहीं डैंड्रफ वाला है तो नहीं आएगा, किसी का ऑयली स्कैल्प है तो जो डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादातर ठंड में होता है लोगों को। अक्सर लोगों को देखेंगे आपके ठंड में उनके बालों में डैंड्रफ हो रखा है, तो उससे जो स्किन पे मेनली जो फ़र्क ये आता है कि वाइट वाइट से स्केल्स जो सर से गिरते हैं वो नाक के रूट्स में, रूट ऑफ नोज पे थोड़े रेडनेस और स्केलिंग कॉज करते हैं, या आँख के रूट पे करते हैं, या पलकों पे आपको दिखेंगे थोड़ी सी ड्राइनेस आने लग जाएगी स्किन पे, हल्के लाइट लाइट हाइपोपिगमेंटेड मतलब हल्के उजले से दाग बनने लग जाते हैं स्किन पे। तो ये सब हो सकता है रूसी की वजह से स्किन पे दिक्कत, लेकिन जैसे ही रूसी का ट्रीटमेंट लेंगे, जैसे ही उसके लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू वगैरह आती हैं, तो वो सब यूज़ करने के बाद से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जो जिसका बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो बॉडी के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उससे डिस्कम्फर्ट होता है लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ नहीं है, वो वक्त के साथ ठीक भी हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर किसी को है उस तरह के डैंड्रफ तो उसका सॉल्यूशन के लिए उनको डैंड्रफ के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू वगैरह करना चाहिए।
0: डैंड्रफ से एक सवाल और आता है कि क्या डैंड्रफ की भी दो तीन शक्लें होती हैं क्या? कुछ लोग कहते हैं कि दानेदार जैसा भी डैंड्रफ होता है और वो थोड़ा गीला जैसा होता है, कुछ इस टाइप का, उसकी वजह कर भी कुछ स्कैल्प में दिक्कत आती है,
1: जी
0: सर के
1: बिल्कुल,
0: स्कैल्प
1: बहुत
0: में?
1: लोगों को होता है कि बहुत ऑयली स्कैल्प होता है तो उनका डैंड्रफ में बहुत उनको ऑयल जैसा निकलता है, जब भी सर के ऊपर नाखून लगाते हैं या हाथ लगाते हैं तो उनके नाखून में कुछ फंस कर मटेरियल जैसा आता है। तो ये जब ज़्यादा सीवियर क्वालिटी का डैंड्रफ होता है तो उसमें ये चीज़ होती है। और वैसे तो बहुत टाइप की होती है डैंड्रफ के भी प्रॉब्लम, अब यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाना
0: जी जी
1: पॉसिबल नहीं है,
0: बिल्कुल
1: लेकिन हाँ, जैसे ही अगर कोई ज़्यादा दिक्कत हो तो मेरी राय यही है कि तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
0: कुछ ऐसा प्रिकॉशंस वो करें जिससे कि इस तरह की चीजों में वो उसमें उनको जो है वो डैंड्रफ का प्रॉब्लम इस तरह का ना हो, जो आगे चल के स्किन में
1: देखिए,
0: कुछ
1: अगर
0: चेंजेस
1: किन्हीं को
0: लाए।
1: बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो उनको बहुत ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए स्कैल्प में, उसके अलावा जो है वो रेगुलर बेसिस पे शैम्पू करते रहें, बहुत दिन गैप नहीं करें, हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू कर लेना चाहिए, एक हेल्दी प्रैक्टिस है, तो ये सब कर सकते हैं जिससे कि आप कंफर्ट में रहेंगे।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम इन तमाम चीज़ों को अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं बच पाएंगे। इसके साथ साथ हमारे सामीन को एक चीज़ और बताइए, अक्सर हमने सुना है एक्जिमा हो गया, किसी को एक्जिमा हो गया, कहीं से एक फोबिया जैसा भी होता है कि ये फैलने वाली बीमारी है, कहीं फैल जाएगी, तो इसके बारे में थोड़ा तफसील बताएंगे, ये क्या है, इसके पीछे वजह जो होती है और इसके जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, किस हद तक मुमकिन है इसका सही होना?
1: देखिए, एक्जिमा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसा कि अभी आपने पूछा, तो अगर उस पर पूरे तफसीर से जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मोटे मोटे बात मैं यही बता सकता हूँ कि
0: जी
1: एक्जिमा अगर कोई भी लंबे टाइम से किसी को इचिंग हो रहा है तो वो उनका एक्जिमा होने के चांसेस हैं। हालांकि इचिंग और भी बीमारियों में होती है जो इनमें एक्जिमा नहीं होता है, लेकिन एक्जिमा का सबसे मेन पहचान है कि लंबे टाइम से इचिंग होगी बॉडी में। एक्जिमा बहुत सारे बाहर के रीजन से भी होते हैं, किसी को डस्ट से एलर्जी है तो वो भी एक एक्जिमा का टाइप ही है, किसी को कुछ खाने से फूड एलर्जी है तो उनको भी अगर स्किन पे इचिंग हो रही है तो एक एक्जिमा का टाइप है, किसी को स्किन के अंदर कुछ लिपिड्स वगैरह बनते नहीं है ठीक से तो उनको बचपन से स्किन ड्राई रहेगी, इचिंग रहेगी, वो भी एक्जिमा का एक टाइप है। ये कुछ एक्जिमा जो होते हैं बाहर के कॉज की वजह से होते हैं, किसी को खाने से, किसी को कुछ पहनने से, और बहुत लोगों को एक्जिमा जो मोस्टली होता है वो बगैर किसी रीजन के होता है, अंदरूनी होता है। जहाँ तक फैलने की आप बात कह रही हैं तो एक्जिमा एक इंसान से दूसरे इंसान को छूने से नहीं फैलता है।
0: जी
1: हाँ, लेकिन अगर किसी को एक जगह पे एक्जिमा है, लग मान लीजिए कि हाथ पे है, तो उसको पीठ पे भी हो सकता है, उसको पेट पे भी हो सकता है, उसको पैर पे भी हो सकता है, एक इंसान में एक से दूसरी जगह तो होता ही रहेगा वो, और लेकिन एक से दूसरे को छूने से नहीं फैलता है, इस बात को एकदम क्लियर कर सकते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: और ट्रीटमेंट के लिए यह है कि उसका ट्रीटमेंट है कि अगर आप उसको एक्जिमा किसी पेशेंट को तो ट्रीट करते हैं, बहुत लोगों को 10 दिन में ठीक हो जाता है फिर कभी नहीं होता है, बहुत लोगों को लंबा 2 साल 3 साल भी ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है, तो वो डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी का तुरंत ठीक हो जाता है, किसी का बहुत लंबा भी
0: तो
1: ट्रीटमेंट चलता
0: एक्जिमा
1: है।
0: के पेशेंट को कुछ खाने पीने में भी कुछ परहेज करना पड़ता है क्या सर?
1: अगर पेशेंट में कोई नॉन एलर्जी है कि ये जब भी सपोज कोई अंडा खा रहा है, कोई मछली खा रहा है, तो उसके खाने के तुरंत बाद मेरी इचिंग बढ़ जा रही है या जो स्किन पे दिक्कत है वो बढ़ जा रही है, तो फिर उसको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये एक्जिमा के पेशेंट को नहीं ही खाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
0: तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए कि कई लोगों के जो चेहरे हैं, हाथ हैं, पांव हैं, इन पे हमने एक सफ़ेद सफ़ेद सा धब्बा देखते हैं, उसे कहते हैं विटिलिगो। तो ये जो विटिलिगो जो बीमारी है, ये किस हद तक लोगों को परेशान करती है और किस हद तक ये फैल सकता है, थोड़ा इसके बारे में भी बताएं।
1: देखिए, हर सफ़ेद धब्बा विटिलिगो नहीं होता, पहली
0: ओके
1: चीज़, ठीक।
0: जी
1: तो उसमें यह है कि हाँ, पर विटिलिगो एक ऐसा सफेद दाग होता है जो बहुत ही ज्यादा ब्राइटन लगता है दिखने में, लोग इजी

0: नोटिस कर लेते हैं, और ये एक सोशल स्टिग्मा बन गया है। बीमारी से ज़्यादा अभी विटिलिगो एक सोशल स्टिग्मा बन चुका है। उसमें पेशेंट को किसी तरह की तकलीफ नहीं होती, ऐसा नहीं उसको चलने में दिक्कत है, उसको खाने में दिक्कत है, उसको बोलने में दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस हम लोग क्या, जो पेशेंट आते हैं उनके दिमाग में यही रहता है कि लोग क्या कहेंगे सफ़ेद दाग देख के। तो सबसे पहले मैं अपने सामईन हजरात को ये बताना चाहता हूँ कि विटिलिगो किसी तरह की एक तो फैलने वाली बीमारी नहीं है, एक से दूसरे को छूने से नहीं हो सकता है, प्लस इसको एक सोशल स्टिग्मा नहीं बना है। किसी की स्किन गोरी है, किसी को की स्किन काली है, वैसे किसी की स्किन पे कलर नहीं है, ठीक है। तो
1: बिल्कुल
0: ये एक नॉर्मल हो जाना चाहिए सोसाइटी के अंदर। लोग जिस तरीके से आते हैं, मेरे पास पेशेंट कई आते हैं विटिलिगो के, तो अगर किसी को बहुत सीरियस सीरियस बीमारी हो जाती है जिसमें वो खा नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, तब मैं उनके चेहरे पर इतनी परेशानी नहीं देखता हूँ जितनी कि एक सफ़ेद दाग हो गया हाथ में तो उसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, बीमारी है, उसका इलाज होगा, वो ठीक होगा इंशाल्लाह, लेकिन इस तरह की जो परेशानी है वो सोसाइटी के स्टिग्मा होने की वजह से है। तो ये चीज़ कम होना चाहिए, इसके लिए अवेयरनेस डेफिनेटली होना चाहिए। अब विटिलिगो पे बात करते हैं।
1: इसके होने की वजह क्या होती है?
0: देखिए, विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है कि बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जो है, वो जो रंग बनाने वाले सेल्स होते हैं जिनको मेलानोसाइट बोलते हैं हम लोग साइंटिफिकली, उनको वो डैमेज कर देते हैं। तो इसकी वजह से जो पिगमेंट बनना चाहिए, जो स्किन कलर बनना चाहिए, वो बन नहीं पाता है। तो किसी को किसी भी बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर सफ़ेद सा पैच बनना स्टार्ट हो जाता है। ग्रेजुअली वो पैच बड़ा होने लग जाता है, नए जगह भी बॉडी पर निकल सकता है। विटिलिगो बहुत तरह का होता है। इसमें जो सबसे मुश्किल विटिलिगो होता है वो होता है जो हाथ में हो, पैर में हो, उंगलियों में आप देखती होंगी,
1: जी,
0: या होंठ में होता है। ये इनको लिप टिप विटिलिगो बोलते हैं, लिप्स पे और टिप यानी हैंड और फिंगर के टिप पे होता है। तो लिप टिप विटिलिगो सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट से रेजिस्टेंट होता है, सबसे मुश्किल होता है इसका ट्रीटमेंट। अगर बॉडी के किसी हिस्से में विटिलिगो है तो ईजिली ठीक होता है वो। विटिलिगो का ट्रीटमेंट भी किसी का 2 महीने में भी ठीक होता है, किसी का 2-3 साल भी ट्रीटमेंट चलता है। जैसे ही विटिलिगो हो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, या किसी तरह का आप व्हाइट पैच देखें बॉडी के ऊपर तो आप कंसल्ट करें अपने डॉक्टर को, क्योंकि विटिलिगो को फैलने से रोकना सबसे इंपॉर्टेंट है। उस पर रंग तो धीरे धीरे आएगा, अगर जैसी दवा चलती वो रुक जाता है, और रुक गया तो आपकी 50% प्रॉब्लम खत्म हो गई, रुक गया वो,
1: जी
0: अब उसमें कलर लाने का एक बस रह जाता है। उसके लिए बहुत तरह की दवाइयाँ होती हैं, उसको खाने की भी लगाने की भी लगाते हैं लोग, बाग ठीक हो जाते हैं।
1: कुछ एहतियात भी बरतने की जरूरत होती है अपने तरफ से पेशेंट को।
0: देखिए, उसमें एहतियात तो कुछ खास नहीं होता है, और खाने पीने से भी कोई बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा जो खट्टा फूड होता है उसको खाने से थोड़ा पिगमेंटेशन बनना कम होता है, इसलिए उसको मना करने को बोलते हैं। हालांकि एक चीज़ मैं देखता हूँ कि सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको हो जाता है वो ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, बहुत तमाम चीज़ें बंद कर देते हैं खानी। तो ऐसा कुछ साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि सब चीज़ खा सकते हैं, जो है उसका ट्रीटमेंट कराएं, इसको सोसाइटल स्टिग्मा ना बनाएं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहें, क्योंकि अगेन स्ट्रेस से वो बढ़ता है विटिलिगो, और विटिलिगो ठीक होता है। मेरे यहाँ भी कितने पेशेंट आते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होके जाते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है ये।
1: विटिलिगो ठीक होता है, हमारे सामने भी ना घबराए, है ना। और इसके साथ एक और मर्ज है, जल्दी मर्ज जिसको कहते हैं, वो हर्पिस है। ये कौन सा मर्ज है, थोड़ा इसके बारे में
0: देखिए,
1: बताएंगे हमारे
0: हर्पीस
1: सामने
0: जो
1: को।
0: होता है वायरल इन्फेक्शन है, हर्पीस वायरल इन्फेक्शन होता है। तो हर्पीस बहुत तरह का होता है अगेन। तो आप जैसे बहुत लोगों को देखती होंगी, जब भी फीवर वगैरह आया तो होंठ के ऊपर एक छोटे 4-5 दाने निकल जाते हैं, वो भी हर्पीस का एक माइनर फॉर्म है जो बार बार हो जाता है, वो 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत लोगों को दाग रहता है, बहुत लोगों को नहीं भी रहता है। ये तो एक तरह का हर्पीस, इसके लिए भी हालांकि मेडिकेशंस आती हैं। किसी को अगर ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा लहर जलन होता है, होने से पहले ज़्यादा सुरसुराहट वगैरह हो रही है, तो उसके लिए भी 4-5 दिन के मेडिकेशंस होती हैं, वो ले सकते हैं। हालांकि इसकी ज़रूरत ज़्यादातर लोगों को नहीं पड़ती है। अगले हर्पीस का फॉर्म ये होता है जो चिकन पॉक्स होता है, जो बच्चों में आप देखते होंगे तमाम पानी भरे हुए दाने बन जाते हैं,
1: जी
0: उसका दाग रहता है, फुल बॉडी होता है, ठीक है ना। ये भी एक वही सेम वायरस से वेरिसेल्ला होता है जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। जब यही जब बड़े लोगों में ये हर्पीस होता है तो जॉस्टर का फॉर्म लेता है, हर्पीस जॉस्टर, जो आप देखते होंगे बॉडी के आधे हिस्से में एक तरफ से दूसरी तरफ तक, पेट से लेके पीठ तक, या हाथ पर या सर के आधे हिस्से में पूरा पानी वाले छाले बन जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है लोगों को। ये होने से पहले ही लोगों में दर्द और या फीवर स्टार्ट हो जाता है, उनको समझ में आ जाता है कि कुछ होने वाला है। फिर उसके बाद दाने पानी वाले निकलेंगे, उसका धीरे धीरे वो 3-4 दिन तक बढ़ते हैं, और उसको नज़रअंदाज किया तो फिर उसमें पेन काफ़ी दिन तक परसिस्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए जैसे ही इस तरह के दाने हों या ऐसे कोई सेंसेशन हो तो तुरंत वैसे केस में आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, हर्पीस का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, वो चीज़ रुक जाता है। हाँ, दर्द किसी किसी पेशेंट में, किसी के पेशेंट में 5 दिन भी दर्द रहता है, किसी में 3-4 महीनों तक भी दर्द रह जाता है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट भी बहुत है, किसी को सिर्फ दवा खाने से भी ठीक हो जाता है, किसी को इंजेक्शन तक लगाने पड़ते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, अल्टीमेटली ठीक हो जाता है।
1: कोई भी मर्ज है वो ठीक हो सकता है अगर हम सही ट्रीटमेंट ले, तो
0: बिल्कुल,
1: यही बात
0: बस
1: है।
0: टाइमली उसको इंटरवीन करना है।
1: जी
0: हर्पीस खासकर उन लोगों में ज़्यादा होता है जो

0: जिनके अंदर कोई इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी है, जैसे हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट्स काफ़ी हैं, उन लोगों को हर्पीस होने का चांस ज़्यादा रहता है, या कोई किन्हीं का कैंसर कीमोथेरेपी वगैरह चल रहा है, उन लोगों को हर्पीस ज़्यादा होता है। अब तो मार्केट में हर्पीस की वैक्सीन भी आ गई है, तो जिनको बार बार हर्पीस हो रहा है तो वो लगवा सकते हैं बिल्कुल भी।
1: वैक्सीन लगा करके हम बच सकते हैं। इसके साथ एक और बीमारी है जो अक्सर लोगों के अंदर देखी जाती है, कमोबेश सुनने को मिलता है क्या भाई, तो सिरोसिस हो गया। ये जो बीमारी है ये किस तरह की बीमारी है और इसमें किस हद तक जो है वो इलाज काम करता है और लोग किस हद तक सेहतमंद हो पाते हैं?
0: देखिए, सोरायसिस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जैसे विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, वैसे ही सोरायसिस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि स्किन का जो टर्नओवर रेट होता है, स्किन बहुत तेज़ी से ग्रो करने लग जाती है, इसलिए स्किन उठने लग जाती है, वहाँ के रेडनेस होने लग जाता है, स्केल निकलने लग जाता है स्किन से, तो सोरायसिस होता है। ठीक है, इसको थोड़ा लोग जो आम लोग हैं वो एक्जिमा और सोरायसिस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। सोरायसिस का भी ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि वो जड़ से चला ही जाए, उसमें बहुत तरह के सोरेसिस होती हैं। सोरेसिस इनफैक्ट स्किन से लेके जॉइंट तक को इन्वॉल्व करती है, नेल को भी इन्वॉल्व कर लेती है। तो जैसे ही सोरेसिस स्टार्ट होता है, जिसका ज़्यादा लोकेशन कॉमन है, सोरेसिस सर में ज़्यादा होता है, या कोहनियों के पीछे, या घुटनों के आगे, या पीठ के हिस्से में, इनमें सोरेसिस ज़्यादा, लाल रंग के बड़े बड़े पैच जिसपे पपड़ी जैसे उधरते रहते हैं, ठंड में ज़्यादा तंग करते हैं सोरेसिस, ठंड में बढ़ जाती है, गर्मी में थोड़ी कम हो जाती है, मतलब स्किन ड्राइनेस, ठंड में स्किन ड्राई होती है, सोरेसिस बढ़ जाएगी। इसलिए सोरेसिस के मरीज़ हमेशा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, और सोरेसिस का भी ट्रीटमेंट है, प्रॉपर कंट्रोल रहता है सोरेसिस, बहुत तरह के ट्रीटमेंट है, बेसिक हफ्ते वाली दवा भी है, लगाने वाली दवा से बहुत लोगों का ठीक हो जाता है, किसी को हफ्ते वाली दवा भी चलानी पड़ती है, उससे नहीं होता, किसी को रोज़ की दवाई देनी पड़ती है, उससे भी नहीं होता है, इंजेक्शंस तक आते हैं जो कि काफ़ी महंगे महंगे इंजेक्शंस भी होते हैं, लेकिन सारी ट्रीटमेंट्स उसको कंट्रोल करके रखती हैं। हाँ, कुछ समय में किसी किसी का ठीक हो गया सोरायसिस, तो किसी को 5 दिन बाद भी हो सकता है, किसी को 5 साल बाद भी हो सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता
1: नहीं
0: है
1: भी हो
0: दोबारा।
1: सकता है। ये जो सोरायसिस की जो बीमारी है तो ये इसके लिए भी कोई ऐसा कोई स्पेशल है कि भाई इस एज में ही हो सकती है,
0: नहीं,
1: कुछ
0: ऐसा
1: ऐसा भी
0: कुछ नहीं
1: है?
0: है, ये बच्चों में भी सोरायसिस होती है,
1: अच्छा,
0: और 70 साल 80 साल की एज में भी सोरायसिस स्टार्ट होती है, यंग
1: कभी
0: एज में,
1: भी।
0: लेकिन ज़्यादा जो कॉमन एज है सोरेसिस स्टार्ट होने का वो है 30 to 40 ईयर्स के बीच में।
1: आपने जो कहा कि उनको लगाना चाहिए मॉइस्चराइजर, बॉडी को मॉइस्चराइज रखें, डिहाइड्रेट ना होने दें, तो उसके लिए क्या है कि वो गर्मी में भी मॉइस्चराइजर लगाएंगे?
0: देखिए, गर्मी में भी उनको सोरेसिस की दिक्कत आ रही है तो मॉइस्चराइजर लगाएं, वो बिल्कुल लगाएं।
1: अच्छा। अक्सर डॉक्टर साहब हम एक चीज़ और देखते हैं लोगों के जिस्म के ऊपर, जनरली तो लोग को क्या बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा आपके चेहरे पे तिल है, आपके हाथों पे तिल है, लेकिन ये तिल की जो क्वांटिटी बढ़ने लगती है जिस्म के ऊपर और कई बार उसकी शक्ल बदलती है, नॉर्मली काला या भूरा होता है लेकिन कई बार वो रेड शक्ल में जो बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो ये होना अच्छी चीज़ है या फिर ये सेहत के एतबार से कहीं कुछ मनफी इसके असरात बताए जा सकते हैं?
0: देखिए, तिल जो रेड वाली आप बता रही हैं तिल, वो बहुत लोगों को एज के साथ 30-40 साल की उम्र के बाद देखिएगा पेट वगैरह पे लाल लाल मस्से जैसे होने लग जाते हैं, उनको चेरी एंजियोमा बोलते हैं हम लोग अपने साइंटिफिक टर्म में, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, अगर किसी को ऐसा दिखने में कॉस्मेटिकली ख़राब लग रहा है, चेहरे पे हो गया कुछ इसको, तो उसको भी लेज़र के ज़रिए से या मशीन से या एक्सरसाइज करके हटाने का ऑप्शन हमेशा रहता है, लेकिन अगेन ये चीज़ है कि अगर थोड़ा बहुत है तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी को अचानक से बहुत ज़्यादा निकलने लग गया तो फिर उसको प्रॉपर इवेल्युएशन का ज़रूरत है, क्योंकि कई दफ़ा ये भी होता है कि बॉडी के अंदर कोई सीरियस डिजीज़ होती है तो स्किन पे बहुत ज़्यादा तिल या मस्से अचानक से निकलने लग जाते हैं, उस टाइम आपको केयरफुल हो जाना है और अपने डॉक्टर से मिलना है और फर्दर इसको इवेल्युएट कराना है।
1: इन तमाम चीज़ों के साथ तो ये समझ में आया कि सारी बीमारियां जो है वो ठीक हो सकती हैं, शर्त ये है कि हम पेशेंस रखें और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, मिलते रहें। तो हमारे सामीन को बताइए कि जो जिल्द है, हमारी जो स्किन है, उसको सेहतमंद रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या खाएं क्या ना खाएं?
0: खाना तो हमेशा हेल्दी फूड लेना अच्छा ही होता है हर चीज़ के लिए, चाहे वो स्किन हो, चाहे कोई भी ऑर्गन हो। स्किन के लिए भी ज़्यादा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, प्रॉपर वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें, और जो है फ्रूट्स वगैरह लें, और नॉन वेज भी खा सकते हैं, वेज भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये खाने से स्किन ख़राब होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा खाना खाएं, टाइम पे खाना खाएं, प्रॉपर वाटर इनटेक लें, सन प्रोटेक्शन लें, जब भी बाहर निकलें छाता लगा के निकलें, सनस्क्रीन का प्रॉपर इस्तेमाल करें, और सन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है खासकर स्किन के केयर के हिसाब से भी, सनलाइट से स्किन काली भी होती है, टैनिंग भी होती है, जो तिल वाली प्रॉब्लम बता रही हूँ वो सब भी आती है। बस यही सब, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस कर करके, स्ट्रेस ना लें, सुबह उठें, योगा करें, एक्सरसाइज करें।
1: फल में कुछ ऐसा भी कोई स्पेशल फल है जो स्पेशली स्किन के लिए ही है कि
0: हाँ
1: भाई
0: देखिए,
1: आपके
0: साइट्रस
1: ऊपर
0: फ्रूट
1: बहुत?
0: जो होता है, थोड़ा विटामिन सी वगैरह जिसमें ज़्यादा होता है, तो विटामिन सी का स्किन में एक अच्छा रोल होता है, थोड़ा मतलब स्किन हेल्दी ग्लोइंग रहती है, तो ये आप एक तरीके से कह सकते हैं, हालांकि हर चीज़ बेनिफिशियल है, कोई ऐसा किसी एक को सेपरेट करके कहना कि ये एक ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा
1: जिसकी
0: दूसरे के साथ
1: जिसके
0: बीमारी
1: स्किन
0: हो
1: को
0: जाएगी।
1: जिसकी बॉडी को जो सूट कर रहा है, कई बार ऐसा भी होता है। तो
0: जी।
1: इसके साथ साथ क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, वहाँ मौसम हमेशा बदलते रहते हैं, तो इस बदलते हुए मौसम में कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात, इस बदलते हुए मौसम में आप हमारे

0: अमीन को क्या कहेंगे वो अपने जिल्द का अपने स्किन का किस तरीके से ख्याल रख सकें।
1: देखिए, स्किन का ख्याल तो हर मौसम में रखना ज़रूरी है, क्योंकि स्किन की नीड हर मौसम के हिसाब से बदलती जाती है।
0: जी
1: जैसे अगर गर्मी का मौसम है तो जैसे मैंने बताया, धूप में निकले तो सनस्क्रीन लगा के निकलें, और अगर सर्दियों का मौसम है, स्किन आपकी ड्राई है, तो प्रॉपर मॉइस्चराइज़र लगाएं। वैसे गर्मी का मौसम है तो स्किन में बहुत ज़्यादा पसीने वगैरह की वजह से एलर्जी होता है, घमौरियाँ निकलती हैं, आजकल तो घमौरियाँ जख्म के शक्ल में हो रही हैं, तो अगर वैसा थोड़ा भी दिखे तो डॉक्टर से मिले, अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिले, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, अदरवाइज वो बढ़ जाएंगे तो आपको बाद में ज़्यादा परेशानी होने लग जाएगी। वैसे बरसात वगैरह में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कीड़े काटने की बीमारी आने लग जाती है स्किन पर। हम लोग जो है काफ़ी, मतलब मान लीजिए कि 5 to 10% पेशेंट सिर्फ इंसेक्ट बाइट के देखने लग जाते हैं जैसे बरसात होती है। तो घर को प्रॉपर तरीके से नेट वगैरह लगा के रखें, खासकर जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको मॉस्किटो नेट में लगा कर के अंदर ही रखें और ध्यान रखें। तो स्किन का केयर हर तरह से करना बेहतर रहेगा, मॉइस्चराइजर लगाएं, पूरे कपड़े पहने, ये सब चीज़ें तो हैं जो स्किन जिससे बेहतर हो सकती है।
0: डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत सारी बातें बताई और बहुत बहुत कुछ निकल करके आया। बस इसमें एक चीज़ समझ में आई कि हमें सब्र रखना है और हमारे डॉक्टर के ऊपर जो है वो भरोसा रखें। जितनी भी बीमारियां वो ठीक हो सकती हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना बहुत कीमती वक्त दिया, आपका बहुत सारा शुक्रिया हम अदा करते हैं।
1: मुझे लगता है कि शुक्रिया के मुस्तहिक आप लोग हैं, क्योंकि आपने मुझे यहाँ बुलाया और हमारे सामईन हजरात को इतना कुछ जानने का मौका मिला मेरे ज़रिए से, मेरे लिए बड़ी बात है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सामईन, अभी आप सुन रहे थे सेहतनामा। मौजूद था हाई जिल्द के मुख्तलिफ अमराज और हिफाजती तदाबीर। इस मौजू पर डॉक्टर महताब आलम से शगुफ्ता परवीन की गुफ्तगू हो रही थी। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में चलते चलते चंद गजलों का लुत्फ उठाते हैं।
3: अभी अलविदा मत कहो।

अभी आप हसरत मोहानी की लिखी ये गजल सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में अगली गजल।

अभी आप सुन रहे थे सभी अब्बास की लिखी ये गज़ल आशा भोसले की आवाज़ में। इसी के साथ उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का वक्त अब यहीं ख़त्म होता है। ज़र्रीन फातिमा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। पेश है फिल्मी गानों का कार्यक्रम रसमंजरी।

श्वेता रसमंजरी कार्यक्रम में लेकर आए पहला गाना आपके लिए मोहित चौहान की आवाज में तमाशा फिल्म से, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत है ए आर रहमान का।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अरे हमार बाबूजी के कहना बा।

0: वृद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: खो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: आरबीआई कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं रसमंजरी कार्यक्रम में। लीजिए अगला गाना पेश है शिल्पा राव की आवाज में पा फिल्म से स्वानंद किरकिरे के बोल पर इस गाने की धुन बनाई है इलैया राजा ने।

बर्फी फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे पापोन और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। नीलेश मिश्रा के बोल थे और संगीत प्रीतम का था। इसके साथ ही रसमंजरी का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी।

0: नई बात, नई शुरुआत, नया अंदाज हम लाए हैं आप प्यारे श्रोताओं के लिए, एक नई रवानी लाए हैं। आइए सुनते हैं बाल किलकारी।
1: नमस्कार, मैं अनुराग कुमार
2: और मैं आकृति राज।
1: बाल किलकारी के इस नए अध्याय में हम आपका स्वागत करते हैं। अच्छा आकृति, आज तुम ग्राउंड में हमारे साथ लंच करने नहीं आई, ऐसा क्यों भला? रोज तो तुम सबसे पहले लंच करने के लिए तैयार रहती हो, आज ऐसा क्या हो गया?
2: अरे अनुराग, वो मैं आज लंच नहीं लाई थी, इसीलिए नहीं आ पाई।
1: तो हमारा लंच खा लेती, हम सब तो लाए ही थे।
2: हाँ, खा तो सकती थी, पर मैंने सोचा कि आज थोड़ा पढ़ लेती हूँ, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। एग्जाम्स भी तो आने वाले हैं ना?
1: हाँ, आने तो वाले हैं, पर लंच टाइम कौन पढ़ता है? खैर, यह सब छोड़ो, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम तो रोज लंच लाती हो, तो फिर आज क्यों नहीं ला पाई?
2: अरे वो मेरी मम्मी ने कद्दू बनाया था और कद्दू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने उसे चखा तक नहीं और मम्मी ने मुझे बहुत डांटा, इसलिए मैंने आज लंच भी नहीं लाया।
1: पर कद्दू तो बहुत स्वादिष्ट होता है,

0: तो खाता भी हूँ, मुझे तो कद्दू बहुत पसंद है।
1: तुम्हें खाना है तो खाओ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद।
0: पर पता है कि तुम्हें कद्दू क्यों नहीं अच्छा लगता?
1: क्यों?
0: क्योंकि तुम अभी एक छोटी बच्ची ही रही।
1: बताना है तो बताओ, मेरा मजाक मत उड़ाओ।
0: आम तौर पर बच्चों को कद्दू पसंद आता है, लेकिन अगर बच्चों को कद्दू पसंद नहीं आ रहा है तो इसकी वजह ये हो सकती है कि उसे ठोस खाने का अनुभव न हो।
1: अच्छा, तो ऐसा है।
0: और तुम्हें पता है कि कद्दू को राष्ट्रीय सब्जी भी कहा जाता है?
1: हाँ, सुना तो मैंने भी है।
0: हाँ तो चलो बताओ क्यों कहा जाता है।
1: ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े जानकार बन रहे हो तो तुम ही बता दो।
0: हाँ हाँ बताता हूँ। भारतीय कद्दू को राष्ट्रीय सब्जी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा इसलिए मिली क्योंकि यह पूरे देश में व्यापक रूप से उगता है और कई तरह की मिट्टी में पनप सकता है।
1: वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है अनुराग।
0: हाँ, तुम्हारी तरह पढ़ाई से जी नहीं चुराता रहता हर वक्त।
1: तो चलो यह भी बता दो कि कद्दू पहली बार कहाँ और कब पाया गया था।
0: यह तो मुझे पता था, पर मैं भूल गया। और मैं यह भी भूल गया कि हम दोनों आज अकेले ही बात करते रह गए। अपने दोस्तों को तो भूल ही गए।
1: तो चलो चलते हैं दोस्तों के पास।
0: हेलो दोस्तों।
2: हाय आकृति। हाय अनुराग।
3: अरे देखो, ये दोनों भी आ गए। चलो खेलने चलते हैं।
0: अरे तुम लोगों को सिर्फ खेलने को ही सोचता है क्या?
3: अब खेलेंगे ही नहीं तो क्या ही सोचेंगे हम लोग।
1: कुछ सोचने को नहीं ना है तुम्हारे पास, तो यह बताओ कि कद्दू पहली बार कब और कहाँ पाया गया था।
3: है? मुझे तो नहीं पता।
1: मुझे पता है, मैं बताती हूँ। कद्दू की उत्पत्ति करीब 7,500 साल पहले मध्य अमेरिका में हुई थी। कद्दू के बीज मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में 5,500 ईसा पूर्व से ही पाए जा रहे हैं।
2: अरे वाह आरती, तुम्हें तो बहुत जानकारी है। तो चलो यह भी बता दो कि अनाज की उत्पत्ति जब नहीं हुई थी तो लोग क्या खा कर रहते थे?
0: रुको मैं बताता हूँ। जब अनाज नहीं था तब लोग कच्चा मांस, मछली, फल, सब्जियाँ और घोंगे खाते थे। आग जलाने और भोजन पकाने का तरीका आविष्कार होने से पहले लोग जानवरों को कच्चा खाते थे।
4: अच्छा दोस्त, तो लगभग कब तक लोग कच्चे मांस का सेवन करते रहे?
0: मानव अस्तित्व के लगभग पहले 10 लाख वर्षों तक कच्चे मांस का सेवन किया जाता था।
1: और तुम लोगों को पता है, जैसे जैसे उन लोगों में बदलाव आने लगा तो खाना भी बदलने लगा, जैसे कि पका हुआ मांस, फल सब्जियां, अनाज और बीज।
2: और पका हुआ मांस आग के आविष्कार के बाद मानव पूर्वजों ने मांस को पकाना शुरू किया, जिससे यह अधिक पचने योग्य और सुरक्षित हो गया।
5: यह भी जान लो कि प्रारंभिक मानव पूर्वजों ने फल व सब्जियों का सेवन शुरू किया, जो उनके आहार में विविधता और पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण थे।
3: साथ ही प्रारंभिक मानव पूर्वजों ने अनाज व बीजों का सेवन शुरू किया, जो उनके आहार में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण थे।
0: अच्छा मुझे यह बताओ कि यह लोग अनाज तो खाने लगे थे, पर अनाज की उत्पत्ति कब हुई थी?
1: अनाज की उत्पत्ति लगभग 10,000 वर्ष पूर्व में हुई थी, जब लोगों ने पौधे उगाने और फसलें उगाने की शुरुआत की थी।
2: अच्छा दोस्त, पर इस अनाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी?
4: मुझे पता है, अनाज की उत्पत्ति मध्य पूर्व में हुई थी, जिसे फर्टाइल क्रेसेंट के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र वर्तमान तुर्की, सीरिया, इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन देशों को कवर करता है। लेकिन सबसे पहला अनाज क्या था जिसकी खेती की गई?
1: गेहूं सबसे पहला अनाज था जिसकी खेती की गई थी।
0: यह भी बता दो कि हमारे भारत में सबसे पहली खेती किस चीज की हुई थी?
5: भारत में उगाने वाला सबसे पहला अनाज चावल था। इसकी खेती लगभग 7,000 वर्ष पूर्व गंगा घाटी में शुरू हुई।
1: हाँ, और तुम लोग को पता है कि बिहार भारत में चावल के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। भौगोलिक रूप से बिहार सिंधु गंगा मैदान पर स्थित है, जो इसे सघन खेती कृषि के लिए उपयुक्त बनाता है। यहाँ 60 से अधिक किस्मों के चावल की खेती की जाती है। यह वाणिज्यिक और मुख्य भोजन फसल है और दाल भात बिहार में सबसे अधिक खाया जाने वाला आहार है।
3: हमारे भारत में कितने प्रकार के अनाज पाए जाते हैं?
1: भारत में विभिन्न प्रकार के अनाज पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख है। मुख्य अनाज चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार और रागी।
2: दलहन अनाज चना, मटर, उड़द, मूंग, मसूर और तूर।
1: और तिलहन अनाज मूंगफली, सूर्यमुखी, सरसों, अलसी और सोयाबीन।
5: और अन्य अनाज है कोदो, कुटकी, सावा, राजगीरा, बुकेट।
2: अच्छा, तुम लोगों को अपने बिहार की थाली के बारे में पता है?
0: हाँ हाँ मुझे पता है ना। विशिष्ट व्यंजन में बिहारी थाली बहुत विविध है और बहुत सारे विकल्प प्रदान करती है। इसलिए पूरे दिन अलग अलग समय के भोजन के

0: लिए अलग अलग व्यंजन खाए जाते हैं। सत्तू आमतौर पर नाश्ते में खाया जाता है। चने को पीसकर बनाया गया यह आटा बिहार के सर्वोत्कृष्ट खाद्य पदार्थों में से एक है। अधिकांश बिहारी घरों में गर्मियों की सुबह के दौरान सत्तू को पानी में मिलाकर कटे हुए प्याज और हरी मिर्चियों के साथ नमक डालकर परोसा जाता है। यह एक उच्च ऊर्जा प्रदान करने वाले पेय के रूप में काम करता है और इसे नाश्ते के लिए पूर्ण भोजन माना जाता है। यह गर्मियों की ताप को मात देने के लिए एक प्रभावी शीतलक के रूप में काम करता है।
1: सही कहा तुमने, हमारे बिहार में दोपहर और रात्रि का भोजन शायद ही कभी उन चीजों के बिना परोसा जाता है जो खाने के समग्र अनुभव को बढ़ाती है। इनमें पापड़, धनिया की चटनी, चोखा, रायता, अचार आदि शामिल है।
2: और नहीं तो क्या, शाम के नाश्ते में भी बिहार विशिष्ट नाश्तों का शान से प्रदर्शन करता है। शाम को गर्मा गर्म बहस और चर्चा के बीच चाय की चुस्की, साथ ही भुंजा का आनंद लेते हुए लोगों का समूह यहाँ की हर गली के नुक्कड़ पर पाया जाता है। भुंजा सूखे भुने हुए अनाज होते हैं जिनमें नमक, नींबू, मसालों को मिलाया जाता है। भुंजे कई प्रकार के होते हैं, जैसे चूड़े का भुंजा, चना का भुंजा और झालमुड़ी।
3: यह क्षेत्र मीठे पकवानों के लिए प्रसिद्ध है। दूध और उससे बने अन्य उत्पाद इन पकवानों की मूल सामग्री होते हैं। आमतौर पर बिहारी लोग बहुत सारे दुग्ध उत्पादों का सेवन करते हैं और इसका महत्व एक मैथिली कहावत में बहुत ही अच्छे तरह से परिलक्षित होता है। आदि घी और अंत दही, ओए भोजन के भोजन कही। अर्थात अच्छा भोजन वह होता है जो घी से शुरू हो और दही से समाप्त हो।
4: और ठेकुआ तो तुम लोगों ने खाया ही होगा,
2: इसका स्वाद किसने नहीं चखा होगा। यह बिहार का एक बहुत प्रसिद्ध पकवान है जिसे मुख्य रूप से छठ पूजा के दौरान खाया जाता है, जहां इसे देवताओं के प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। यह गेहूं के आटे, चीनी, घी या गुड़ से बने मिश्रण से तैयार किया जाता है तथा इसके बाद इसे तल दिया जाता है और नाश्ते के रूप में इसका आनंद लिया जाता है। अन्य स्वादिष्ट मीठे व्यंजन जैसे दूध पिट्ठा, लाई फेरा, शकरपारा आदि भी बिहारियों द्वारा पसंद किया जाता है।
5: बिहार के खान पान की बात हो और उसमें लिट्टी चोखा की चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
2: सही कहा, बिहारी भोजन पर होने वाली इस चर्चा में दाल पिट्ठा और लिट्टी चोखा का उल्लेख हुए बिना बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि जो हमेशा इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वह है दाल पिट्ठा और लिट्टी चोखा। दाल पिट्ठा चावल के आटे का उपयोग करके बनाया जाने वाला एक अनूठा व्यंजन है और लिट्टी चोखा बिहार का एक लोकप्रिय स्वादिष्ट भोजन है। इसका सेवन झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और नेपाल में भी किया जाता है। लिट्टी गेहूं के आटे से बनी एक लोई होती है, इसमें सत्तू का मिश्रण भरा जाता है।
1: ऐसा माना जाता है कि लिट्टी मगध क्षेत्र की देन है जो दक्षिणी बिहार में से एक प्राचीन साम्राज्य था। यह 16 महाजन पदों या साम्राज्यों में से एक था जो प्राचीन भारत में छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में था। लंबे समय से लिट्टी और चोखा किसानों से भी जुड़ा हुआ था क्योंकि इसमें महंगी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती थी। इसमें डाले गए सत्तू में विशेष रूप से शीतलन गुण होते हैं जो उन्हें पूरे दिन सक्रिय रखते हैं।
0: ऐसा कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान इस भोजन को प्राथमिकता दी गई थी क्योंकि इसे कम से कम सामग्री के साथ आसानी से पकाया जा सकता था। इससे पेट भी जल्दी भर जाता था और यह 3 दिनों तक खराब भी नहीं होता था। ऐसा कहा जाता है कि तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने इसे अपने यात्रा पर ले जाने वाला अपना भोजन बनाया था।
3: बिल्कुल, क्षेत्रीय भारतीय भोजन के लिए भारत एक विशाल राष्ट्र है और इसे 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उन क्षेत्रों को बनाने वाले सभी राज्यों और प्रांतों में अलग अलग व्यंजन और भोजन की प्राथमिकताएं हैं। हमें भी इन सब के बारे में जरूर जानना चाहिए।
4: क्यों नहीं, इनके बारे में तो मुझे भी पता है। रुको मैं बताती हूँ। पूर्वी भारतीय व्यंजन बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्य भारत के पूर्वी क्षेत्रों में स्थित है। अनुकूल वातावरण के कारण पूर्वी भारत चावल का बहुत उत्पादन करता है। भारत के पूर्वी प्रांतों में चावल एक मुख्य आहार है।
1: हाँ, मुझे भी पता है। पश्चिमी भारतीय व्यंजन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और गोवा जैसे 4 प्राथमिक क्षेत्र पश्चिमी भारत के व्यंजनों को अलग करता है। पश्चिम भारत में चावल भी एक प्रधान व्यंजन है। इसके अतिरिक्त गुजरात और राजस्थान जैसे स्थानों में गेहूं, बाजरा और ज्वार की खेती होती है।
0: एक और चीज मैं बताता हूँ, उत्तर भारतीय लोगों ने अपने लगभग 500 साल के शासन काल में भारत में कई योगदान दिए, विशेष रूप से इसके व्यंजन के लिए। भोजन मध्य एशियाई व्यंजनों के

0: बहुत करीब है, क्योंकि मुगलों की उत्पत्ति उस क्षेत्र से हुई थी।
1: बिल्कुल, और दक्षिण भारतीय व्यंजन भारत के अन्य हिस्सों में भी काफी पसंद किए जाते हैं। इस देश में कहीं और रहने वाले किसी व्यक्ति से पूछे कि बदलाव के लिए वे कौन से अन्य भारतीय व्यंजनों का स्वाद लेना चाहेंगे, बहुमत दक्षिण भारतीय की ही होगी।
2: अच्छा, तुम लोगों को पता है कि हमारे 28 राज्यों का प्रसिद्ध भोजन क्या है?
0: हाँ हाँ, मुझे कुछ कुछ पता है। जैसे 28 राज्यों का प्रसिद्ध भोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ की कबाब और बिरयानी, बनारस की चाट और कचौड़ी है,
1: और महाराष्ट्र में पूरन पोली का वड़ा पाव, गुजरात में ढोकला और खाखरा।
3: आप सभी को बताते चलूं कि राजस्थान की दाल बाटी चूरमा फिर गट्टे की सब्जी बहुत अनोखी है,
0: और तमिलनाडु की इडली एवं कर्नाटक मैसूर का मसाला डोसा प्रसिद्ध है।
2: तुम लोगों को पता है जब हम बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो माता पिता के लिए उनकी खान पान की आदतों पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बुद्धिमान लोगों ने लोकप्रिय कहावत कही और उसे साबित भी किया है, स्वस्थ भोजन खाने से निश्चित रूप से स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन शैली मिलती है। दूसरी ओर खराब भोजन आपके स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और आपके लिए कई बीमारियों का द्वार खोल देगा।
4: अच्छा और सादा भोजन ही शरीर को स्वस्थ रखता है, लेकिन हम सभी इतना जंक फूड खाते हैं कि लगभग बीमार ही होते रहते हैं।
1: जंक फूड में तेल युक्त और तले हुए स्नैक्स, पुराने पैक किए गए फल और सब्जियां, उच्च वसा और चीनी वाला भोजन आदि है, जिससे हमें बचना चाहिए।
5: सही कहा, अपने व्यंजनों का इतिहास भी लाजवाब रहा है। यह पता है कि भारतीय पाक संस्कृति हजारों वर्षों से फैले ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास का एक उत्पाद है। इसमें वैदिक काल के दौरान समाज में महत्वपूर्ण घटनाओं ने विशिष्ट पाक सेवन परंपराओं के विकास को प्रभावित किया।
4: आधुनिक प्रचलन में कैफे, ढाबों और ऑनलाइन ऐप्स की आकर्षक दुनिया भी कमाल है। भारतीय व्यंजन समय के साथ विकसित होते रहते हैं। भारत में रेस्तरां संस्कृति आधुनिक समय की देन है।
3: हालांकि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को परोसने वाले सड़ाए और धर्मशालाएं प्राचीन काल से मौजूद थी, वर्तमान समय में ढाबा नामक रेस्तरां की एक श्रेणी काफी लोकप्रिय हो गई है। इनके ग्राहकों में मूल रूप से भार वाहन चालकों के शामिल होते हुए ये भोजन स्थल आज के शहरी युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गए हैं।
0: पर अब समय सीमा को देखते हुए हमारे श्रोताओं से विदा कहने का समय आ गया है।
4: तो प्यारे श्रोताओं, आप भी हमारे इस बाल किलकारी के कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कविता, कहानी या गीत इस कार्यक्रम में शामिल हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9142432658।
0: जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 9142432658।
4: बाल किलकारी होगा और मजेदार।
0: मिलते हैं अगले रविवार,
4: जिसमें होगी नई सोच, नया विचार,
0: इस कार्यक्रम को दे ढेरों प्यार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बाल किलकारी। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल मंडली।

0: जय हिंद नन्हे साथियों।
1: जय हिंद
2: जय हिंद
1: दीदी।
2: दीदी
0: आज नन्हे साथियों से मिलने रंजना दीदी आई हैं और अपने साथ आपके दो साथियों को लेकर आई हैं बाल मंडली कार्यक्रम में, और इनका नाम है अलीना और नचिकेत। आप लोग स्कूल जाते हैं?
1: जी दीदी।
2: जी जी मैं जाती
0: हूं। स्कूल से आने के बाद कैसा लगता है?
2: स्कूल से आने के बाद मेरे को थोड़ा थकावट जैसा लगता है।
0: और आपको अलीना?
1: मुझे भी थोड़ा थकावट जैसे लगता है, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अच्छा लगने लगता है।
0: हाँ, ये थकावट क्यों होती है जबकि स्कूल में तो बहुत अच्छा लगता है, और जब स्कूल से आते हैं तो थकान, या तो आप अच्छे से भोजन नहीं करती हैं या भोजन करती हैं जैसे दूध दही, आपको दाल है, हरी सब्जियां हैं, चावल है, रोटी है, यदि हम ये सब पोषक तत्व से भरपूर भोजन

0: लेते हैं तो हम कितना भी काम करें थकावट नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं कमी होती है, तभी हमको शरीर में परेशानी भी होती है। जब हम आमने सामने बैठकर बातें करते हैं तब तो अच्छा लगता है, लेकिन आज हम रेडियो के माध्यम से अपने नन्हे साथियों से बात कर रहे हैं ना, तो ये भी अच्छा लगता होगा आप लोगों को।
1: जी
0: जी
1: दीदी,
0: जी और आज के युग में विज्ञान और तकनीक का समय है, जिसमें मोबाइल फोन, इंटरनेट, वीडियो कॉल और संदेश सेवा हमारी दूरी को बहुत कम कर देता है। वो कैसे अलीना, आप बताइए।
1: जो आदमी हमारे दूर रहते हैं या फिर हमारे सिटी से या हमारे स्टेट से थोड़ा दूर रहते हैं, उन्हें हम कॉल करके उनसे उनकी हालत पूछ सकते हैं। अगर किसी का कुछ अच्छा सेलिब्रेशन है तो हम वीडियो कॉल से उनका जानकारी ले सकते हैं।
0: और आप बताइए नचिकेत, आप कैसे देखते हैं।
2: जो आदमी हमारे से दूर रहते हैं
0: हाँ
2: अक्सर, जैसे नाना नानी दादा दादी, उन सब से हम लोग अपना बातचीत करके उनका हाल पूछ सकते हैं, वो कैसे हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं
0: हाँ
2: या ऐसे।
0: या फिर कुछ उन कुछ भेजना है तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर लेते हैं हम
1: जी
0: लोग, और उनसे फोन से बता देते हैं कि आपके लिए ये चीज, या आप मान लीजिए अच्छे नंबर से पास हुए तो दादा दादी नाना नानी या कोई भी जो आपसे दूर है आपको उनको बताना है, तब तो फोन करेंगे मोबाइल से या वीडियो कॉल करेंगे, ऐसे ही तो बता पाएंगे ना। तो बच्चों, दूर संचार का मतलब क्या होता है बताएं? दूर बैठे लोगों तक सूचना पहुंचाना। और पहले संदेश पहुंचाने में कई दिन लग जाते थे, पहले जब ये टेलीफोन वगैरह नहीं था, बहुत पहले की बात है, तब पत्र के द्वारा हम लोग समाचार अपना अपने
2: पहुंचाते
0: परिचितों तक पहुंचाते थे।
1: थे।
0: इससे काफी समय लगता था, धीरे धीरे तकनीक के आई नई नई और हमारे लिए पलक झपकते ये काम हो जाता है। हम रिंग करते हैं और दूसरी तरफ फोन रिसीव होकर हेलो की आवाज आती है,
1: जी
0: फिर हमारी बातें शुरू हो जाती हैं। जब जुड़ जाते हैं तो फिर कितनी देर बात होती है समय का पता नहीं चलता है, ऐसा होता है
1: जी अक्सर
0: अक्सर होता है ना। लेकिन इस बीच में यदि जब हम बात कर रहे हैं किसी से और उस पर पता चलता है मोबाइल पर अगर किसी का कॉल आ रहा है तो
1: जी
0: उस समय हमको जिनसे बातें कर रहे हैं उनको थोड़ा रोकना चाहिए। हो सकता है जिसने कॉल किया कोई जरूरी काम हो, कुछ बताना चाहते हो ऐसी बात, तो इसलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए,
1: जी
0: उस कॉल पर फिर से हमको बात कर लेनी चाहिए। यही सब तो दूरसंचार सुविधाओं का लाभ हम लेते हैं। और मोबाइल, इंटरनेट, समाचार, ये सब जो है तो इन चीजों का जितना प्रयोग करें उतना ही लाभ हम लेते हैं, उससे कुछ हानि भी है। वो
1: जी
0: क्या है?
1: हमारे साथ स्कैम हो जाता है,
0: हाँ
1: हमें पता नहीं चलता है कि किसका कॉल आ रहा है। कभी वो स्पैमर्स होते हैं, कभी वो कॉल करके हमसे मांगते हैं कि हमारे क्रेडिट कार्ड्स के इंफॉर्मेशंस और बहुत कुछ।
0: और नचिकेत, आप भी कुछ बता सकते हैं? अच्छा ही बताइए।
2: हम लोग जब भी किसी पे फोन पे कुछ कॉल आता है तो वो कभी कभी स्पैमर्स निकलते हैं, हैकर्स निकलते हैं जो हमें धमकी देते हैं।
0: हाँ, तो इससे बचा भी जा सकता है।
1: जी
0: कैसे?
1: अगर हम उस कॉल को ना उठाएं और अगर हम उसे वाइजली यूज़ करें तो हो सकता है कि हम उससे बचें, और अगर वो हमसे ओटीपी की मांग करे तो हम उसे बोले कि
0: नहीं
1: ना
0: बताएं,
1: नहीं
0: बस
1: पता।
0: हम नहीं बता सकते हैं, इतना ही बोलना होता है।
1: जी
0: और नचिकेत, आप बताइए कि इससे ये मोबाइल फोन इन सब से लाभ हम क्या-क्या ले सकते हैं? पढ़ाई लिखाई में भी इससे कुछ सुविधा मिलती है?
2: हाँ मिलती है
0: क्या
2: सर,
0: मिलती है?
2: इनसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं।
0: हाँ, यदि हमको स्कूल में कुछ पढ़ाया गया उसको हम और अच्छे से जानना चाहते हैं तो हम सर्च कर सकते
2: हाँ
0: हैं, और जो भी हमारी पसंद है किताबें और जो भी ज्ञान, कुछ भी, कोई महापुरुष के बारे में, किसी अच्छे पर्यटन स्थल के बारे में, कोई भी दुनिया की कोई भी जानकारी हम लेना चाहें तो इन मोबाइल, इंटरनेट, इन सब से हम ले सकते हैं। और गेम भी खेलते हैं। गेम खेलते हैं,
1: जी।
0: कैसा लगता है आप लोगों को वीडियो गेम खेलना, मोबाइल गेम
1: हमें
0: खेलना?
1: गेम्स खेलने तो बहुत पसंद है,
0: हाँ
1: लेकिन हमारे मम्मी पापा उसमें बहुत डांटते हैं कि नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। तो उसके पीछे हानिकारक वो भी होता है कि ज़्यादा खेलने से हमारा आँख खराब हो सकता है, और
0: हाँ
1: कभी कभार किसी का कॉल आता है तो

0: लोग गेम्स खेलते रहते हैं, तो हो सकता है कि वो इम्पोर्टेंट कॉल हो सकता है, वो हम
1: हाँ
0: काट देते हैं, तो
1: हाँ
0: उससे हमारे मम्मी पापा गुस्सा हो जाते
1: और
0: हैं।
1: ये गुस्सा तो जायज है ना।
0: जी हाँ
1: अलीना ने तो बहुत अच्छी बात बताई, और नचिकेत के भी कुछ अनुभव होंगे जो वीडियो गेम कंप्यूटर गेम से क्या परेशानी हो सकती है। अच्छा तो लगता है, खेलना भी चाहिए, क्योंकि सारे गेम बुरे नहीं होते, सबसे हानि नहीं होती है। कुछ गेम होते हैं हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो अच्छा होता है, हम अच्छे गेम खेलते हैं तो अच्छा भी लगता है।
0: जी
1: और कुछ गेम होते हैं जो हम दो चार साथी मिलकर भी खेल
0: जी
1: सकते हैं। अब जैसे लूडो है, लूडो को हम लोग बोर्ड पर भी खेल
0: जी
1: सकते हैं, और आजकल तो मोबाइल पर
0: मोबाइल
1: भी खेल सकते हैं, चेस खेल सकते
0: जी
1: हैं। तो ऐसे जो गेम होते हैं ना, उनको खेलें तो उससे हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, और जो तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होती है वो भी
0: बढ़ती
1: बढ़ती
0: है।
1: है। तो इस बात को आप लोग तो समझ ही रहे हैं। और बच्चों, आप अपने शहर में घूमते हैं? घूमने का मौका मिला है आपको?
0: जी
1: जी
0: बहुत
1: हाँ,
0: बार मिले मेरे को भी,
1: कब?
0: जब कभी कुछ लोग आते हैं हमारे घर घूमने के लिए, या
1: हाँ
0: फिर कुछ सेलिब्रेशन होते हैं हमारे घर में, या किसी का बर्थडे पार्टी होता है, तो उसमें हमें मौका मिलता है बाहर जाने का, घूमने का।
1: हाँ तो आप कहाँ कहाँ घूमी है पटना में?
0: पटना में तो मेन जगह गांधी मैदान है, पटना साइंस सेंटर, पटना साइंस सिटी है, फिर यहाँ एक म्यूज़ियम भी है, पटना म्यूज़ियम, तो ये
1: हाँ,
0: सब जगह मैं घूमी हुई हूँ।
1: और नचिकेत कहाँ कहाँ गए हैं?
0: हाँ मैं पटना में जू गया हूँ, एनिमल
1: हाँ,
0: जू, साइंस म्यूज़ियम,
1: तारामंडल,
0: प्लानिटोरियम,
1: हाँ प्लेनेटोरियम।
0: गांधी मैदान और
1: और
0: बहुत
1: आपको
0: सारे।
1: पता है कि पहले जो म्यूजियम था उसको जादूगर बोलते थे,
0: जी
1: और अभी जो है एक नया म्यूजियम संग्रहालय बना है, वो बहुत बड़ा बना है, उसमें बहुत
0: जी
1: सारी चीजें हैं जिनको हम देखें तो हमको अच्छा भी लगेगा, और अपने शहर की ये खासियत है, यहाँ जो चीजें हैं उनको हम देखें समझे, तभी तो अपने जो दोस्त यहाँ आए या हमारे परिचित आए उनको बताएं और उनके साथ घूमें। और म्यूजियम से हम क्या-क्या देख पाते हैं बताइए।
0: म्यूज़ियम में हम पहले के इन्फॉर्मेशंस जान सकते हैं, पहले के लोग कैसे क्या क्या यूज़ करते थे, कैसे उनका डेवलप हुआ, और उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन होते हैं वो जान सकते हैं। ये चीज़ें हमें पढ़ाई वगैरह में बहुत काम भी आती है।
1: बिल्कुल, संग्रहालय हमारे इतिहास और संस्कृति का खजाना होता है, और यहाँ पुराने हथियार, मूर्तियाँ, जैसा कि अलीना ने बताया, चित्र, सिक्के, ऐतिहासिक वस्तुएँ बहुत सुरक्षित रखी जाती हैं, उसके साथ जो भी वस्तु रखी है उसके विषय में जानकारी भी लिखी होती
0: जी
1: है कि वो कब मिला, कहाँ से मिला, कितनी पुरानी चीज है, उसका प्रयोग कहाँ कैसे होता है, ये सारी जानकारी हमको मिलती है। तो जब भी ऐसी जगहों पर जाएं, संग्रहालय या कोई ऐसे ऐतिहासिक जगह जाएं, तो वहाँ समय दें, उसकी पूरी जानकारी लें, आपको अच्छा भी लगेगा। और नचिकेत, आपको भी घूमने का शौक है?
0: जी हाँ मेरे को भी बहुत घूमने का शौक है।
1: तो गर्मी छुट्टी होगी तो कहीं जाने का प्लान है?
0: अभी तक तो नहीं बनाया, पर जा सकते हैं हम लोग, जैसे लद्दाख जा सकते हैं, कश्मीर जा
1: वाह
0: सकते हैं।
1: वाह, तो बड़ी अच्छी जगह है। और अपने भारत देश में जहाँ एक तरफ रेगिस्तान का भी हम आनंद ले सकते हैं, राजस्थान जाए तो बर्फीले जगह का भी आनंद ले सकते हैं, जैसे आपने लेह लद्दाख कहा, और हम चाहे तो हरियाली, पहाड़, ये सब शिमला वगैरह जाए तो वैसा माहौल हमको मिलता है, मैदानी जगह भी है जहाँ बहुत सुंदर। और अपने पटना में भी बहुत सारे पार्क हैं जहाँ हम जब मौका मिले तो जाकर बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं और अच्छा अनुभव कर सकते हैं।
0: जी
1: आप लोग जाते हैं
0: जी
1: जी
0: हाँ
1: छुट्टियों में?
0: जी
1: अच्छा
0: छुट्टियों में
1: लगता
0: जी
1: है
0: बहुत
1: जी,
0: अच्छा।
1: यानी कि कहीं भी हम घूमने जाएं, इससे हमारा मनोरंजन तो होता ही है और साथ साथ हमको कुछ ज्ञान भी मिल

0: भला आँख में चोली, दाई आँख बंद के बाई आँख खोली।
1: किसने?
2: मैंने?
1: नहीं तो?

0: कुछ उस जगह के बारे में जानते हैं, उस जगह की क्या खासियत है। और कभी कभी हम कहीं जाते हैं ना, तो वहाँ खाने पीने की कुछ विशेष चीजें भी मिलती
1: जी
0: हैं, तो हमको ये भी आनंद मिलता है।
1: जी
0: आपको खाने में क्या पसंद है अलीना को?
1: मुझे खाने में तो जंक फूड्स पसंद है,
0: हाँ
1: लेकिन मैं चाहूँगी कि वेजिटेबल ज़्यादातर खाना चाहिए। और अक्सर जब भी मैं बाहर जाती हूँ
0: हाँ
1: तो अपने साथ पानी का बॉटल और कुछ सैलड्स वगैरह लेके जाती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी आदत है आपकी।
1: जी
0: तो ये आदत आपने खुद अपने में डाली या आपकी मम्मी ने आपको
1: नहीं,
0: बताया?
1: इसका सारा ये तो मम्मी के ऊपर ही जाता है, क्योंकि
0: हाँ
1: हमेशा मम्मी बोलती हैं कि जंक फूड्स नहीं खाना चाहिए, इससे बीमारी होता है, तो वेजिटेबल्स वगैरह मम्मी लेके चलती हैं।
0: तो ये आप मम्मी की बात मान लेती हैं और पसंद करती हैं, ये तो बहुत अच्छा। और आपके अच्छे के लिए ही मम्मी आपसे बोलती हैं, आप उसको मानती हैं, तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा और
1: जी
0: मम्मी को अच्छा भी लगेगा। नचिकेत को क्या पसंद है?
2: पर मैं कहता हूँ कि खाने को एक

0: लिमिट में खाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए।
1: जैसे क्या लिमिट में खाना चाहिए?
0: जैसे आपको पहले जितना खाना लेना है आप उतना लीजिए,
1: प्लेट में उतना ही लें जितना हम खा सकते हैं।
0: उसके बाद अगर आपको और लग रहा है कि आप और खा सकते हैं उसके बाद आपको लेना चाहिए।
1: ये तो बड़ी अच्छी आदत है कि अन्न का एक एक दाना बहुत कीमती है, क्योंकि चिड़िया जो होती है ना, वो थाली भर के खाती नहीं है, प्लेट भर के खाती नहीं है, कुछ दाने चुगती है और फिर से उड़ जाती है।

0: होती है ना, वो थाली भर के खाती नहीं है, प्लेट भर के खाती नहीं है, कुछ दाने चुगती है और फिर से उड़ जाती है। इसी तरह हम लोगों को भी भोजन है, हमारे प्लेट में जो आया है वो सीधे नहीं आया है कि
1: जी
0: कहीं से हम ले आए और प्लेट में डाल लिए। उसको किसान बीज डालते हैं, उसको सींचते हैं, इंतजार करते हैं, उसको अच्छे से संभालते हैं, तब वो फसल या फल कुछ भी तैयार होता है। तो
1: जी
0: इन सब चीज़ों की कीमत को समझना चाहिए,
1: जी
0: मेहनत को
1: जी
0: समझना चाहिए और बर्बाद नहीं करना चाहिए।
1: जी
0: यदि हमारे पास ज़्यादा भोजन या कोई पसंद की चीज़ ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं? नचिकेत बताइए।
1: यदि अगर हमारे पसंद की जो सबसे अच्छी चीज़ हमारे पास है तो हम उसे खा सकते हैं, पर एक लिमिट में खाना चाहिए। जो मेरे आसपास के लोग हैं, दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, अगर वो सब ये चीज़ें नहीं पा पाते हैं या नहीं ले पाते हैं तो हम लोग उन्हें ये चीज़ खिला सकते हैं या दिलवा सकते
0: हाँ, तो इससे आपको तो खाकर खुशी मिलेगी ही
1: हैं।
0: और
1: और
0: खिलाकर भी खुशी मिलेगी। और जंक फूड को भी हम अच्छा फूड, पौष्टिक बना सकते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: जंक फूड में क्या पसंद है आपको,
1: पिज्जा
0: तो कभी कभी बना सकते हैं या उसको थोड़ा सा बदल सकते हैं।
1: जी
0: आपकी मम्मी भी घर में पिज्जा बना सकती हैं।
1: जी
0: मैदा जो होता है ना, वो हमारे लिए हानिकारक है।
1: जी
0: उसकी जगह यदि आटे का पिज्जा मिले, अब तो बाजार में भी मिलता है,
1: जी
0: पसंद हमारी होनी चाहिए, फरमाइश हमारी होनी चाहिए कभी कभी।
1: जी
0: और पिज्जा पर तो बहुत सारी सब्जियां होती हैं,
1: जी
0: वो भी हमारे लिए पौष्टिक है। और नचिकेत को जंक फूड में क्या पसंद है?
1: बर्गर
0: बर्गर पसंद है, उसमें भी सब्जियां डाली जाती हैं, है
1: जी
0: ना? तो कभी कभी खाएं, लेकिन उसके बाद एक तो ये होता है कि यदि आपने ऐसे जंक फूड खाए तो मेहनत ज्यादा कर लीजिए। हाँ,
1: जी
0: खाना खाया, बैठ गए, सो गए, ऐसा नहीं, थोड़ा वॉक करना बहुत जरूरी है, छोटे लोग को भी, बड़े लोगों को भी।
1: जी
0: तो जब ऐसे भोजन, ऐसा खाना खाएं तो थोड़ा घूमना टहलना जरूरी है। उसके बाद जब अगला खाना खाएं उसमें जरूर हल्का खाना खाएं।
1: जी
0: तो हल्का खाना किसे कहेंगे?
1: जैसे हल्का खाना सैलड को कह सकते हैं, कम मात्रा में खाए जाने वाले खाने को हम लोग हल्का खाना कहते
0: और
1: हैं।
0: जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये सादा भोजन हो गया, ये हमारे लिए पौष्टिक होता है। तो प्रतिदिन के भोजन में तो हम सादा भोजन ही करते हैं, और मौसम के अनुसार भी खाना चाहिए। ये पता है अभी कौन सा मौसम है?
1: अभी तो लाइक ये गर्मी
0: गर्मी
1: जैसे
0: का,
1: जो चल
0: गर्मी
1: रहा
0: का,
1: है। जी
0: ये तो गर्मी का समय है ना,
1: जी
0: तो गर्मी के समय में कौन-कौन से फल और सब्जियां मिलती हैं?
1: हमें वाटरमेलन खाना चाहिए जो कि आजकल बाजार में बिकते हैं, पपाया खाना चाहिए, कोकोनट वाटर पीना चाहिए, हमें आम खाना चाहिए, खीरा खाना चाहिए, और
0: बिल्कुल,
1: बहुत भी कुछ, और जितने भी फ्रूट्स हैं जिनमें हाइड्रेशन या वाटर ज़्यादा पाया जाता है वो सारे फ्रूट्स हमें खाना चाहिए।
0: और मौसम के अनुकूल, प्रकृति का ऐसा तालमेल होता है कि मौसम के अनुकूल ही फल और सब्जियां मिलती भी हैं,
1: जी
0: है ना?
1: जी
0: अभी वाले जो फल होते हैं उसमें पानी की मात्रा ज्यादा
1: जी
0: होती है, और गर्मी में हमको वैसे ही
1: जी
0: खाना चाहिए। और नचिकेत को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या पसंद है?
1: मेरे को फ्रूट्स और वेजिटेबल में मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो है, और मेरे को लीची भी बहुत पसंद है, और मेरे को ऑरेंज खाना बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा, ये तो आपने अच्छे अच्छे फल पसंद किए हैं। आम तभी मीठा होता है और तभी हमारे लिए अच्छा होता है जब उसका मौसम अच्छे से आ जाए, वो पक जाए, उसमें मिठास आ जाए, वैसे आम हमको अच्छे लगते हैं। और
1: जी
0: लीची भी वैसी ही, जब रसीली हो जाए तभी खाएं, जब पूरी तरह बाजार में मिलने लगे तो हमको उसका स्वाद ज्यादा अच्छा लगता
1: जी
0: है।
1: जी
0: आपके पसंद के फलों का मौसम तो आ ही गया है, धीरे धीरे और भी फल आएंगे और सबका आनंद हम लोग लेंगे।
1: जी
0: तो ये तो हुई बातें। आपके पास नचिकेत ने नन्हे साथियों के लिए कुछ है सुनाने के लिए?
1: जी मेरे पास अपने नन्हे साथियों के लिए एक अच्छी सी कविता
0: अच्छी सी कविता है, तो सुना दीजिए अपने नन्हे साथियों को एक अच्छी सी कविता।
1: है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर का नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती।

0: डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जहां जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: वाह, बहुत अच्छी कविता थी। और इस कविता से क्या सीखने को मिला?
0: इस कविता से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम किसी चीज में असफल हो जाते हैं, तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें उसको और अच्छे से डटकर करना चाहिए।
1: तब हम सफल होते हैं। और बच्चों, हमारा देश भारत महान है, और इस देश के हम भारतवासी जो हैं अपने पर गर्व महसूस करते हैं कि हम सब भारतवासी हैं। और आज हम बात करते हैं हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की। वे भारत के युवा और आधुनिक सोच वाले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश में कंप्यूटर और दूर संचार को काफी बढ़ावा दिया, और उनका मानना था कि नई तकनीक से भारत आगे बढ़ेगा।
0: जी
1: और सचमुच ये भावना जो उनकी थी, उन्होंने इस बात को सोचा और उसका फायदा हम लोगों को अभी मिल रहा है। और बच्चों, आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है, और इससे हिंसा, डर और नफरत फैलता है ना?
0: जी
1: किसी तरह से अच्छा कोई भी नहीं मानता है। हम भारत देश में आगे बढ़ें, इसका नाम रोशन करें, हमेशा शांति रहे, प्रेम भाईचारा अपनाएं, ये सब कुछ एक अच्छे नागरिक की क्वालिटी होती है। और
0: जी
1: ये सब तो स्कूल में भी बताया जाता है, और यदि हम ऐसा आचरण रखते हैं तो हमारा नाम भी होता है। यदि
0: जी
1: हम अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, या आपके जो सीनियर अच्छे स्टूडेंट होंगे, वो तो हमेशा आप लोग के दिमाग में रहता होगा ना स्कूल में, कि हमको उनकी तरह बनना है।
0: जी
1: या
0: जी
1: कोई अच्छे टीचर हैं, या टीचर ने कोई अच्छी बात बताई, किसी महापुरुष के बारे में बताई, तो लगता है कि हाँ, हमको भी अपने जीवन में वैसा कुछ अच्छा करना है।
0: जी जी मेरे को लगता है
1: लगता है ना? तो
0: जी
1: अभी से ये अच्छी आदत यदि बनती है, अच्छे नागरिक हम बनते हैं, तो जरूर हम देश के लिए अच्छा कुछ करेंगे और देश का नाम रोशन होगा। बच्चों, अब थोड़ा हम लोग अलग चलते हैं, बाग बगीचे में। बाग बगीचे में जब जाते हैं तो आपको क्या-क्या दिखता है?
0: फूल, पेड़, फ्रूट, फ्लावर्स और कुछ लोग जो वहाँ नेचर की शुद्ध हवा लेने आते हैं।
1: और आपको नचिकेत कुछ और भी दिखता है?
0: जी जैसे बाग बगीचे में बहुत अच्छी हवा रहती है, वहाँ पे
1: हाँ,
0: बहुत सारे भौरे मीठे गाने गाते हैं।
1: वाह। और मधुमक्खियां भी होती हैं,
0: जी
1: चिड़िया भी होती है।
0: जी
1: मधुमक्खी कितनी बड़ी होती है?
0: मधुमक्खी तो लगभग एक मुट्ठी से भी छोटी होती
1: मुट्ठी
0: है।
1: नहीं, एक छोटी, बहुत छोटी होती है, मक्खी जैसी होती है।
0: जी
1: अलीना, कुछ मधुमक्खी के बारे में कुछ है याद?
0: जी मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो मधुमक्खी के ऊपर है।
1: क्या है?
0: छोटी सी मधुमक्खी रानी, करती कितनी मेहनत भारी, फूलों से रस लेकर आती, मीठा शहद हमें खिलाती।
1: और नचिकेत, कुछ मधुमक्खी के बारे में जानते हैं?
0: मधुमक्खी बहुत छोटी होती है, लेकिन काम बड़े करती है। वह फूलों से रस लेकर शहद बनाती है, साथ ही परागण में मदद करती है, जिससे पेड़ पौधे फसलों की वृद्धि होती है।
1: बहुत अच्छी जानकारी नचिकेत को है छोटी सी मधुमक्खी के विषय में। और मधुमक्खी होती तो छोटी है, लेकिन कितना मीठा शहद हमको
0: जी
1: देती है।
0: जी
1: और ये प्राकृतिक रूप से हमको मिठास मिलता है शहद से, तो इसलिए शहद से तंदुरुस्ती भी बनती है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी होते हैं। शहद आपको पसंद है?
0: जी
1: शहद भी हम लोगों को लेना
0: जी
1: चाहिए। हाँ, और इस तरह की चीजें हमको जो फायदा पहुंचाए, जो घर में मम्मी पापा या हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं, बताते हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हम हमेशा ही लाभ पाएंगे। और बच्चों, समय का ख्याल भी हमेशा रखना
0: जी
1: चाहिए, है ना? तो हमारे बाल मंडली कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त, तो अपने नन्हे साथियों से हम विदा लेते हैं। जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल मंडली। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222250042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
3: आकाशवाणी।
6: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मेडी वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं दिन के 11। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
8: वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ है डॉक्टर MD तबरेज खान मोतिहारी से।
9: मेरा नाम मोहम्मद तबरेज खान हुआ। मैं जनरल फिजिशियन मोतिहारी, बिहार में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 3 सालों से मोतिहारी में प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, और इससे पहले हम वेस्ट बंगाल में एज ए फिजिशियन कंसल्टेंट हम काम कर रहे थे।
8: मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
9: देखिए मैम, ये जो हाइपरटेंशन होता है सिर्फ हार्ट अटैक को ही ट्रिगर नहीं करता है। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं किए लंबे टाइम तक, अगर अच्छे से इसको कंट्रोल नहीं किए, मेजर नहीं किए और प्रॉपर तरीके से डॉक्टर से इंस्ट्रक्शन अगर हम नहीं लिए, मेडिसिन नहीं लिए, तो ये ट्रिगर कर सकता है हार्ट को भी।
8: अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।
4: हेलो फरमाइश। फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं आपका रेडियो दोस्त संजय किशोर आपके कॉल्स लेने के लिए हाजिर हूँ। आपके कॉल्स आ रहे हैं, लेते हैं आपका कॉल। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
10: जी नमस्कार।
4: कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
10: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरौन, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।
4: जी कैसे हैं जनाब?
10: बहुत अच्छे हैं। और आपके मिजाज कैसे हैं?
4: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या हो रहा है उधर?
10: बस कुछ नहीं हो रहा, घर पर बैठे हुए हैं, गर्मी पड़ रही है अच्छी खासी।
4: हाँ, गर्मी तो पड़ रही है और गर्मी जी जी पूरे देश में है।
10: मौसम कैसा है?
4: बस बढ़िया है, यहाँ भी गर्मी है यहाँ। और कुछ खास अगर आपकी तरफ हो रहा हो तो बताएं।

0: तक कुछ खर्च नहीं हो रहा है, गर्मी पड़ रही है, आराम कर रहे हैं, बैठे थे, आपको ट्राई कर रहे थे, फोन लगा रहे थे
1: जी। और काम धाम का क्या हाल चाल है?
0: अभी तो काम माम धाम तो कुछ नहीं है, फुर्सत में है, और अभी बारिश का इंतजार है, मक्का और सोयाबीन बोएंगे।
1: तो सब सब ठीक ठाक हो रहा है
0: जी? हमारे इधर तो लू चल रही है इस वक्त तो, दो तीन रोज से
1: जी। सावधान रहिए, बच के रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और अब बताइए कि क्या सुनवाया जाए?
0: और दीवाना का मिर्जा सुना देना आप, पाया लिया हो पाला।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी, मैं अभय कुमार चौधरी बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से बोल रहा हूँ।
0: जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। पहली बार कॉल किया आपने?
1: इसके पहले मैं लगभग 1.5 साल पहले कॉल किया था। इससे पहले
0: इतने लंबे अंतराल के बाद कॉल लगा आपका, या फिर कहीं कुछ और कर रहे थे?
1: अरे, बिजी थे थोड़ा सा, पढ़ाई स्टडी चल रहा था तो क्लास करने में। ऐसे अभी भी स्टडी चल रहा है, पीजी कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएट, आगे नेट का तैयारी कर रहे हैं।
0: बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी कि आप नेट क्वालिफाई करें।
1: जी
0: जी, तो रेडियो के कार्यक्रम आप सुनते हैं लगातार इधर?
1: जी जी, रेडियो का कार्यक्रम को बहुत अच्छा लगता है। सुबह में जो आपका 5:45 के करीब में जो आता है चिंतन, उसके बाद कृषि चर्चा, उसके बाद जो फिल्म संगीत होते हैं वो सब सुनते रहते हैं, अच्छा लगता है।
0: तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सुबह उठ जाते हैं जल्दी और हमारा कार्यक्रम भी सुनते हैं, पढ़ाई भी करते हैं आप।
1: सर, एक बात और बताना चाहते हैं कि जैसे कि हम रेडियो रखते हैं यहाँ पे, ठीक है?
0: हाँ।
1: तो बहुत लोग आते हैं तो बोलते हैं कि क्या पुराने जमाने में, हम तो काफी अभी यंग है ना, 22-23 मेरा उम्र है अभी।
0: अच्छा जी।
1: तो बोलते हैं कि पुराने जमाने में अभी जी रहे। हम बोलते हैं कि ये तो मेरा इमोशन है, तो क्या ही कर सकते हैं। मेरा मतलब काफी लगाव है रेडियो सुनना, ये सब अच्छा लगता है। जितना हमको मोबाइल से गाना सुनकर अच्छा नहीं लगता, उतना रेडियो से अच्छा लगता है।
0: जी, रेडियो का एक अलग ही आनंद है।
1: हाँ, अलग ही आनंद है।
0: बहुत अच्छा है, जो रेडियो सुनते हैं उनको अनुभव होता है, तो इसीलिए आप समझ पा रहे हैं। जो लोग रेडियो नहीं सुनते उनको ये पता नहीं चलेगा।
1: जी, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हमको, हम अपना इमोशन नहीं दूसरे को दिखा पाते हैं।
0: जी जी, आप ये अपना अनुभव शेयर किया आपने हमसे, बहुत अच्छा लगा, और धीरे धीरे बाकी लोगों को भी पता चलेगा, ज्यादा लोग सुन पाएंगे। बहुत अच्छा, क्या सुनना चाहेंगे?
1: जी, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं।

0: मैं अमरीश सिंह बिहार से बोल रहा हूँ।
1: बिहार यानी बिहार शरीफ।
0: नहीं, बिहार, मुजफ्फरपुर, बिहार।
1: बहुत बहुत
0: जी
1: स्वागत अमरीश जी, पहली बार कॉल आया आपका।
0: जी जैसा कि हम जब बहुत जब छोटे थे तब एक बार हमने कॉल किया था अपने दादाजी के कहने पे, हम
1: अच्छा
0: लगभग 6-7 साल पहले,
1: अच्छा
0: जब हम छोटे थे, 9th-10th में पढ़ते थे तब कॉल किए थे, उस समय बात हुई थी।
1: अब क्या कर

0: हैं आप?
1: अभी अभी हमारा MSc कंप्लीट हुआ है फिजिक्स सब्जेक्ट से। अब
0: ओहो
1: नेट की तैयारी चल रही है हमारी।
0: जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, अपनी तैयारी अच्छी करें तो आगे लेक्चरर प्रोफेसर बनने का इरादा रखते हैं।
1: जी,
0: बढ़िया है। तो
1: और
0: अब
1: फिजिक्स साइंस में इनोवेशन के लिए हम लोग आगे तत्पर काम
0: बिल्कुल
1: करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं और ज़्यादातर पढ़ाई करके तुरंत नौकरी चाहते हैं, काम चाहते हैं, लेकिन रिसर्च की ओर बहुत कम लोग ध्यान देना पसंद करते हैं। तो ये बहुत धैर्य का काम है और बहुत आवश्यक भी है। आपने इस बारे में सोचा, बहुत अच्छा लगा। इतने लंबे साल के बाद कॉल किया आपने, कैसे मन बनाया?
1: जैसे कि हमारा एक सहपाठी है, जैसे हम लोग साथ में ही तैयारी करते हैं नेट का, तो हम लोग जैसे खाली टाइम होता है, जैसे कि पढ़ते पढ़ते जब मन थोड़ा दुखी होता है या दिमाग काम नहीं करता है, तो हम लोग रेडियो सुनते हैं। तो हुआ ये कि फरमाइशी गाना का हुआ, वो बोला कि भाई कुछ ऐसा नहीं है कि अगर जो गाना हम बोले वो गाना बजे, हम बोले कि हाँ ऐसा एक प्रोग्राम चलता है उस
0: अच्छा
1: पे हो सकता है, जो बुधवार को कॉल करना होता है 1 बजे से लेकर के 1:30 बजे के अंदर में, तब वो गाना अगले रविवार को प्रस्तुत किया जाता है। तब बोला कि अच्छा ये बात है, तो लगाओ एक बार कॉल बुधवार को, तो वही लगाए।
0: बहुत अच्छा। तो ठीक है, बताइए क्या सुनवाया जाए।
1: हम अपने दादाजी जो आज से हमसे 7-8 साल पहले गाना लगवाए थे, हम वही गाना लगवाना चाहेंगे। जी,
0: अच्छा, अभी याद भी है आपको?
1: याद है, मैं उस गाना को हमेशा सुनता हूँ।
0: बताइए।
1: मेरे बाबा जी का पसंदीदा गाना था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: सर नमस्कार, जय जगन्नाथ। चित्रा से बोल रहा हूँ, उड़ीसा से, जिला कालाहांडी, भैया भवानी पटना, गांव का नाम जगन्नाथपुर, नाम चित्रा सन।
0: कैसे हैं चित्रसन जी?
1: मैं तो एकदम बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया। और बताइए उधर का क्या हालचाल है?
1: हालचाल तो सब ठीक ठाक है जी, कुछ ज्यादा गर्म हो रही है।
0: गर्मी तो बहुत बढ़ गई है।
1: हाँ जी,
0: ऐसे में सब ठीक ठाक है ना आपका?
1: हाँ जी, सब ठीक ठाक है।
0: अच्छा, आपके काम धाम का क्या हाल चाल है?
1: हाँ, काम धाम भी सब ठीक ठाक है जी।
0: अच्छा, तब बताइए क्या सुनवाया जाए, क्या मन है?
1: आज चांदनी फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: चांदनी,
1: आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: नमस्ते नमस्ते संजय किशोर जी, नमस्ते
0: जी। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बलजीत गुप्ता, गुड्डा जिला झारखंड से बोल रहे हैं।
0: जी बलजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या हो रहा है बताइए।
1: वही

0: अपना घर का आम का बगीचा है, बगीचा में बैठे हुए हैं।
1: आम के बगीचे में?
0: हाँ, फल इस बार नहीं है, हर महीना इस बार बारिश हो रहा है, देख रहे हैं।
1: आम की फसल कम होने की वजह क्या है आपके?
0: कम हुआ सर, वही जो पत्ता में नया डाली है, वो नया डाली पत्ता अधिक नया आया है,
1: मंजर कम लगा,
0: नहीं हो पाया। फूल तो था ठीक है, दवा भी इस बार कमजोरी कर दिए, दवा नहीं दे पाए हैं, और बारिश तो जो ऊपर का पखल है वो पखल में भी आम खराब कर दिया।
1: अच्छा।
0: इस बार देखिए आम का मतलब जो है अधिक रहेगा रेट उसका,
1: फसल कम हो तो महंगा हो जाता है ना।
0: हाँ, महंगाई अधिक रहेगा शायद
1: जी।
0: इस बार तो फल एकदम बहुत ना के बराबर है।
1: चलिए कोई बात नहीं, अगली बार फिर लीजिएगा अच्छी फसल। और रेडियो कार्यक्रम सब सुन पा रहे हैं ठीक से?
0: सुनते हैं सर, पूरा सुनते हैं। हम तो क्या बोलेंगे कि सुबह 6 बजे बैठते हैं तो 2 बजे तक हम पूरा कंटिन्यू सुनते हैं।
1: अच्छा।
0: इसके बाद हम चल जाते हैं, फिर मेरा अपना दुकान लगता है हटिया का, तो 8 बजे हम फिर रात में आते हैं, तो फिर वही थकावट से सो जाते हैं। सुबह का टाइम मतलब पूरे 6 बजे से बैठते हैं तो 2 बजे तक कंटिन्यू सुन लेते हैं।
1: अच्छा, गाना क्या सुनेंगे
0: सर? फिल्म का तो नाम नहीं जाते हैं, गाना का बोल है आए हम बराती बारात लेके।

0: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: नमस्कार।
0: कौन कहाँ से
1: हेलो,
0: बोल रहे हैं?
1: धीरज रबारी गुजरात से।
0: गुजरात से। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी सर।
0: पहली बार कॉल किया आपने?
1: नहीं सर, मैंने बहुत साल पहले किया था कॉल,
0: अच्छा
1: लेकिन
0: अच्छा
1: समय बहुत हो गया।
0: फिर से आपने याद किया, कॉल किया। बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। बताएं कुछ
1: धन्यवाद
0: अपने बारे
1: सर।
0: में हमारे
1: और एक
0: श्रोता।
1: सुनहरा मौका हमारे आकाशवाणी का चल रहा है।
0: जी
1: आकाशवाणी के जो 90 साल की प्रसारण यात्रा है, तो उसमें आप लोगों का जो प्रदान है श्रोताओं के लिए, तो उसकी हम जितनी प्रशंसा करें इतनी कम है। आप हो, केंद्र निदेशक हो और टेक्निकल टीम है और अनाउंसर है, भारत भर के जितने आकाशवाणी केंद्र उनके सभी आकाशवाणी परिवार को हम आपके जरिए से धन्यवाद करना चाहते हैं, जो हमको पिरोवा गया है ज्ञान के साथ मनोरंजन।
0: ये आप लोगों की वजह से ही है, क्योंकि आप सुनते हैं इसलिए हम कार्यक्रम बनाते हैं।
1: बिल्कुल, आपका
0: जी
1: बड़प्पन है सर।
0: जी तो हम आगे भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम बनाएंगे। आकाशवाणी की सेवा का एक लंबा अरसा रहा है, इसलिए
1: जी सर।
0: हमारे बहुत सारे पुराने अच्छे कार्यक्रम भी रहे हैं और अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आप लोगों की सेवा में बनाते हैं। तो आप पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए हौसला बढ़ाने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फीडबैक दिया। तो इस
1: गाना
0: कार्यक्रम।
1: सुनना है सर,
0: हाँ बताइए।
1: अखियों की झलक से फिल्म का गाना सुनना है, शीर्षक गाना है हेमलता की आवाज।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: हेलो फरमाइश
0: जी हेलो, फरमाइश में फोन किया आपने, बताइए।
1: जी, मैं रिंकी बोल रही हूँ सर, ब्लाइंड स्कूल से। जी, मैं ब्लाइंड स्कूल स्टार्टिंग में रही रहती हूँ। अब मैं बीएड कर ली हूँ। बच्चे लोग के, ब्लाइंड बच्चे लोग के पढ़ाती हूँ।
0: पढ़ाते हैं आप?
1: जी,
0: मुझे लगा कि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं।
1: नहीं, मैं ब्लाइंड बच्चे लोग से पढ़ाती हूँ, ब्लाइंड स्कूल में रहती हूँ।
0: अच्छा, तो पढ़ाई आपने कहाँ से?

0: की?
1: जी मैं जहाँ रह रही हूँ उसी से, मैं बचपन से यही रही हूँ, बस इसी स्कूल से मैं पढ़ाई की हूँ, मैट्रिक इंटर और रहकर ये है बी एड विथ मगध यूनिवर्सिटी से किए।
0: अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपने पढ़ाई पूरी करके फिर पढ़ाना ही अपना पेशा चुना है?
1: हाँ सर, मैं ब्लाइंड स्कूल में ऐसे तो मैं तैयारी करती हूँ, मतलब कि टीचर वाला फॉर्म वर्म निकालेगा तो घर में से टिकट भी निकाल ली हूँ, ऐसे टीसी भी निकाल चुकी हूँ, सब निकाल चुकी हूँ।
0: बहुत अच्छा। रेडियो के कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: जी सुनती हूँ, मतलब कि पढ़ाने में लग जाती हूँ, टाइम मिलता है तो कभी कभी सुन लेती हूँ, रविवार को टाइम मिलता है सर तो सुन लेती हूँ, ऐसे फील्ड बैग भी मेरी मेरा भी मतलब कि चले जाती हूँ ना, तो इसीलिए नहीं टाइम मिल पाता है, लेकिन टाइम मिलता है तो जरूर सुनती हूँ, रविवार को टाइम मिलता है।
0: अच्छा, तो ये कार्यक्रम आप सुनते हैं?
1: जी
0: ठीक है, कुछ बताना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में?
1: ये कार्यक्रम के बारे में तो पूरा खास कुछ मालूम नहीं है, जैसे लोग रेडियो पर लोग गीत जो होता है ना वो सुनती हूँ, अब हेलो फरमाइश रविवार को सुनती हूँ, बस इसके अलावा
0: हाँ,
1: कुछ नहीं।
0: चलिए ठीक है। तो गाना कौन सा आप सुनना चाहेंगे, बताया आपने?
1: मेरे को गाना सुनना है, पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं।
2: पैसे की पहचान यहाँ इंसान।

0: नमस्ते, खम्मागणी जिला बालोतरा राजस्थान से मोहनलाल प्रजापति
1: जी। मोहनलाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
0: धन्यवाद जी।
1: कैसे हैं जी?
0: बहुत ही बढ़िया हूँ। और 12 महीने बाद में कॉल लगा है सर, आज बहुत ही कॉल बड़ी मुश्किल से लगा है।
1: चलिए, लग गया कॉल आपका, बहुत बहुत स्वागत।
0: धन्यवाद जी।
1: तो बताएं क्या

0: वो पानी पीते हैं, सिकंजी पीते हैं, जूस पीते हैं, वही है, वही दिनचर्या।
1: और काम धाम?
0: हाँ तो थोड़े गर्मी में थोड़े क्या लोग कम बाहर आते हैं ना, हाँ तो 4 बजे बाद में लोग बाहर आएंगे तभी धंधा होगा।
1: तो दिन में कहाँ रहते हैं फिर, क्या करते हैं?
0: हाँ कुछ नहीं, बस बैठे हैं, कोई छुटकर बस स्टैंड है जो वो बसों से यात्री भी कम है लेकिन यात्री ज्यादा बढ़ेंगे 4 बजे बाद में।
1: चलिए ठीक है, तो आप बचाव करके रखिए अपना, स्वस्थ रहें। क्या सुनेंगे बताइए?
0: फिल्म का नाम है सर जी आज नसीब, गाना वही है जिंदगी इम्तिहान लेती है।

0: हेलो,
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में जी। कहिए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
0: मैं आदित्य यादव बोल रहा हूँ, बेगूसराय जिला बिहार से। जी
1: पहली बार कॉल किया आपने?
0: जी बहुत समय से कोशिश कर रहा था तो पहली बार लगाया है।
1: तो अपने बारे में हमें जानकारी दें, क्या करते हैं वैसे आप?
0: मैं पढ़ाई करता हूँ, अभी 9th में हूँ।
1: अच्छा, तो गाना सुनते हैं रेडियो पर।
0: जी
1: कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
0: ये आपका जो जितना होता है कार्यक्रम बहुत अच्छा रहता है, मैं यहाँ एक महीने से सुन रहा हूँ।
1: आगे भी सुनते रहें कार्यक्रम। अब अपनी पसंद बताइए, इस कार्यक्रम में क्या सुनना चाहेंगे?
0: कोई भी एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए।
1: नहीं, जो भी कहिए पसंद अपनी बताइए।
0: इसे मेरा एक सॉन्ग है, तेरा फितू जब से चल गया रे।

आज के लिए बस इतना ही। यदि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हों तो हमें प्रत्येक बुधवार को दिन के 1 बजे से 1:30 के बीच कॉल कीजिए। और अब हमारे फोन नंबर नोट कीजिए 0612222500। फोन नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं 0612222500। और अब कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विभूति शंकर के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त

0: संजय किशोर को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। यह कार्यक्रम आपकी पसंद के गीतों पर आधारित होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए अब सुनिए बिहार का लोक संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मैथिली लोकगीत। कलाकार हैं गजेंद्र महाराज।

0: वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ है डॉक्टर एमडी तबरेज खान मोतिहारी से। क्या बीपी डायरेक्टली लिंक्ड है हार्ट डिजीज से?
1: हाँ, ये जो बीपी है डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि लिंक है, क्योंकि कंटिन्यूस अगर बीपी ब्लड प्रेशर हाई रहता है हमारे शरीर में तो कंटिन्यूस हमारे हार्ट को, कोरोनरी आर्टरी होती है जो ब्लड को हार्ट को सप्लाई करती है, वो कंटिन्यूस उस पे फोर्स पड़ते हैं और बीपी हाई होने के कारण से हार्ट फेल होने का भी चांसेस होता है डायरेक्टली। और एक वर्ड होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जो कि बीपी हमेशा कंटिन्यूस बढ़ा रहता है उससे डायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाता है हार्ट को, तो हार्ट का साइज भी इसमें बढ़ जाता है। तो कह सकते हैं ये बीपी अगर हमेशा अगर बढ़ा रहा तो डायरेक्टली हार्ट का रिलेशन है।
0: A public awareness initiative for healthy India.

ये लोक भजन आप सुन रहे थे, कलाकार थे गजेंद्र महाराज। आइए सुनते हैं इनसे एक और गीत।

0: आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे हैं बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम, अभी जारी है शेष गीत इस अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: हो गया इंतजाम।
5: किसका?
4: गुड्डी की फीस का।
5: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
6: आरबीआई कहता है
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं बिहार का लोक संगीत आकाशवाणी पटना से। अब सुनिए नीना झा की आवाज में कुछ गीत।

0: इसी के साथ संपन्न हुआ बिहार का लोक संगीत का यह कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी पटना से। आइए अब सुनिए वैज्ञानिकी।
1: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

नमस्कार श्रोताओं, मैं अल्पी हाजिर हूँ आकाशवाणी पटना का खास कार्यक्रम वैज्ञानिकी लेकर, जिसे हम लेकर आते हैं माह के पहले तीसरे और पांचवें रविवार दोपहर के 12:30 पर। ये कार्यक्रम ज्ञान, रोमांच और नई सोच का शानदार मेल है। हमारा पहला विषय भी कुछ ऐसा ही है, दूरसंचार एवं सूचना, जिसने आज दूरियों को कम करके हमें करीब ला दिया है। चाहे वो सूचनाओं का आदान प्रदान करना हो या व्यवसाय शुरू करना, परिवार से जुड़ाव हो या फिर जीवन को आसान बनाने और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सूचना और संचार पहुंचाना हो, इस वर्ष का थीम यानी विषय भी जुड़ा है इसी सोच के साथ कि दूर संचार और सूचना का महत्व जीवन और तरक्की में बेहद अहम स्थान रखता है। विषय है डिजिटल जीवन रेखाएं, एक जुड़े हुए विश्व में लचीलेपन को मजबूत करना। यानी यह दिन हमारे दैनिक जीवन, व्यवसायों और समाज में इंटरनेट और संचार तकनीकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। यह दिन 17 मई 1969 से प्रति वर्ष मनाया जा रहा है और लगातार विकासशील देशों में कनेक्टिविटी और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने में भूमिका निभा रहा है। आइए अब हम जानते हैं रेयर अर्थ कॉरिडोर के बारे में। क्या आपको पता है भारत में समुद्र तट की रेत में बहुमूल्य दुर्लभ मृदा तत्व और अन्य महत्वपूर्ण भारी खनिज पाए जाते हैं? जी हाँ, ये सच है। भारत के तटीय रेत में मुख्य रूप से 7 भारी खनिज पाए जाते हैं जो दुर्लभ मृदा तत्वों का स्रोत हैं। इनमें है मोनाजाइट, यह दुर्लभ

0: तत्वों नियोडिमियम प्रोजियोडियम का प्राथमिक स्रोत है और इसमें थोरियम भी होता है। अगला है इल्मेनाइट और रुटाइल जो कि टाइटेनियम का ही स्रोत है। जिरकॉन जिरकोनियम का स्रोत है, वहीं गार्नेट अपघर्षक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। सिलिमेनाइट औद्योगिक उपयोग में लिए जाते हैं जबकि ल्यूकोक्सेन टाइटेनियम का स्रोत है। आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 2026-27 में इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए तटीय राज्यों में विशेष रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की योजना है। ये कॉरिडोर मुख्य रूप से उन तटीय राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं जहां मेनाजाइट युक्त रेत के बड़े भंडार हैं, जिनमें ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं। इन खनिजों के प्राप्त होने से हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। पहले जो हम भारी मात्रा में आयात करते थे उसमें कमी आएगी। साथ ही इन खनिजों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टरबाइन और रक्षा उपकरणों में किया जाएगा, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में तरक्की होगी। तो विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस दुर्लभ पृथ्वी गलियारा यानी रेयर अर्थ कॉरिडोर के बाद एक विशेष चर्चा, क्वांटम भौतिकी की दुनिया। सुनते हैं मृत्युंजय कुमार सिंह से, आप विज्ञान शिक्षक हैं।
1: आज हम एक अत्यंत रोचक और रहस्यमय विषय क्वांटम भौतिकी पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो सूक्ष्मतम कणों की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि क्वांटम क्या होता है। क्वांटम भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जो परमाणु और उपपरमाणु जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटोन स्तर पर कणों के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह दुनिया हमारे समान अनुभव से अलग है। यहाँ एक ही कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में हो सकता है और दूर दूर स्थित कण एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। क्वांटम भौतिकी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है तरंग कण द्वैत, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, जो यह बतलाता है कि कोई कण जैसे इलेक्ट्रॉन कभी कण की तरह और कभी तरंग की तरह व्यवहार करता है। इसे वैज्ञानिक यंग के डबल स्लिट प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया था। जब हम कण को नहीं देखते वह तरंग जैसा व्यवहार करता है और जैसे ही हम उसे देखते हैं वह कण बन जाता है, मतलब देखने से ही उसका व्यवहार बदल जाता है। यही तो क्वांटम दुनिया की खासियत है। क्वांटम भौतिकी का महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके अनुसार हम किसी कण की स्थिति और गति को एक साथ बिल्कुल सही नहीं जान सकते, क्योंकि जैसे ही हम उसे मापने की कोशिश करते हैं हम उसके व्यवहार को प्रभावित कर देते हैं। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति में कुछ चीजें मूल रूप से अनिश्चित हैं। अब हम बात करते हैं एक और दिलचस्प सिद्धांत की, सुपरपोजिशन। यह सिद्धांत कहता है कि कोई कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में हो सकता है। अब मैं समझाता हूँ कि क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है। जब दो कण इस तरह से जुड़े होते हैं कि एक पर असर डालने से दूसरे पर तुरंत असर पड़ता है, चाहे वे कितनी दूरी हों। इसे आसान भाषा में समझने के लिए मान लीजिए आपके पास दो जादुई सिक्के हैं। आप एक सिक्का उछालते हैं और वह हेड आता है। उसी क्षण दूसरा सिक्का जो हजारों किलोमीटर दूर है टेल हो जाता है, यानी दोनों सिक्कों का परिणाम पहले से जुड़ा हुआ है। यही क्वांटम एंटेंगलमेंट का विचार है। अब हम बात करते हैं आधुनिक उपयोगों की। क्वांटम भौतिकी से क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया जा रहा है। आप पूछ सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर समान कंप्यूटर से अलग कैसे है। समान कंप्यूटर बिट्स पर काम करते हैं, शून्य या एक, जबकि क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पर काम करते हैं जो एक साथ शून्य और एक दोनों हो सकते हैं, जिसके कारण क्वांटम कंप्यूटर जटिल समस्याओं को बहुत तेजी से हल कर सकते हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM की शुरुआत की है, जिसके अनुसार 2023-24 से 2030-31 तक 6,003.65 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ भारत सरकार को क्वांटम तकनीक में विश्व में अग्रणी बनाने का एक दूरदर्शी पहल है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित यह मिशन 50 से 1,000 भौतिक क्यूबिट क्षमता वाले कंप्यूटर सुरक्षित

0: संचार और उन्नत सेंसर विकसित करने पर केंद्रित है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19 अप्रैल 2023 को मंजूरी दी गई। इसके लिए 2023-24 से 2030-31 तक 8 वर्षों की अवधि रखी गई है। इसके लिए कुल परिव्यय 6.3365 करोड़ सुनिश्चित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार, सेंसिंग और सामग्री अनुसंधान में आत्मनिर्भरता और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इस मिशन के प्रमुख लक्ष्य कई हैं, जिनमें क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंडक्टिंग और फोटोनिक तकनीक का उपयोग करते हुए 8 वर्षों में 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट क्षमता वाले मध्यम आकार के कंप्यूटर विकसित करना, जिससे जटिल समस्याओं को सेकेंडों में हल किया जा सकेगा। सुरक्षित संचार के रूप में 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार अंतर शहर कुंजी QKD प्रणाली विकसित करना। यह पूरी तरह सुरक्षित संचार प्रणाली होगी, जिसमें हैकिंग असंभव होगा। अनुसंधान के क्षेत्र में विषयगत केंद्रों, थीमेटिक हब्स के माध्यम से देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। इससे नई सामग्री और उपकरणों का विकास एवं तकनीकी उत्पादों का निर्माण संभव हो सकेगा। स्टार्टअप और मानव संसाधन के क्षेत्र में डीप टेक स्टार्टअप को समर्थन और कुशल मानव संसाधन तैयार करना इसका उद्देश्य होगा। अब मैं आपको इस क्षेत्र में हुए हालिया प्रगति से अवगत कराता हूँ। मिशन के तहत 1000 किलोमीटर सुरक्षित संचार की उपलब्धता हासिल कर ली गई है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने लगभग 100 प्रस्तावों पर काम किया है, जिसमें डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा मिला है। भारत में हीलियम जैसी सुविधाओं की बुनियादी संरचना विकसित की जा रही है, जो क्रायोजेनिक्स और सुपर कंडक्टिविटी के लिए बहुत ही जरूरी है। यह न केवल रणनीतिक क्षेत्रों जैसे रक्षा और संचार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत को कंप्यूटिंग, सिमुलेशन और सेंसिंग में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जिससे आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी। आज दुनिया के कई विकसित देश जैसे अमेरिका, चीन और यूरोप क्वांटम तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यदि भारत इस दौर में पीछे रह जाता है, तो भविष्य की तकनीकी क्रांति में हमारा भूमिका सीमित हो सकती है। इसलिए यह मिशन भारत को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे बहुत सारे भविष्य में लाभ होंगे। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई दवाओं की खोज तेज होगी, कृषि क्षेत्र में मौसम और मिट्टी का बेहतर विश्लेषण हो सकेगा, वित्तीय क्षेत्र में जटिल जोखिम का विश्लेषण किया जा सकेगा। सुरक्षित संचार और उन्नत रक्षा प्रणाली विकसित कर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सकेगा। यह मिशन युवाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे नए शोध और रोजगार के अवसर पैदा होंगे, उस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, भारत में वैज्ञानिक प्रतिभा का विकास होगा। हर बड़ी पहल के साथ चुनौतियां भी आती हैं। इस मिशन के लिए उच्च लागत और तकनीकी जटिलता, कुशल मानव संसाधन की कमी और वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां हैं, लेकिन सही नीति, निवेश और सहयोग से इन चुनौतियों को अवसर में बदला जा सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन केवल एक वैज्ञानिक परियोजना नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की नींव है। हमें न केवल तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि वैश्विक मंच पर एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। आइए हम सब मिलकर इस मिशन को सफल बनाने में अपना योगदान दें।
1: अभी हमने सुना मृत्युंजय कुमार सिंह को, विषय था क्वांटम भौतिकी की दुनिया। अब आइए जाने में जानेंगे विश्व मधु

करने, विकासशील देशों में भूख मिटाने में महत्वपूर्ण योगदान मिल सके। हम सभी परागणकों पर निर्भर हैं, इसलिए उनकी घटती संख्या पर नजर रखना और जैव विविधता के नुकसान को रोकना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्लोवेनिया सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालक संघ के सहयोग से FAO 2018 से इस दिवस का आयोजन कर रहा है और इन प्रयासों के कारण ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस घोषित किया। इस तिथि का इसलिए चयन किया गया क्योंकि इसी दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रदूत एंटोन जानसा का 1734 में जन्म हुआ था। जानसा स्लोवेनिया के मधुमक्खी पालकों के परिवार से थे, जहां मधुमक्खी पालन एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है जिसकी एक लंबी परंपरा है। ऑस्ट्रेलियाई महारानी मारिया थेरेसा ने उन्हें वियना में एक मधुमक्खी पालन विद्यालय में मधुमक्खी पालन के स्थायी शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी थी। 1775 के बाद सभी सरकारी मधुमक्खी पालन शिक्षकों को उनके शिक्षण और विधियों के अनुसार ही इस विषय को पढ़ाना अनिवार्य हो गया। आज मधुमक्खियां, परागण करने वाले कीटों और कई अन्य कीटों की संख्या में गिरावट आ रही है। यह दिन हम सभी के लिए एक अवसर प्रदान करता है, चाहे हम सरकारों, संगठनों या नागरिक समाज के लिए काम करते हों या जागरूक नागरिक हों। परागण करने वाले कीटों और उनके आवासों की रक्षा और संवर्धन करने के लिए हमें आगे आना होगा। कई बार हम अपने आसपास भी देखते हैं कि बेवजह हम छोटे छोटे कीटों को मार देते हैं। भले ही हम ये अनजाने में करते हों, पर कहीं न कहीं इसके नुकसान को हमें ही झेलना होगा, क्योंकि हर सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हमारे प्रकृति के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी जैव विविधता के लिए अहम हैं। तो कृपया ऐसा करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि ये छोटे से जीव या ये छोटी सी मधुमक्खी, ये छोटी सी कीट कहीं ना कहीं हमारे भोजन, हमारे स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण को सही रखने में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। तो जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। और अब हम जानते हैं उस विषय के बारे में जिसकी चुस्की के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। घर चाहे दोस्तों का आना हो या किताबों के बोझिलपन को मिटाना हो, नींद भगाना हो या दोस्त बनाना हो, हर मौके पर याद आता है चाय। सही कह रही हूँ ना? पर क्या हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है? चलिए बताती हूँ। इसे हर साल 21 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त यह दिन चाय के सांस्कृतिक महत्व, आर्थिक लाभ और टिकाऊ उत्पादन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इस दिन चाय श्रमिकों के अधिकारों, चाय की खपत और इसके टिकाऊ उत्पादन को बढ़ावा देने पर बल दिया जाता है। पहले यह 15 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे मनाने के लिए 21 मई की तिथि निर्धारित की। तब से यह 21 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। अपना देश भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादकों और उपभोक्ताओं में से एक है और यह दिन विशेष रूप से चाय उद्योग से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी चाय प्रेमियों को इस दिन की अग्रिम बधाई। हमारा अगला महत्वपूर्ण विषय है अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस, जिसे प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी पृथ्वी पे मौजूद विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार 1993 में की थी, जबकि 22 मई 1992 को जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया गया था। श्रोताओं, जैव विविधता हमारे ग्रह का जीवंत ताना बाना है। यह वर्तमान और भविष्य दोनों ही समय मानव कल्याण का आधार है और इसकी तीव्र गिरावट प्रकृति और मनुष्यों दोनों के लिए खतरा है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच द्वारा किए गए नवीनतम वैश्विक आकलन के अनुसार मानवीय गतिविधियां अभूतपूर्व दर से जैव विविधता के
क्षरण का कारण बन रही है। वैज्ञानिकों की अगर माने तो आज पृथ्वी पर मनुष्यों सहित कम से कम 80 लाख प्रजातियों के पौधे और जीव जंतु मौजूद हैं, जिन पारिस्थितिक तंत्रों में ये प्रजातियां निवास करती हैं, वे अत्यंत

0: पृथ्वी पर मनुष्यों सहित कम से कम 80 लाख प्रजातियों के पौधे और जीव जंतु मौजूद हैं। जिन पारिस्थितिकी तंत्रों में ये प्रजातियां निवास करती हैं, वे अत्यंत जटिल हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का प्रत्येक भाग एक पहेली की तरह दूसरे पर निर्भर करता है। मनुष्य पारिस्थितिकी तंत्रों में समाहित है और पौधों, जानवरों और लोगों के इन परस्पर जुड़े नेटवर्कों पर निर्भर है। मानव द्वारा जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, पर्यावास के विनाश या किसी अन्य प्राकृतिक या मानव निर्मित कारक के परिणाम स्वरूप केवल एक प्रजाति के विलुप्त होने से ही एक श्रृंखला शुरू हो सकती है, जिसका पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, जबकि प्रकृति प्रति वर्ष कम होती जा रही है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पे इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर मनुष्यों पे दुष्प्रभाव की बात करें तो अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हम सांस कैसे लेंगे, फल फूल हमें कैसे मिलेंगे। बिना पेड़ पौधों के, बिना जीवों के यह ग्रह जीने योग्य नहीं रहेगी। आज जैव विविधता पर मानव का नकारात्मक प्रभाव अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। स्थलीय पर्यावरण का लगभग 75% और समुद्री पर्यावरण का लगभग 66% हिस्सा मानव गतिविधियों से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लगभग 10 लाख पशु और वनस्पति प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। कुल मिलाकर जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूदा नकारात्मक रुझान सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को बाधित कर रहे हैं। तो कृपया आप सबसे विनम्र निवेदन है कि प्रकृति की सुरक्षा के प्रति जागरूक हों, और अगर हम अपनी दिनचर्या पे थोड़ा सा ध्यान दें तो पॉलिथीन हमारे जीवन में इस कदर जुड़ चुका है, इस तरह शामिल हो चुका है कि हम बिना पॉलिथीन के अपने जीवन को शायद सोच भी नहीं पा रहे हैं। सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, जागरूकता फैला रही हैं कि आप पॉलिथीन का इस्तेमाल कम से कम करें, लेकिन ये सकारात्मक सोच और पहल हमें अपनानी होगी और हमें कपड़ों के झोलों का इस्तेमाल करना होगा, पॉलिथीन के इस्तेमाल को ना कहना सीखना होगा। और आइए जानते हैं अब मैक्स प्लैंक के बारे में कुछ रोचक बातें। मैक्स प्लैंक भौतिकी के सबसे प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक हैं, जिन्हें क्वांटम थ्योरी का जनक माना जाता है। जब मैक्स प्लैंक ने भौतिकी यानी फिजिक्स में ग्रेजुएशन करने का फैसला किया था तो उनके एक प्रोफेसर ने उन्हें सलाह दी थी कि इस क्षेत्र में लगभग सब कुछ खोजा जा सकता है और इसमें आगे काम करना निरर्थक यानी कि बेकार है। पर मैक्स प्लैंक ने प्रोफेसर की सलाह को नजरअंदाज करते हुए कहा कि वह पुरानी चीजें ही सीखना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने भौतिकी में इतनी नई खोजें की कि 20वीं सदी की शुरुआत में क्वांटम भौतिकी के रूप में एक पूरी नई दुनिया की ही नींव रख दी। 1900 के दशक में उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की समस्या को सुलझाते हुए बताया कि ऊर्जा लगातार नहीं बल्कि पैकेट्स में चलती है, जिसे क्वांटा नाम दिया गया। प्लैंक केवल भौतिक विज्ञानी ही नहीं थे, साथ साथ एक शानदार पियानो वादक भी थे और उन्हें गाना गाने में भी बहुत रुचि थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपना एक बेटा खो दिया और उनके दो बेटे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए। जीवन के अंतिम वर्षों में नाजी शासन के साथ उनके वैचारिक मतभेद भी रहे। मैक्स प्लैंक ने एक बहुत ही सुंदर विचार दिया। उनका कहना था कि विज्ञान में नए विचारों का आना तभी संभव है जब हम पुरानी सोच को चुनौती दें। मैक्स प्लैंक को 1918 में भौतिकी में उनके क्रांतिकारी कार्य, विशेष रूप से ऊर्जा क्वांटा की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज दुनिया भर में प्रसिद्ध मैक्स प्लैंक सोसाइटी उन्हीं के नाम पर है, जो बेहतरीन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जानी जाती है। और अब जानते हैं राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में।
1: राष्ट्रीय क्वांटम मिशन यानी NQM भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे 2023-24 से 2030-31 के दौरान क्वांटम

0: टेक्नोलॉजी यानी QT में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई है और इस दौरान कुल परिव्यय लगभग 6,003 करोड़ रुपए है। इससे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के लिए एक जीवंत पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देकर क्वांटम प्रौद्योगिकियों में भारत को एक अग्रणी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मदद से प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक विकास में तेजी लाई जा सके और स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण किया जा सके। यह मिशन मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर केंद्रित है। क्वांटम कंप्यूटिंग, ये 8 वर्षों के भीतर 50 से 1,000 भौतिक क्यूबी वाले मध्यवर्ती पैमाने के क्वांटम कंप्यूटर का विकास है। दूसरा, क्वांटम संचार। भारत में 2000 किलोमीटर से अधिक के उपग्रह आधारित सुरक्षित संचार और लंबी दूरी के अंतः शहरी क्वांटम कुंजी वितरण की स्थापना। तीसरा, क्वांटम सेंसिंग एवं मेट्रोलॉजी। नेविगेशन और संचार में अनुप्रयोगों के लिए उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नेटोमीटर और सटीक परमाणु घड़ियों का निर्माण। अगला, क्वांटम सामग्री एवं उपकरण। स्वदेशी हार्डवेयर विकास का समर्थन करने के लिए क्वांटम सामग्री के लिए विनिर्माण क्षमताओं में उन्नति। यह मिशन संपूर्ण भारत में प्रमुख संस्थानों में आयोजित 4 थीमेटिक हब के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। यह डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी व्यापक राष्ट्रीय पहलों के साथ संरेखित है, जिसमें सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में सामरिक अनुप्रयोगों पर बल दिया गया है। इसके तहत 23 शैक्षणिक संस्थानों को क्वांटम शिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
1: जानेंगे हंता वायरस में हंता क्या है।
0: हंता शब्द कोरिया की हंटन नदी से आया है। वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम इस वायरस की पहचान हंटन नदी के पास 1950 से 1970 के दशक में कोरियाई युद्ध क्षेत्र में बीमार हुए सैनिकों पर किए गए शोध के दौरान की थी। वहां खोजे गए वायरस का नाम हंटन वायरस रखा गया और इसी व्यापक परिवार को हंता वायरस के नाम से जाना जाने लगा। यह आमतौर पर चूहों के मूत्र, मल या लार से दूषित कणों को सांस के जरिए अंदर लेने से संक्रमित हो जाते हैं और अभी हाल ही में एक क्रूज शिप में इस तरह के इन्फेक्शन से ग्रसित लोगों को देखा गया है और इस संबंध में जानकारी के साथ साथ जागरूकता भी फैलाई जा रही है ताकि इससे बचाव आसानी से किया जा सके।
1: अब है सवाल हमारे जवाब आपके, जिसमें हर बार हम आपसे 2 सवाल पूछते हैं, लेकिन सबसे पहले बताते हैं पिछले अंक के दोनों पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब। पिछले अंक में हमने पूछा था गुस्से में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो इसका सही जवाब है एडेनाइल और कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है गुस्से के दौरान, तो गुस्सा कम करें और स्वस्थ रहें। हमारा दूसरा प्रश्न था भारत में गिद्धों के तेजी से विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है गिद्धों के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है भोजन की कमी, विषाक्त भोजन प्राप्त होना, पर्यावरण और आवास का नुकसान, बिजली के तार। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से गिद्धों की कमी हो रही है। अब आज के 2 प्रश्न ध्यान से सुने। पहला प्रश्न है हंता वायरस के हंता की शुरुआत कहां से हुई और दूसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो इन दोनों सवालों के जवाब आप हमें चाहे तो पत्राचार के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से लिख भेज सकते हैं। नोट करें पत्राचार का पता, कार्यक्रम वैज्ञानिकी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी पटना 800001। हमारा ईमेल पता है feedback@gmail.com। और चलने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, श्रोताओं किसी भी तरह की साइबर क्राइम से संबंधित जानकारी हो या कोई शिकायत हो, आप भारत सरकार के सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता पहल अर्थात ISEA के तहत व्हाट्सएप नंबर 9490771800 या फिर टोल फ्री नंबर 1930 पर संदेशों का आदान प्रदान कर साइबर अपराध से संबंधित जानकारी को हासिल कर सकते हैं या शिकायत कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुत

करता रजत कुमार के साथ मुझे यानी अल्पी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। सीखिए कुछ नया, सोचिए कुछ अलग और जुड़े रहिए आकाशवाणी के कार्यक्रम वैज्ञानिकी से।

0: अभी आप सुन रहे थे वैज्ञानिक की, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
5: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
4: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

0: ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से, आइए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम समवेत गान शिक्षा।
2: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हैं ना असमिया भाषा गीत?
3: जी हाँ।
2: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
3: रे।
2: ए माती रे मोरो मोते,
3: मोरो मोते।
2: माती के,
3: माती के
2: सुमिलो,
3: सुमिलो
2: माती के सुमिलो, माती के सुमिलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। ए माती ते, ए माती ते जीवन, ए माती ते ज नहीं बोलना, इसको ज बोलना। ये ए माती ते जीवन सोबी, जीवन
3: सोबी।
2: जी कैसे? ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना। तो जीवन सोबी आकी, आकी दो बार आकी, आकी आकी मोसी लो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आका हार, ये जो ना आका आकाश श को बोलते वहां ख की तरह से, तो आकाश ये ख और ह के बीच में आका खार भी नहीं, आका हार भी नहीं, आका हार, आका हार लिखो। दूर आका हार, रोहन कियोनु लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर खागोर ख नहीं बोलना, ख खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर। मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू लागे लागे,
3: लागे लागे।
2: इसके आ गया है आहा आहा,

0: फिर मातीर बुकुत, मातीर बुकुत, मौनोर मालोती, बुटोलो मौनोर मालोती बुटोलो। इसके बाद फिर वही आ जाएगा, कई माती रे मोरो मोते। फिर दूसरा अंतरा है मौनोर कोरोनी रे, हुरोर हुरोर पापोरी रे, पापोरी रे आजी
1: आजी।
0: इतना हो गया ना। आगे हुकुमार थापो नाहुजुवा, हुकुमार थापो नाहुजुवा। आगे लिखा है ना। हुंदौर खुदीनौर, खुदीनौर नहीं खनी ख, खुदीनौर
1: खुदीनौर
0: नौतून दृष्टि, ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके, दृष्टि दृष्टि
1: दृष्टि
0: शनि सही बोलना, दृष्टि
1: दृष्टि
0: कौनो
1: कौनो
0: ना हुआ
1: ना हुआ।
0: आगे ना
1: जी।
0: अच्छा ठीक है, अब गाना सिखाना शुरू करते हैं। स्वर दीजिए जरा।

0: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम समवेत गान शिक्षा, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर में अगला कार्यक्रम।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाश

0: aakashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:30 हो चुके हैं। वक्त हो गया है फिल्म संगीत सुनने का। कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हैं। कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। आप सभी को नमस्कार। आपके साथ मैं हूं जया।

मुझसे शादी करोगी। आइए इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में साजिद वाजिद ने तर्ज बनाई है।

0: आकाशवाणी पटना से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम अभी जारी है, शेष गीत इस अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ है डॉक्टर MD तबरेज खान मोतिहारी से। कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
5: हार्ट अटैक को इंक्रीज, हाँ ये एकदम सही है। हार्ट अटैक को अगर हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे

0: रोल अदा करता है। कोलेस्ट्रॉल, अगर बहुत तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं तो इसमें VLDL, HDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी होते हैं। तो ये सारा जितने कोलेस्ट्रॉल है इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल भी है और बैड कोलेस्ट्रॉल भी है, तो हमें रेगुलर इनका चेकअप करते रहना चाहिए। अगर इनका ब्लड में ज्यादातर बड़ा रहने से कोरोनरी जो आर्टरी होती है, जो वेसल्स होते हैं उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, मतलब कि खून के जो नली होती है जो हार्ट को सप्लाई करती है उसके अंदर में जाकर ये जमाव करती है और ब्लड को प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं होने देती है हार्ट। तो हार्ट को चाहिए हमें प्रॉपर फंक्शन करना, वो उसके फंक्शन में डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो जिसके कारण से हार्ट पे अटैक हो जाता है।
1: अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया
2: कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का बहुत स्वागत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए अब सुनिए खलनायक फिल्म का ये गीत मनहर उदास और अलका याग्निक की आवाज में।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब आपको सुनवाते हैं, फिल्म झूम बराबर झूम से के सुखविंदर सिंह और महालक्ष्मी की आवाज़ में गुलजार के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी पटना से। यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि TRE4 भर्ती परीक्षा के लिए जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। श्री तिवारी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया की तैयारी तेज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने परीक्षा आयोजन को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली है। प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकानों की गिनती और उनके सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। गणना कार्य को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। इसके माध्यम से लोगों की शिकायतों और आपत्तियों का निष्पादन भी किया जा रहा है। हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि जिलाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी विनोद दुहन ने लोगों से जनगणना कार्य में बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। ये सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं। आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव 29 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। देश का प्रमुख औद्योगिक संस्थान अडानी समूह ने सारण जिले के मस्तीचक में आज अखंड ज्योति आंख अस्पताल के निर्माण की नींव रखी है। इस अवसर पर आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में समूह के प्रमुख गौतम अडानी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। श्री अडानी ने कहा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों को अंधापन और दृष्टि दोष से मुक्त करने के लिए उनका समूह संकल्प के साथ कार्य कर रहा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नालंदा जिले के राजगीर में मलमास मेले का शुभारंभ किया। यह मेला 15 जून तक चलेगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री चौधरी ने कहा कि सनातन धर्म के 33 करोड़ देवी देवता एक माह के लिए राजगीर में प्रवास करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को मलमास मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

0: राजगीर तीर्थ रक्षार्थ पंडा समिति के सचिव विकास उपाध्याय ने बताया कि इस वर्ष करीब 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इधर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए 950 दंडाधिकारी की निगरानी में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों में उमस के साथ तेज गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज किए जाने की संभावना है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने सुपौल, अररिया, किशनगंज समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान भी जताया है। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 149 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। रोहतास जिले में कल से 25 मई तक लगने वाले जनजातीय गरिमा उत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने तैयारियों की समीक्षा की। वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार ने आज पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया प्रखंड अंतर्गत सिकरहना नदी पर बन रहे पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से निर्माण की तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी ली। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: मजिस्ट्रेटों की निगरानी में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। मगरबी हवा के असर से रियासत के बेशतर खित्तों में उमस के साथ शिद्दत की गर्मी की सूरत हाल कायम है। महकमा मौसमियात ने अपनी पेशगोई में कहा है कि आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान बेशतर मकामात पर दर्जा हरारत में इजाफा दर्ज किए जाने का इम्कान है। महकमा ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बक्सर, मशरकी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा, जहां का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर महकमा मौसमियात ने सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत रियासत के शुमाल मशरकी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश की पेशगोई भी जाहिर की है। और अब एक अहम इत्तला।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: अररिया जिले के पलासी थाना इलाके में पुलिस ने गाड़ी जांच के दौरान 149 बोतल शराब के साथ 2 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले में कल से 25 मई तक लगने वाले जनजातीय गरिमा उत्सव की तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। जिला मजिस्ट्रेट उदिता सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। वाल्मीकि नगर के रुकने पार्लियामेंट सुनील कुमार ने आज मगरबी चंपारण जिला के लौरिया ब्लॉक के तहत सिकरहना नदी पर बन रहे पुल के तामीरी काम का जायजा लिया। उन्होंने तामीराती एजेंसी के अफसरान से तामीर के तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी ली। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आलोक में कुल 1230 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होने चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखा जा सकता है। आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनायक अनुदेशक के कुल 122 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। इंडियन आर्मी CSBO ग्रेड 2 के कुल 190 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होने चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष

होने चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianarmy.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधी सूचना। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
3: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
2: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और

0: रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत के स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80 रुपये 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपये 70

0: पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपये 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लैटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाश।

0: आकाशवाणी भोपाल।
1: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। हम
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी पटना है। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 2:30 हुए हैं। वक्त है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हैं। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं जया। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं फिल्म सुहाग के इस गीत के साथ। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी के बोल

साहिर लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम ताजमहल। सुनिए ये गीत।

अब आपको सुनवाते हैं फिल्म जानी दुश्मन का ये गीत, आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, वर्मा मल्लिक के बोल।

0: आकाशवाणी पटना से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम अभी जारी है, इस विराम के बाद अभी लौटते हैं।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी पटना से।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की फिल्म दुश्मन के लिए, आनंद बख्शी के बोल, और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जुगनू से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल, एस डी बर्मन का संगीत।

0: डर है,
1: बाली उम्र है,
0: छोड़ो बहाना।
1: ना ना ना
2: अब आपको सुनवाते हैं फिल्म एक फूल दो माली का ये गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज है, प्रेम धवन के बोल, संगीत तैयार किया है रवि ने।
3: ये पर्दा हटा दो,

0: इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी पटना से। कार्यक्रम आज आपने सुना मेरे यानी जया के साथ। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज गए हैं और इसी के साथ संपन्न हो रही है हमारी आज की ये सभा। आपके लिए कार्यक्रमों के साथ पुनः हम संध्या 4:28 पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद।
1: आपका रेडियो साथी समेत इस समय दिन के 3 बजे हैं दोस्तों।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। वक्त हो चला है आपके कार्यक्रम पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। हो चला है इस कार्यक्रम का वक्त। आपके ढेरों पत्र हम तक पहुंचे हैं श्रोताओं, और पहुंच भी रहे हैं, जिनमें आपके प्यारे प्यारे से नख़मे हैं। आपके कुछ इन्हीं सरगमी गीतों से हमने सजाया है आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम। तो सुनिए, कहीं ये आपकी पसंद का गीत तो नहीं।

आए दिन बहार के इस गीत का, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे गर्ल्स स्कूल मनिहारी रोड से अवधेश गुप्ता, भोलो, नीलू, विशाल राज और वंशराज, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से इस गीत की फरमाइश की हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जितेंद्र विरक और मीका विरक ने।

लैला मजनू फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में, साहिर लुधियानवी के बोलों को शुरू में ढाला मदन मोहन ने, और फरमाइश थी आप सभी की बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना और प्रवीण राउत इस गीत को सुनना चाहते थे, और इसी गीत की फरमाइश की विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर परी और अभिजीत गवाणकर राही भी यहीं से, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवाणकर की ये फरमाइश थी। मंचा गीत कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत है कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजें हैं, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, खयाम का संगीत।

0: नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या।
1: इस गीत की फरमाइश की चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, हेवरखेड़ तहसील तेलहरा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार अढ़िया, सौभाग्यवती भारती अढ़िया, पारस पायल, श्वेता अढ़िया और उर्वी बेन अढ़िया ने इसे पसंद किया। और ककराला उत्तर प्रदेश से विकास सक्सेना, कर्मवीर गोखले, प्रवीण राउत और अनीता नागर की फरमाइश थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में इसे गाया परवीन सुल्ताना ने। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह नगमा था फिल्म कुदरत से। इस गीत को पसंद किया था छत्तीसगढ़ करगी रोड से शैलेश सिंह, नीलेश सिंह, संध्या सिंह और शैलू ठाकुर ने, और इसी गीत की फरमाइश की थी सौभाग्यवती मीरा प्रकाश ने। और इन्होंने सब कुछ तो लिखा है श्रोताओं, लेकिन अपना अपनी जगह का नाम नहीं लिखा कि इन्होंने कहाँ से पत्र लिखा है। आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

आप सुन रहे थे धरती, ये फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। इस गीत को सुनना चाहा राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी और पूजा खटक, और ज़िला अमरावती प्रवीण नगर से। इस गीत की फरमाइश की चंदू हातोले, सीमा हातोले, स्नेहल ने, और इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम, श्रेय गौतम, कुश गौतम, रिंकू, टिंकू और रीना। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओं, आपने इतने प्यार से हमें पत्र लिखे और आपके प्यारे प्यारे नगमे हमने शामिल किए आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में। इसी तरह अगली मुलाकात के लिए बस और थोड़ा इंतज़ार करना होगा। भेजिए अपने फरमाइशी पत्र इस कार्यक्रम के लिए। मन चाहे गीत कार्यक्रम से अब दीजिए संगीता श्रीवास्तव को इजाज़त। नमस्कार।

विविध भारती। नाट्य तरंग। आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: शकुंतला,
1: आप कहीं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ?
0: नहीं शकुंतला, ये सत्य है, ये सत्य है कि मेरी दशा भी तुम्हारी दशा से भिन्न नहीं है। तुम्हें तो कामदेव केवल संताप ही देता है, किंतु मुझे मुझे तो उसने झुलसा ही डाला है। तुम्हारा ये गीत तो तेरी ही अनुभूतियों का अनुवाद है शकुंतला।
1: ओह, अब मैं क्या करूं? इनके आने तक तो मन इतना उतावला हो रहा था, किंतु अब कुछ सोचता ही नहीं।
0: तुम्हारे शरीर का संताप अब कैसा है शकुंतला?
1: जी,
2: अब आप आ गए हैं तो शांत हो ही जाएगा।
3: अनुकूल औषधि पाकर संताप कहाँ रह सकता है?
0: आप,
2: हम लोग आपके दर्शनों के लिए उत्सुक थे आर्य,
3: किंतु आप इतनी जल्दी यहाँ मिल जाएंगे इसकी आशा नहीं थी।
0: अच्छा, तब तो मेरा यहाँ आना उचित ही रहा।
2: हाँ आर्य, शकुंतला के संताप का कारण आप ही हैं।
3: आपका सानिध्य ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकता है आर्य।
0: मेरे प्राण भी इनसे दूर रहकर बचे नहीं रह सकते भद्रे।
1: अनुसुईया, रनिवास की रानियों के विरह में व्याकुल राजर्षि को क्यों इस संकट में डाल रही हो?
0: नहीं शकुंतला, मेरे हृदय की व्याकुलता का कारण तुम हो, केवल तुम। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का ध्यान भी नहीं है इस मन को। इस पर भी यदि तुम्हें विश्वास ना आए तो मैं।
3: महाराज, शकुंतला का संदेह निराधार नहीं है।
0: रनिवास की इतनी रानियों के रहते हुए भी आप निश्चिंत रहें कि मेरे कुल में समुद्र से घिरी इस पृथ्वी के अतिरिक्त आपकी सखी शकुंतला का ही स्थान रहेगा।
3: हम निश्चिंत हुई आर्य।
2: अनसुईया, देख तो वो मृगछौना माँ को ढूंढता हुआ इधर उधर भाग रहा है।
3: हाँ, चलो इसे इसकी माँ के पास पहुँचा आए।
1: अरे अरे, मुझे अकेली छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको ना,
2: अब हमारी क्या आवश्यकता है शकुंतला?
3: सारी पृथ्वी का स्वामी तो तेरे पास ही है।
1: रुको ना, प्रेमवदा, अनसुईया चली गई।
0: चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारा सेवक तो यहाँ उपस्थित है।
1: जी।
0: कहो, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्हारी थकान को दूर करने के लिए ठंडे कमलिनी के पत्तों से पंखा चलूं या?
1: नहीं नहीं, मेरे सर पाप क्यों मर रहे हैं यार?
0: पाप?
1: पूज्य लोगों से सेवा करवाना पाप से कम है क्या?
0: प्रेम में पूज्य कोई नहीं होता शकुंतला, केवल प्रिय होते हैं। और मैं अपनी प्रिय शकुंतला को इस दशा में देखकर चुपचाप कैसे बैठा रहूं?
1: अब जाने भी दीजिए मुझे।
0: क्यों जाने दूं तुम्हें?
1: पूर्ववंशी राजा को कुछ तो शील का ध्यान रखना ही चाहिए ना।
0: शील और संकोच के दीवार हमारे बीच और

0: आपकी तरह स्वतंत्र नहीं हूँ आर्य। प्रेम में आपसे अधिक व्याकुल होने पर भी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर सकती।
1: इतना भय उचित नहीं शकुंतला।
0: नहीं आर्य, मेरे मन की उलझन को आप नहीं समझ सकते।
1: क्या उलझन है तुम्हारी, बताओ तो।
0: अब कैसे बताऊं आर्य? पिता कर्ण को यदि हमारे आकर्षण का पता चल गया तो।
1: गुरुजनों से डरने की कोई बात नहीं है शकुंतला। पूज्य कुलपति धर्म को भली भांति जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बारे में सब कुछ जानकर भी वो पूरा नहीं मानेंगे। और ऋषि कन्याओं के गंधर्व विवाह तो पहले भी हुए हैं और उनके पिताओं की सहमति से हुए हैं।
0: आपकी बात सही होते हुए भी मेरी दुविधा दूर नहीं हो पा रही है आर्य।
1: तुम चाहो तो अपनी सखियों से पूछ लो।
0: हाँ ठीक है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। किंतु आप मेरा हाथ तो छोड़िए।
1: नहीं, अभी नहीं छोड़ूंगा।
0: तो फिर कब?
1: मुझ प्यासे भंवरे को तुम्हारे अधर पुष्प का रस मिल जाए तब।
0: ये क्या कर रहे हैं आप?
2: अरे चक्री, आप अपने प्रिय से विदा ले, रात आ पहुंची है।
0: ओह, लगता है मुझे देखने के लिए आर्या गौतम इधर ही आ रहे हैं। आर्या, आप इस वृक्ष की ओट में छिप जाइए।
1: ठीक है।
2: शकुंतला, अब कैसी हो बेटी? शरीर का ताप कुछ कम हुआ?
0: हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताप भी कुछ कम हो गया है।
2: लो, इस कुशा के जल से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगी।
0: अच्छा,
2: चलो बेटी, दिन ढल गया, आओ कुटिया में चलें।
0: हाँ चलो माँ।

मन, जब वो तुम्हारे साथ थे तब तो तुम भयभीत बने रहे, अब तो अतृप्ति की इस पीड़ा को झेलना ही होगा तुम्हें। हे संताप हरने वाली लता कुंज, विहार के लिए बहुत शीघ्र मैं फिर उपस्थित होंगी।

0: मन की साध हर बार अधूरी ही रह जाती है। सुंदर पलकों वाली शकुंतला के उस मनोहर मुख को चूमने का अवसर पाकर भी चूम नहीं सका। अब इस लता कुंज में उस स्पर्श की स्मृतियों में खोए रहने के अतिरिक्त और क्या उपाय है? उसके शरीर से मसला हुआ ये फूलों का बिछावन, उसके हाथों से सूख कर गिरे हुए कमलनाल के ये आभूषण, कमलिनी के पत्तों पर नखों से लिखा हुआ ये प्रेम पत्र।
1: बचाइए, बचाइए राजन, बचाइए। यहाँ वेदी के चारों ओर काले काले राक्षस फिर मंडराने लगे हैं। तपोवंती पवित्रता की रक्षा कीजिए राजन।
0: इन राक्षसों ने फिर से उठा लिया। मैं अभी जाता हूँ।

0: बहुत अच्छा हुआ प्रियंवदा कि शकुंतला का गंधर्व विवाह हो गया, किंतु एक चिंता भी है सखी।
1: चिंता? अब क्या चिंता है अनुसुया?
0: यही कि आज यज्ञ हो चुकने के बाद ऋषियों से विदा लेकर जब ये राजन अपने रनिवास में पहुंच जाएंगे, तब इन्हें यहाँ की सुध भी रह जाएगी या नहीं?
1: ये चिंता व्यर्थ है अनुसुया। ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले लोग कपटी नहीं हुआ करते। हाँ, पिता कण्व को लेकर मैं अवश्य कुछ आशंकित हूँ।
0: उनकी ओर से मुझे कोई आशंका नहीं। मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो इस विवाह का विरोध नहीं करेंगे।
1: वो क्यों?
0: क्योंकि शकुंतला के विवाह का संकल्प तो वो पहले ही कर चुके थे। उनकी तो कामना ही थी कि कोई योग्य वर मिल जाए, और संयोग से ये कामना भी बिना परिश्रम के पूर्ण हो गई, नहीं?
1: तेरा कहना सही है अनुसुया। पिता कण्व भी कम प्रसन्न नहीं होंगे।
2: अरे कोई है? कुटिया में कोई है?

0: अरे ये तो किसी अतिथि का स्वर जान पड़ता है।
1: शकुंतला तो कुटिया में ही है
0: तो, किंतु आज वो कुछ अनमनी सी है।
1: अच्छा देख तो, पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त होंगे ना?
0: कैसे होंगे, अभी शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी तो करनी है।
1: ओह मैं तो भूल ही गई थी, चलो चलो कुछ और फूल चुन ले।
0: चलो।
2: अरे ओ दुष्टा, अतिथि का अपमान करने वाली संसद, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिसके ध्यान में तू मुझ जैसी तपस्वी की सुध नहीं ले रही है, वो भी तुझे बहुत स्मरण दिलाने पर भी पहचान नहीं पाएगा। वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा।
1: अनर्थ हो गया, लगता है अपने बेसुधपन में शकुंतला ने किसी महात्मा का अपमान कर दिया है। अरे ये तो कोप की साक्षात मूर्ति ऋषि दुर्वासा है।
0: जा प्रियंवदा, उनके पैरों पड़कर उनको लौटा लो, तब तक मैं अर्धे का जल लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी जा। हे भगवान, इस फूल की टोकरी को भी अभी गिरना था।
1: अनसुया
0: आ गई। प्रियंवदा, ऋषि कहाँ है?
1: ऋषि दुर्वासा कब किसकी सुनते हैं?
0: क्या ऋषि का कोप शांत नहीं हुआ?
1: कोप तो शांत नहीं हुआ अनसुया, किंतु फिर भी मेरी अनुनय से वे कुछ कृपालु अवश्य हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, जब वे किसी प्रकार लौटने के लिए तैयार नहीं हुए
0: तो
1: तब मैंने उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, शकुंतला का ये पहला ही अपराध है और वो भी अनजाने में हुआ है।
0: फिर
1: इस पर उन्होंने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु इतना अवश्य हो सकता है कि यदि यह कन्या अपने प्रेमी को अपनी पहचान का कोई आभूषण दिखा दे तो मेरे शाप से मुक्त हो सकती है।
0: चलो इतना ही पर्याप्त है। उस राजर्षि के नाम वाली अंगूठी शकुंतला को शाप से मुक्त कराने में काम आएगी।
1: आओ अनुसुया, अब देव पूजन का काम पूरा कर ले।
0: प्रियंवदा, ये शाप वाली बात हम तक ही रहनी चाहिए, बहुत कोमल स्वभाव की है बेचारी शकुंतला।
1: हाँ अनुसुया, उसकी रक्षा तो करनी ही होगी।

0: ये तो दिन निकल आया। कितना मनोहर दृश्य है। एक ओर औषधिपति चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तो दूसरी ओर अरुण रूपी सारथी को आगे किए हुए सूर्य का रथ चला आ रहा है। एक के अस्त होने के साथ ही दूसरे का उदय, जैसे दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख। चलो, हवन का समय हो रहा है, गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
1: अनुसुया, ए अनुसुया, उठना।
2: क्या हुआ प्रियंवदा?
1: अरे होना क्या है, भोर हो गई, आज उठना नहीं है क्या?
2: मैं सोई कहाँ हूँ प्रियंवदा।
1: अच्छा, आश्रम में कोई राजर्षि आए हैं क्या?
2: परिहास न कर प्रियंवदा, मेरा मन वैसे ही कुछ ठीक नहीं।
1: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
2: कुछ नहीं सखी, बस रह रहकर ऋषि दुर्वासा का शाप सता रहा है। मुझसे अब शकुंतला की दशा देखी नहीं जाती प्रियंवदा।
1: किंतु शकुंतला तो पूरी तरह ठीक है अनुसुया।
2: हाँ ठीक है, किंतु कब तक? उस राजर्षि को गए इतने दिन बीत गए, किंतु शाप के वशीभूत उसने अब तक शकुंतला की सुध नहीं ली। और कब तक प्रतीक्षा करती रहेगी बेचारी?
1: चिंता क्यों करती है अनुसुया, शकुंतला को शाप से मुक्त कराने के लिए राजर्षि की दी हुई अंगूठी तो है अपने पास।
2: है तो सही प्रियंवदा, किंतु उस अंगूठी को दिखाने वहां जाएगा कौन?
1: कौन जाएगा? शकुंतला जाएगी।
2: उस बेचारी को तो इस दुर्भाग्य का भान ही कहां, और उस पर एक अनर्थ और हो गया है, वो मां बनने वाली है।
1: तू भी तो एक बावली है, इतनी अच्छी बात को अनर्थ कह रही है।
2: तू नहीं समझ रही प्रियंवदा, पिता कण्व को जब इन बातों का पता चलेगा तो।
1: पिता कण्व को इन सब बातों का पता चल भी गया और वे अप्रसन्न भी नहीं हुए।
2: सच?
1: हाँ।
2: तू सच कह रही है प्रियंवदा?
1: हाँ अनुसुया, मैं भी शकुंतला के पास से ही आ रही हूँ, पिता कण्व वहाँ उसे आशीर्वाद दे रहे थे।

0: आशीर्वाद दे रहे थे?
1: हाँ, और कह रहे थे कि योग्य शिष्य को विद्या देने के समान ही योग्य पति को कन्या सौंपने में भी अपार संतोष मिलता है।
0: हे भगवान।
1: और ये भी कह रहे थे कि मैं आज ही ऋषियों के साथ तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगा।
0: ओह, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। किंतु प्रियंवदा, पिता कण्व को इस घटना का पता कैसे चला?
1: आकाशवाणी से।
0: आकाशवाणी से?
1: हाँ, यात्रा से लौटकर पिता कण्व जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे, आकाशवाणी हुई।
2: जैसे शमी वृक्ष के भीतर होता है पावक का वास, वैसे ब्राह्मण शकुंतला में जगहित पौरव तेज निवास।
0: हे भगवान, तुमने शकुंतला ही नहीं हम सबकी लाज रख ली। तुम सचमुच बहुत कृपालु हो भगवान।
1: किंतु अनुसुया, इस कृपा में बहुत गहरा अवसाद भी छिपा हुआ है।
0: हाँ प्रियंवदा, शकुंतला अब चली जाएगी, आज ही चली जाएगी।
1: हमारे इस अवसाद से शकुंतला का सुख बहुत बड़ा है अनुसुया, उसे अपने प्रियतम के पास जाना ही चाहिए।
3: गौतमी, शरद्वत आदि से कहो शकुंतला को पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए।
1: चलो अनुसुया, हस्तिनापुर जाने वाले ऋषियों की बुलाहट हो रही है।
0: हाँ चलो प्रियंवदा।

0: देखता न सुया, मंगल कामनाओं की मधुर वर्षा में भीगी हुई शकुंतला का सौंदर्य कितना निखर उठा है ना?
1: हाँ प्रियंवदा, ऐसे स्वाभाविक सौंदर्य को अब बाहरी आभूषणों की क्या आवश्यकता?
0: सखी, ये पगली ऐसे शुभ अवसर पर भी रो रही है?
2: नहीं शकुंतला, नहीं, इस तरह तो तू हमें भी।
3: अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग शकुंतला को सजाने आई हो या रुलाने? बस बस अब चुप करो, अब चुप करो। पता है शकुंतला को सजाने के लिए लताओं और वृक्षों ने भी फूलों पत्तों के स्थान पर आभूषण दिए हैं। देखो ये देखो,
2: कितने सुंदर,
0: कितने अलौकिक है ये शुभ्र वस्त्र,
2: ये सलोनी महावर,
0: ये आकर्षक आभूषण।
3: जानती हो इन लक्षणों का क्या अर्थ है?
0: क्या अर्थ है आर्या?
3: ये लक्षण बता रहे हैं कि शकुंतला अपने पति के घर राज लक्ष्मी बनकर रहेगी।
2: माँ,
3: माँ, प्रियंवदा, अनुसुईया, अब और देर न करो, चलो जल्दी से इसे ये आभूषण पहना दो। अच्छा।

0: आज शकुंतला चली जाएगी, सोचते ही मेरा जी बैठा जा रहा है। आंसुओं को रोकने से गला इतना रुंध गया है कि मुंह से शब्द निकल ही नहीं पा रहे। चिंता में आंखों की ज्योति भी धुंधली पड़ती जा रही है। जब मुझ जैसे वनवासी की ये दशा है तो बेचारे गृहस्थों का क्या हाल होता होगा।
1: बेटी शकुंतला, देखो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तात कर्ण इधर ही आ रहे हैं। प्रणाम करो बेटी।
2: प्रणाम पिताजी।
0: बेटी, मेरा आशीर्वाद है शर्मिष्ठा की तरह तुझे भी अपने पति से आदर और पुरु जैसा चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
1: आपका तो आशीर्वाद भी वरदान है भगवन।
0: आ बेटी, अग्नि में अभी आहुति पड़ी है, चलो उसकी प्रदक्षिणा कर लो।

वन देवताओं से भरे हुए तपोवन के वृक्षों, आज तुम्हारी प्रिय शकुंतला जा रही है। स्वयं प्यासी रहकर भी जो पहले तुम्हारी प्यास बुझाया करती थी,

आज अपने पति के घर जा रही है, उसे उसे विदा दो वनदेव, तो उसे विदा दो।

0: शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो। इसके मार्ग में नीली कमलनियों से भरे हुए ताल हो। धूप से बचाने के लिए घनी छांव वाले वृक्ष हो। इसके पथ की धूल में कमल के पराग की कोमलता हो। और इसके मन को शांति देने के लिए यात्रा पर्यंत मंद मंद पवन बहता चले। शकुंतला की यात्रा कल्याणमय हो।
1: प्रियंवदा, मेरे पांव आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं।
2: तपोवन से बिछुड़ने का दुख केवल तुम्हें ही नहीं है शकुंतला, ये तपोवन भी कम उदास नहीं है। देखो, औरों ने नाचना छोड़ दिया है, कैसे चुपचाप खड़े हैं। हिरणियां भी अनमनी होकर चबाई हुई कुशा को बार बार उगल रही हैं। आंसुओं के रूप में लताओं से पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं।
1: बाबा, बाबा, बाबा, मैं एक क्षण वन ज्योत्सना से मिल लूं। बाबा।
3: हाँ बेटी, मैं जानता हूं उस लता से तुम्हारा सगी बहन जैसा प्रेम है। मिल लो बेटी।
1: चलती हूँ वन ज्योत्सना, चलती हूँ। देखो, आम के वृक्ष के अनुराग में अपनी बहन को भूलना नहीं। पता नहीं अब तुमसे मिलना होगा भी या सखी, तुम इसका ध्यान रखना।
3: बेटी, निश्चिंत रहो, अपने पुण्य प्रभाव से इसने भी तो आम के वृक्ष के रूप में अनुरूप वर पा लिया है। मुझे भी तुम दोनों की चिंताओं से एक साथ ही मुक्ति मिल गई है।
1: आजल कौन खींच रहा है?
4: ये तेरा लाडला हरे शावक है बेटी।
1: मेरे लाडले, अब तो मुझे जाना ही होगा। देख देख, मेरी जगह अब तेरी देखभाल बाबा करेंगे।
5: सरोवर का तट आ गया है भगवान।
3: हाँ शालग्राह, पूर्वजों ने कहा है कि प्रियजनों को विदा करते समय जलाशय तक पहुंचाकर ही लौट आना चाहिए।
5: माननीय राजा दुष्यंत के लिए कोई संदेश हो तो आदेश प्रदान करें भगवान।
3: हाँ वत्स, शकुंतला को राजा दुष्यंत के हाथों में सौंपते हुए मेरी ओर से कहना, राजन हम तो सीधे साधे संयमी तपस्वी लोग हैं, आपके ऊंचे राजघराने के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। फिर भी आपने आश्रम की इस कन्या को अपनाया है, ये हमारा सौभाग्य ही है। शकुंतला को आपकी दूसरी रानियों के समान प्रेम और आदर मिले, बस

0: इतनी ही विनती है हमारी, और इससे अधिक क्या कह सकते हैं हम लोग।
1: पापा, पापा।
0: पति के घर पहुंचकर घर के सब बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपनी सौतों को भी अपनी सखियों जैसा प्रेम करना बेटी, और देख पति ही स्त्री का परमेश्वर होता है, उसे कभी अप्रसन्न नहीं करना। दास दासियों से भी स्वजनों का सव्यवहार रखना
1: पापा,
0: और अपने सौभाग्य पर कभी इतराना मत बेटी।
1: इन सब बातों को अच्छी तरह गांठ में बांध लो शकुंतला, कुलवधुओं के लिए इससे अच्छा और क्या उपदेश होगा। प्रियमता, आओ शकुंतला, हमसे गले तो मिलो।
2: सखी,
1: तो क्या तुम लोग भी यहीं से लौट जाओगे।
0: हाँ बेटी, अब इन दोनों को भी तो उपयुक्त वरों को सौंपना है ना, इसलिए इनका यहाँ रहना ही ठीक है। फिर आर्या गौतमी तो तुम्हारे साथ ही जा रही है।
1: अनसुया, शकुंतला, तुम लोगों से अलग रहकर मैं कैसे जी पाऊंगी, बोलो।
0: इतनी अधीर रहो बेटी, पति के घर पहुंचकर वहां की व्यस्तता में बिछड़ने का सारा दुख भूल जाएगी, पटरानी बनकर राज करेगी, सूर्य के समान तेजस्वी और पवित्र पुत्र की मां बनेगी।
1: शकुंतला, ये राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी है, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना।
2: और यदि इतने दिनों बाद वे तुझे पहचानने में भूल करें तो उन्हें ये अंगूठी दिखा देना, समझी।
1: ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो, डरने की कोई बात नहीं शकुंतला,
2: हम तो यूं ही तुझे हर परिस्थिति के लिए सचेत कर रहे हैं।
1: किंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
3: दिन बहुत चढ़ाया है भगवान, अब हमें चलना चाहिए।
0: हाँ शरणग्रह, अब तुम लोगों को जाना ही चाहिए। जाओ बेटी शकुंतला, चिरकाल तक इस समूची पृथ्वी की सौत बनकर राज करो, और उसके बाद अपने अद्वितीय वीर पुत्र को राज्यभार सौंपकर अपने पति के साथ इस आश्रम में आओ। यहाँ के शांत वातावरण में सुख से विश्राम करो। जाओ बेटी, ईश्वर तुम्हारा पथ प्रशस्त करे, तुम्हारा मार्ग

कन्या सचमुच प्रायःतन होती है। शकुंतला को आज उसके पति गृह भेजकर

0: Vilket nassen tår sig.
1: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।

0: तारा में आज
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: साहिबा।
1: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
2: हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में तो रेमनॉड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे तो लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। वो उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका।
1: जी जी जी।
2: हाथ पाथ देखा उन्होंने, गड़बड़ है क्योंकि जा चुके थे। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
2: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं।
1: पिछले एपिसोड में आपने सुना, रमेश तलवार साहब इन सब बातों के दौरान बसेरा की बातें छूट गई हैं जहां से आपका सफर डायरेक्शन का शुरू होता है।
2: बसेरा का भी इसी तरह था भाई। देखिए दूसरा आदमी जब रिलीज हुई,
1: हाँ,
2: तो बहुत तारीफ हुई, राखी जी का बहुत उसमें योगदान था कि उन्होंने काम किया।
1: नहीं तो एक काम करते हैं, पहले दूसरा आदमी की बात करते हैं फिर बसेरा की बात करते हैं।
2: करिए।

0: दूसरा आदमी में ऐसा हुआ कि जब पिक्चर की स्टोरी बन गई, आइडिया मतलब सोच लिया गया, पहले मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर थे,
1: मतलब दीवार के बाद का थॉट था,
0: मतलब ऐसा कुछ करके अलग किस्म की थी, वो बन गई आइडिया वाइडिया ओके हो गया, वन लाइन बना ली हमने नए राइटर से कुछ, और मैं अमित जी के पास गया, बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब मैं उनके छोटे भाई की तरह हूँ, चाहे हमने काम नहीं किया, 3-4 फिल्मों में से था ना मैं,
1: जी
0: सारी फिल्में त्रिशूल में भी था, उसमें था, और सब हर सेटिंग में स्टोरी सेटिंग में भी होते थे, शूटिंग में मुझे देखते थे काम करता हूँ, कोई ऐसा वो। फिर जया जी के साथ मैंने दो ड्रामे डायरेक्ट किए थे
1: जी,
0: वो भी अमेरिका टूर किए, तो अलबत्ता उन्होंने मुझसे कहा ये देखो भाई शॉर्ट ये है कि यश जी के साथ मैं एक पिक्चर कर रहा हूँ और तुम्हारी पिक्चर भी मैं करूं तो एक कंपनी की दो पिक्चरें हो जाएंगी, डायरेक्टर की और उसके असिस्टेंट की पिक्चर।

0: जो भी हो आप डॉक्टर हो गए लेकिन कहलाते तो यश चोपड़ा के असिस्टेंट हैं आप। दो प्रोजेक्ट एक ही जगह दूंगा, डीटी में जाएंगे वो भी होगा, बाकी लोगों को नहीं काम, इस तरह की उस बात बोला। पहले भी मैंने एक प्रोड्यूसर के साथ ऐसा किया था मेरे शायद प्रकाश मेहरा के टाइम पे, प्रकाश मेहरा जी के साथ और उनके असिस्टेंट के साथ एक पिक्चर की थी जिसमें उनको थोड़ा सा डेटा एडजस्टमेंट में गड़बड़ हुई थी। तो एक काम करो तुम एक पिक्चर किसी और के साथ बना लो, फिर तुम मैं करूँगा आपकी पिक्चर, कभी मैं ना नहीं करता
1: जी।
0: और उस वक्त वो मेरे ख्याल में इलेक्शन वलेक्शन भी लड़ रहे थे, वो शायद दिल्ली में जाके या कहीं उन्होंने वो भी किया था
1: जी। जी जी
0: अलबत्ता मैं आया, मैंने यश जी से कहा कि उन्होंने तो मना कर दिया। फिर मैंने इनके अलग सब्जेक्ट जैसे सुनते रहते हैं आप लोग और चलता है, तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है उसने आइडिया सुनाया और उसने कहा कि ऐसा है। तो वो जो आइडिया सुनाया उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था।
1: ओके ओके
0: जो सब्जेक्ट सुनाया
1: जी,
0: तो लेकिन सब्जेक्ट बड़ा अच्छा था और ऋषि कपूर को पसंद था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ लेकिन इसमें चेंजेस वेंजेस होंगे, नया न्यू कमर था राइटर
1: जी जी जी
0: उन्हीं का नाम है राइटर है राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा अगर सागर सरदी कर लें तो। मैंने सागर साहब से कहा कि साहब ऐसा मुझे ये चांस मिल रहा है यश चोपड़ा की पिक्चर और आप लिखें अगर तो ये स्टोरी आइडिया है। तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा ये 8 फिल्म का आइडिया है।
1: अच्छा
0: हाँ, जब ओरिजिनल तो जो बाकी कहानी आप राखी निकाल दो, बाकी जो है बहुत कम आया उसमें। तो बड़ी कमर्शियल यश चोपड़ा पिक्चर मतलब कमर्शियल पिक्चर, बड़ी पिक्चर, तो इसमें कोई और कहानी मिक्स करते हैं, कुछ और डालते हैं। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
1: हाँ
0: ये करे। तो ये करते करते करते फिर उसमें लॉजिक ये है कि हमने एंड में 40 साल के साथ लड़के को भेजना नहीं है, 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की में उनकी उनका ही करना है ये सब। तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, विलन मतलब जो हीरो हीरोइन के बीच में आता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उस तरह का।
1: ये रिस्की नहीं था उस वक्त?
0: रिस्की था
1: जी,
0: रिस्की था, लेकिन यश चोपड़ा भी प्रोग्रेसिव आदमी थे
1: जी,
0: सागर साहब भी प्रोग्रेसिव थे, हम भी प्रोग्रेसिव थे, सोचने का जो ढंग था हम लोग एक्साइटेड हो गए। तो हमने एक आइडिया ये सोचा कि हम शुरू में ऐसा करेंगे कि राज कपूर और नूतन को डालते हैं।
1: अरे बाप रे,
0: उन लोगों ने अपने जमाने में मोहब्बत की थी,
1: हाँ हाँ,
0: और आज सेम चीज ये बच्चा कर रहा है और राज कपूर फिर बाप का रोल करेगा, फादर के रोल में राज कपूर को ले ले। तो जब वो डाल तो दिया हमने, यश जी ने मुझसे आहिस्ता से कहा बेटा तेरी पहली पिक्चर है, राज कपूर साहब के टाइमिंग अलग है, तेरा सोचने का तुम्हारा काम करने का ढंग अलग है, वो डायरेक्टर भी हैं उनका काम करने का ढंग अलग है, सोच लो। मैं तुम्हें डिस्करेज नहीं करता।
1: सही कहा जी।
0: और मैं चिंटू से भी बात कर चुका था, फिर मैं जाके उसको ऐसा वो कह रहे हैं, बोला हाँ यार ये तो है देख ले तू। तो वो पोर्शन बिगनिंग का मैंने काट दिया पिक्चर में से, शुरू में जो सोच रहे थे। और फिर हमने नॉर्मल बाप रखा जो सत्यन कपूर को रोल दिया था
1: जी,
0: गीता सिद्धार्थ उनकी वाइफ है
1: जी,
0: और नूतन के बदले। अब साहब ये जब हो गया आइडिया, अब मैंने पहला मेरा ख्याल था कि शर्मिला टैगोर ये रोल करे
1: जी जी जी जी,
0: क्योंकि उस तरह के रोल करती थी
1: जी।
0: तो मैंने राखी जी ने ऐसे ही पूछा शूटिंग के दौरान यश जी की पिक्चर में, रमेश तू क्या कर रहा है पिक्चर में? मैंने कहा ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा वो शर्मिला टैगोर जी का रोल है।
1: सीधे कह दिया।
0: हाँ
1: फिर सुनाया,
0: फिर उन्होंने कहा तुम बताओ सुनाओ, मुझे लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूँगी
1: जी।
0: और वो हमारी घर की आर्टिस्ट थी, मतलब कंपनी की आर्टिस्ट जैसे

0: ना, इतना कोऑपरेट करती थी, कभी डेट की नहीं, कभी किसी किस्म का कोई होता ना जिग-जिग नहीं, कुछ नहीं, कमरा को छोटा है, फलां क्यों नहीं, मेकअप रूम अच्छा नहीं है, कभी कोई बात नहीं की।
1: जी जी जी,
0: इस तरह से काम करती रही, बहुत डिवोटेडली काम किया उन्होंने। तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया, उन्होंने कहा मैं ये करूँगी।
1: वाह।
0: मैंने यश जी को कहा, यश जी कहते सोच लो बेटा, वो कैसे ग्लैमरस और वो सब है तेरा। फिर मैंने राखी जी से कहा, उन्होंने कहा कल मेकअप टेस्ट लो, मैं वो सब बन के पहले आई जो पिक्चर में अभी हैं।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो खुद अपना वो सब किया उन्होंने।
1: अरे

0: जी
1: लोग तो चुनते इस तरह करते, पर उनको मेरा काम करने का ढंग भी पसंद था, बहुत सारी फिल्मों में संग काम किया हुआ था, और उनको लगा कि इस लड़के को चांस मिलना चाहिए, वो किया। अब साहब इस फिल्म की हो गया पिक्चर जो होना था, 15 हफ्ते चली, और जब चली दिल्ली में भी अच्छा गया, और जब गुलशन जी ने कोई पिक्चर रिलीज करनी थी अपनी, तब मेरे 2 दिन कम थे 15 हफ्ते से।
0: हाँ हाँ।
1: तो उन्होंने जर्जी से कहा कि यार मेरे को चेन मिलती है और मेरे को मेन थिएटर ये सब मिल जाएगा, रमेश को समझाओ किस तरह उसको बुरा ना लगे कि हम पिक्चर उतारने लगे और पिक्चर अच्छी चल रही है। तो उन्होंने आपस में बात कर ली, एक काम करते हैं कि मैटनी में कहीं लगा देंगे, वो साथ में चलती रहेगी। मैंने बोला जी आपकी पिक्चर है जी, जैसा आपको लगे। उतार दी गई पिक्चर उनकी चैन, अगली पिक्चर जो थी मेरे ख्याल शत्रुघ्न सिन्हा की कोई पिक्चर हो, गुलशन राय जी रिलीज कर रहे थे।

0: क्या मौसम है, चल कहीं दूर
1: अच्छा,
0: निकल।
1: बहुत क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा कर रहे। अब जो आया इसका वक्त, जो नूरी की बात मैं आपसे कह चुका हूँ कि दो पेज की कहानी का होता, मैं पिक्चर के बाद फिर मैं थोड़ा सा यश जी से थोड़ा सा रूठा था दूसरा आदमी के उतरने के बाद।
0: इसके म्यूजिक के बारे में बताइए।
1: किसके?
0: राजेश रोशन को चुना आपने, मजरू को चुना?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजेश रोशन उनके असिस्टेंट थे,
0: हाँ,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और मैं यश जी के साथ था। तो जब हम डाक के टाइम पे मिला करते थे तो वो कहता था कि मैं म्यूजिक बनूंगा, और मैं कहता मैं तेरे को लूंगा।
0: अरे वाह,
1: हम दोनों साथ में काम करेंगे, ऐसा जब से पैसे होती है जो असिस्टेंटों में होती है। फिर उसको पिक्चर मिल गई, वो
0: जूली
1: भी मिल गई, और एक पहले कुंवारा बाप
0: मिली।

0: तो अब जब टाइम आया तो मैं क्या भैया, मैंने जैसी चीज़ कहा, ये जी तो खयाम साहब ऑलरेडी पिक्चर कर रहे थे हमारे साथ, तो उधर और भी सब जो पहले दिन के साथ कर रहे होते हैं तो बड़ा ज़रा मुश्किल होता है तुझे, बट एनी वे उन्होंने कहा बेटा देख लो तुम जैसा भी, तुम इससे मिलने गया, बोला भाई ऐसा ऐसा है आइडिया, करेगा पिक्चर? बोला हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यश जी की बातें माननी पड़ेंगी थोड़ी सी, और यश जी के यहाँ जाकर सिटिंग करनी पड़ेगी गिरनार अपार्टमेंट में पालेल पे, बोला करूँगा। और उसने पिक्चर ले ली, उसने बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे ढंग से सारा कुछ हुआ, जबरदस्त म्यूजिक बना,
1: बहुत अच्छी गाने चले,
0: बहुत नहीं। फिर मैं गया था उस टाइम पे आनंद बख्शी जी के पास,
1: अच्छा,
0: करने के लिए। तो आनंद बख्शी जी ने कहानी सुनी और उन्होंने कहा अच्छी है कहानी तेरी, लेकिन मैं तेरी पिक्चर नहीं करूँगा।
1: ओ,
0: क्योंकि यश जी की किसी पिक्चर में से उनको लेके निकाला था उन्होंने, यश जी ने ओके ओके कर दिया था गड़बड़,
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: वो कुछ हुआ था ऐसा,
1: हाँ,
0: मेरे ख्याल में ये हुआ था कि जावेद साहब जब गाने लिखने के लिए तैयार हो गए थे नए दो तीन, और लता जी ने रिकमेंड किया किसी के कहने पे कि जावेद साहब गाने लिखेंगे, उनकी कोई दिल्ली की सहेली है लता जी की कि जावेद अख्तर बहुत अच्छा लिख रहा है आजकल, ऐसा तो उन्होंने कर दिया। अब ये आनंद बख्शी को नहीं मिली थी पिक्चर, तो उन्होंने मेरी पिक्चर ना बोल दी।
1: ओ,
0: फिर मैं आया तो भाई मजरू साहब के पास चलते, मजरू साहब के साथ मैंने ये फिल्म हिट बनाई है, मजरू साहब ने इसने दो नाम दिए थे मुझे, राजेश रोशन ने आनंद बख्शी और मजरू साहब,
1: बिल्कुल उन्होंने पहले भी
0: दोनों पिक्चरों के साथ काम किया, दोनों के साथ किया था। तो फिर उनके साथ उन्होंने ओके कर दी पिक्चर,
1: बड़े अच्छे गाने बने। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है
0: भाई? इसमें सारे गाने अच्छे हैं
1: जी।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की संध्याकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिचा।
1: और मैं हूं नीलिमा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी विशेष प्रस्तुति जिसमें होगी स्वास्थ्य जागरूकता और समाज से जुड़ी प्रेरणादायक बातें।
0: जब दिल स्वस्थ होता है तो जिंदगी की हर धड़कन उम्मीदों से भर जाती है।
1: और जब समाज सही जानकारी से जुड़ता है तब हर सोच एक नई दिशा और नई पहचान पाती है।
0: इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ आज का हमारा विषय है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे और इंफॉर्मेशन सोसाइटी टेली कम्युनिकेशन डे।
1: आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम साझा करेंगे कुछ रोचक तथ्य।
0: साथ ही AIR@90 के अंतर्गत श्रोताओं के साथ आकाशवाणी के यादगार अनुभव भी सुनेंगे और कार्यक्रम का खास आकर्षण होंगी प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर शैलजा सिन्हा जी से एक विशेष बातचीत।
1: तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आने वाले पलों में होगी जानकारी, प्रेरणा और अनुभवों की खूबसूरत प्रस्तुति। तब तक के लिए एंजॉय करते हैं ये ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना हद कर दी आपने उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में फिल्म हद कर दी आपने से ये ट्रैक।
1: दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन सोसाइटी यानी सूचना समाज।
0: आज का दौर ऐसा है ना ऋचा, जहाँ जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। पहले लोग कहते थे ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन अब जानकारी और तकनीक दोनों मिलकर समाज को बदल रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने नीलिमा। आज इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर और सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। हम कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
0: यही बदलाव रचा इन्फॉर्मेशन सोसाइटी कहलाता है, यानी एक ऐसा समाज जहां सूचना का निर्माण, संग्रह, आदान प्रदान और उपयोग सबसे महत्वपूर्ण हो।
1: इन्फॉर्मेशन सोसाइटी क्या है नीलिमा? क्या आप आसान भाषा में बता सकती हैं कि इन्फॉर्मेशन सोसाइटी आखिर है क्या?
0: हाँ बिल्कुल रिचा, इन्फॉर्मेशन सोसाइटी एक ऐसा समाज है जहां लोग जानकारी और तकनीक के माध्यम से काम करते हैं, सीखते हैं और एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं।
1: मतलब पहले कृषि समाज था, फिर औद्योगिक समाज आया और अब हम सूचना समाज में जी रहे हैं।
0: बिल्कुल, पहले लोग खेती पर निर्भर थे, फिर मशीनों और उद्योगों पर, लेकिन अब डेटा और सूचना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन गए हैं।
1: उदाहरण के लिए आज ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग और वर्क फ्रॉम होम सब इन्फॉर्मेशन सोसाइटी का हिस्सा है।
0: सही कहा, अब लोग घर बैठे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन बिजनेस भी चला सकते हैं।
1: बिल्कुल नीलिमा। और तो चलिए अब इसकी कुछ मुख्य विशेषता के बारे में बात करते हैं।
0: पहली विशेषता है दोस्तों तेज संचार, यानी फास्ट कम्युनिकेशन।
1: पहले चिट्ठी पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन आज व्हाट्सएप और ईमेल से सेकेंडों में संदेश पहुंच जाते हैं।
0: बिल्कुल, अब दूसरी विशेषता पर जाते हैं जो है कि ज्ञान की आसान उपलब्धता।
1: आज छात्र इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और नई चीज सीख सकते हैं।
0: बिल्कुल, अब बात करते हैं तीसरी विशेषता की जो कि है डिजिटल सेवाएं।
1: जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट, डिजिटल हेल्थ सेवाएं और ई गवर्नेंस।
0: जी, और चौथी विशेषता रही वैश्विक जुड़ाव।
1: यानी आज हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं।
0: तो दोस्तों, ये रही इन्फॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में जानकारी, ये रहा आपके लिए इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं एंटरटेनमेंट की ओर और सुनाते हैं आपको हमारा अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म जब तक है जान से श्रेया घोषाल मोहित चौहान की आवाज़ में ये गीत। दोस्तों, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना और व्यक्तिगत, सामुदायिक और स्वास्थ्य प्रणाली स्तरों पर कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है।
1: रिचा, हाइपरटेंशन विश्व स्तर पर असमय मृत्यु का सबसे बड़ा रोका जाने वाला कारण बना हुआ है। अनुमानतः वैश्विक स्तर पर 1.4 अरब लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। प्रभावी और किफायती उपचार उपलब्ध होने के बावजूद कई लोग अपनी इस स्थिति से अनभिज्ञ हैं और उच्च रक्तचाप से पीड़ित लगभग 1/4 लोग यानी 1/4 लोगों का ही रक्तचाप पर्याप्त रूप से नियंत्रित है। रिचा, आखिर ये इतना मायने क्यों रखता है?
0: वो इसलिए नीलिमा, क्योंकि उच्च रक्तचाप को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि आमतौर पर इसके कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन यह दिल का दौरा, स्ट्रोक, किडनी की बीमारी और असमय मृत्यु का खतरा काफी बढ़ा देता है।
1: इस खतरे के शीघ्र निदान, नियमित निगरानी और निरंतर उपचार से उच्च रक्तचाप से संबंधित अधिकांश जटिलताओं को रोका जा सकता है। रिचा, हर साल इस दिन का एक थीम होता है, इस साल की थीम क्या रखी गई है?
0: इस साल की थीम है कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन टुगेदर, चेक योर ब्लड प्रेशर रेगुलर, डिफेक्ट द साइलेंट किलर। इसके साथ कुछ जरूरी संदेश पर ध्यान दें, जैसे अपना रक्तचाप जांचें, नियमित रक्तचाप मापन रोकथाम और नियंत्रण का पहला कदम है। हर किसी को अपने रक्तचाप के मान की जानकारी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल रिचा, जानकारी होने से हाइपरटेंशन को रोका जा सकता है और नियंत्रित भी किया जा सकता है बहुत हद तक। जल्दी पता चलने से जानें बच सकती हैं।
0: वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है।
1: अपॉर्चुनिटीज जैसे रिचा?
0: जैसे हाइपरटेंशन के बारे में जन जागरूकता और समझ बढ़ाना,
1: कम्युनिटीज और हेल्थ सेंटर्स में रेगुलर हाइपरटेंशन माप को बढ़ावा दें,
0: और नीलिमा, हाइपरटेंशन का पता लगने, उपचार करने और दीर्घकालिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों का समर्थन करें।
1: जागरूकता बढ़ाना, ज्ञान साझा करना और निरंतर कार्रवाई का समर्थन करना हाइपरटेंशन से प्रभावित सभी लोगों के लिए स्थायी परिवर्तन ला सकता है।
0: दोस्तों, सतर्क रहें, सावधान रहें और एंजॉयमेंट को मत भूलें। आगे हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनवाते हैं एक और प्यारा सा ट्रैक।

0: और डाटा सिस्टम हमारे समुदायों और अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है।
1: विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस सरकारों, उद्योगों और समुदायों से दुनिया को सुचारू रूप से चलाने वाली डिजिटल जीवन रेखाओं को मजबूत करने का आह्वान करता है।
0: और नीलिमा, झटकों का सामना करने और तेजी से उबरने में सक्षम नेटवर्क और प्रणालियों को डिजाइन करने में हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़े यह सुनिश्चित करते हुए कि सबसे महत्वपूर्ण समय पर कोई भी व्यक्ति संपर्क से बाहर ना रह जाए।
1: हर साल 17 मई को मनाया जाने वाला विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस हमारे जीवन में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की बढ़ती भूमिका को उजागर करता है और यूएन की डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की स्थापना की याद भी दिलाता है।
0: विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और अन्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपाय से समाजों और
1: इकोनॉमिक कंडीशंस को मिलने वाली संभावनाओं के साथ साथ डिजिटल विभाजन को पाटने के तरीके के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।
0: और 17 मई को पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कनेक्शन पर हस्ताक्षर और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की वर्षगांठ है।
1: ऋचा, बात तो हम करते ही रहेंगे इस दिन के इतिहास के बारे में, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं अपने लिसनर्स को ये प्यारा सा ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना पल पल दिल के पास, अरिजीत सिंह की आवाज में, फ्रॉम द मूवी पल पल दिल के पास। अब बात करते हैं हम इतिहास के बारे में, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि दूर संचार दिवस के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, विश्व दूर संचार दिवस 1969 से प्रतिवर्ष 17 मई को मनाया जाता है, जो ITU की स्थापना और 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की याद दिलाता है। इसे 1973 में मलागा टोरेमोलिनोस में पूर्णाधिकार सम्मेलन द्वारा संकल्प 46 के रूप में स्थापित किया गया था।
1: बिल्कुल। और नवंबर 2005 में सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से 17 मई को विश्व सूचना समाज दिवस घोषित करने का आह्वान किया, ताकि सूचना संचार प्रौद्योगिकी के महत्व और सूचना समाज से संबंधित व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, जिन्हें विश्व सूचना समाज सम्मेलन ने उठाया था। महासभा ने मार्च 2006 में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि विश्व सूचना समाज दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाएगा।
0: रिचा, आपको पता है नवंबर 2006 में तुर्की के अंताल्या में आयोजित ITU पूर्णाधिकार सम्मेलन ने 17 मई को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस के रूप में दोनों आयोजनों को मनाने का निर्णय लिया। अद्यतन संकल्प 68 सदस्य देशों और क्षेत्र के सदस्यों को उपयुक्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन करके प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने के लिए आमंत्रित करता है, जिसका उद्देश्य है
1: परिषद द्वारा अपनाए गए विषय पर चिंतन और विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना, समाज के सभी भागीदारों के साथ विषय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना, विषय से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर हुई चर्चाओं को प्रतिबिंबित करने वाली एक रिपोर्ट तैयार करना, जिसे ITU और इसके अन्य सदस्यों को वापस भेजा जाएगा।
0: तो दोस्तों, ये रही जानकारी। अब आते हैं एंटरटेनमेंट पर और सुनाते हैं आपको हमारा अगला ट्रैक।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म कभी खुशी कभी गम से ये गाना अलका याग्निक सोनू निगम की आवाज में। दोस्तों, आज है संडे यानी फन डे एज वेल। आज के दिन सब काफी रिलैक्स मोड में रहते हैं, खुद को रिजनेट करते हैं। ऐसे में हमारी आकाशवाणी भी आपकी मदद करने में अग्रसर है। इसलिए आज के लिए हम अपने युवा के लिए लाए हैं डॉक्टर शैलजा से नीलिमा की बातचीत। तो आइए सुनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी डॉक्टर शैलजा।
1: नमस्ते सारजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र में और शुक्रिया भी।
2: धन्यवाद।
1: तो शैलजा जी, आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय।
2: मेरा नाम डॉक्टर शैलजा सिंह हुआ और ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस लाइक समझा कि मैं आके एक एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनूं। इट इज समथिंग वेरी फॉर्चुनेट दैट आप किसी के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं। तो मेरी जो चाइल्डहुड एजुकेशन जो मेरा हुआ, दैट वॉज फ्रॉम इट्स मॉडर्न स्कूल गोमिया, उसमें गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में था, झारखंड में। एंड आई वॉज मैरिड एट अ वेरी यंग एज एट 18। एंड मेरी जितनी भी शिक्षा हुई है, मेरी शादी के बाद मैंने किया है, माई ग्रेजुएशन, माई मास्टर्स, माई PhD, BEd, MA। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं एक ऐसे फैमिली में मेरी शादी हुई जहाँ एजुकेशन का बहुत वैल्यू था। तो एंड अगर कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, आई वुड से दैट इवन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन इज अ वेरी सपोर्टिव फैमिली। तो मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि मैं पढ़ू। नौकरी के लिए दे वर नॉट वेरी कीन, बट आई वॉज एडमेंट। देखिए, इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ इज फॉर द यूथ, यू नो, यू हैव सेवनी पोटेंशियल है। वी हैव टू रियलाइज that everyone has potential and वो potential depend करता है कि आप उसको कितना अपने determination से उसको चाहते हैं। अगर आप में determination है कुछ पाने का, तो of course सारा भगवान वैसा situation create कर देते हैं कि आपको मिले। But the thing is we are half-hearted, हम लोग half-heartedly सब कुछ पाना चाहते हैं, तो वो possible नहीं होता है। Life में you have to be dedicated, devoted, अपने पे build up lot of self-confidence। तो मैं हमेशा से चाहती थी मुझे जो कुछ भी मिला, मैं कभी उसको छोटा नहीं सकता। मैं हमेशा से जो मिला उसको अप्रिशिएट की, उस काम को अपना 100% देना चाहिए, और हमेशा दिया भी है मैंने। मुझे चाहिए आप कोई भी वर्क दे, मेरे लिए कोई काम बड़ा या छोटा नहीं है, मैं उसको 100% देती हूँ और सोचती हूँ कि और आगे इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। और जो भी चैलेंजेस मिलता है, आई डोंट सी देम एज चैलेंजेस, यू नो, आई जस्ट सी देम दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। तो उसको मैं करती हूँ। बड़ी कठिनाई आती है, बट ऑफकोर्स जब आप करते रहते हैं ना, तो आपको आइडियाज भी बहुत मिलता है और आप खुद अपना मार्ग चुन लेते हैं। अगर उस काम को सही तरीके से करने का, सरल तरीके से करने का, जब आप काम करेंगे तभी आपको ये आइडियाज भी आएंगे। तो यूथ को तो मैं यही कहूंगी कि अपने आप पे पहले विश्वास रखिए। यू नो, यू जस्ट डोंट हैव टू फ्लाई हाई। आप जो कर रहे हैं आप उसको लगन से कीजिए। आपका जो डिटर्मिनेशन है उससे आप मत हटिए। कभी किसी को डिमोरलाइज मत होइए या किसी काम को छोटा मत कहिए। या कोई प्रोजेक्ट मिले तो लगे कि ओ माय गॉड, अब ये कौन करेगा। नहीं, आपको सोचना चाहिए दैट यू आर द बेस्ट पर्सन टू डू इट।
1: बिल्कुल। यहाँ पर एक मैसेज जाता है कि बहुत लड़कियों को ऐसा लगता है कि शादी के बाद लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन शैलजा जी के केस में शादी के बाद ही इनकी रियल लाइफ।
2: बिकॉज देखिए, वो फैमिली भी रिकॉग्नाइज की कि इसको एजुकेशन से बहुत लगाव है, ये पढ़ना चाहती है। एंड यू नो, हम लोग का वो जमाना नहीं था जब हम लोग बहुत करियर ओरिएंटेड हुए। और जब मेरा जॉब भी हुआ तो पीपल थॉट कि ओ माय गॉड, तुम कैसे गांव में जाओगी, कैसे पढ़ाओगी। ऐसे नहीं, क्या होता है, सब लोग तो अपने जैसे हैं। तो मुझे कभी ये फीलिंग नहीं आया दैट ये काम छोटा है और मैं वहां कैसे जाऊंगी। एंड आई टेल यू, शुरू में लोगों को लगा कि मैंने कि मैं ये सही नहीं कर रही हूँ। एंड देयर वाज अ लॉट क्रिटिसिज्म, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट, मुझे कभी कोई काम बुरा नहीं लगता। तो आई थॉट कि बहुत खुशी की बात है कि गांव वो भी हमारे देश के, हमारे समाज का एक हिस्सा है। और जब मैं गई तो देखी कि सब अच्छे अच्छे लोग हैं। ये अपना परसेप्शन है कि ये अच्छा है और वो अच्छा नहीं है, सब हमारे जैसे हैं। आई फील कि ना मुझसे कोई बहुत ऊपर है या ना मुझसे कोई बहुत नीचे, जैसी मैं हूँ वैसा ही ये मेरा समाज है। मैंने वन स्टेप अप एंड वन स्टेप बैक, आपने कोई डिफरेंसेस नहीं लाता है। तो मुझे लगा कि सब मेरी जैसी तो है, सब आ रही है, पढ़ा रही है, बच्चे पढ़, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर सरकार कुछ कर रही है तो सबकी उसमें सहभागिता होनी चाहिए
1: जी। शारदा जी, बहुत बार ये ऐसा कहा गया है कि जैसे बच्चे कहते हैं कि अरे हम लोग तो बहुत स्ट्रगलिंग फैमिली से आते हैं, तो आपके केस में आप काफी रिच फैमिली से रही हैं, उस केस में आप क्या कहना चाहेंगी कि ऐसा

0: क्या होता है, क्योंकि अगर आप रिच फैमिली से आते हैं तो माइंड में एक स्टेबिलिटी ऑलरेडी रहती है कि कुछ नहीं भी करूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आई बिलोंग टू अ वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली. क्या आपके माइंड में इस तरह की कोई चीजें?
1: नहीं, मैं आपको बताऊं कि एन आइडल ब्रेन इज अ डेविल्स वर्कशॉप. तो आइडली बैठना तो कहीं भी अच्छा नहीं है. आप कितने भी अच्छे फैमिली से आए हैं, बट यू नो वो फैमिली आपकी पहचान बनती है. अभी एक समय होता है जब मेरा पहचान है, फिर कल को अगर मेरे बच्चों से मेरी पहचान हो तो वो भी बहुत गर्व की बात होती है, दैट मैंने अपने बच्चों को वहां तक पहुंचाया. ये तो एकदम मैंने, अगर आपके पेरेंट्स लोग, हर एक पेरेंट, बहुत अगर जो बच्चे को अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो, चाहे जो शहरी क्षेत्र, जो बहुत अच्छे फैमिली से जो आप सो कॉल्ड बोलते हैं, देखिए हर एक जगह स्ट्रगल है और हर एक जगह सैक्रिफाइस है. सबके पेरेंट अपने बच्चे को बेस्ट देते हैं. ये नहीं सोचना चाहिए कि जो रिच लोग हैं वही अपने बच्चे को बेस्ट देते हैं. जिनके पास नहीं है और वो भी अगर अपने बच्चे को पढ़ा दें तो उन बच्चों को भी अपने पेरेंट्स का सैक्रिफाइस समझना चाहिए. अपनी पहचान तो होनी चाहिए ना,
0: और माँ बाप भी तो ये चाहेंगे कि हाँ.
1: आपको क्या लगता है, जो एक मजदूर है, जो वो दो वक्त की रोटी के लिए कमाते, अगर वो अपने बच्चे को पढ़ा रहा, आज जो रिक्शा कुलर की बेटी लोग आईएएस कम्प्लीट कर रही है, तो दे आर लॉट सुपीरियर टू अस. मेरे पास सब कुछ होते हुए मैंने अगर कुछ नहीं किया, ये कितनी शर्म की बात है. आप किस घर से आते हैं, आप कुछ नहीं करते, तो इसमें कौन सी बहुत वाहवाही की बात है. आपको करना चाहिए, सबके ऊपर इस देश का, अपने परिवार का दायित्व है. मेरे लिए तो मेरी पहचान, मेरी आइडेंटिटी बहुत जरूरी है. पढ़ लिख के घर में बैठे रहना वेस्ट ऑफ टाइम है.
0: तो वैसे युवा जो स्ट्रगल कर रहे हैं और निगेटिविटी की तरफ बहुत जाते हैं कि आई वांट टू गिव अप, मुझसे नहीं हो रहा है, या पता आगे कैसा मेरा फ्यूचर है, इट्स ब्लीक और व्हाट, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते
1: हैं? एक्चुअली आई विल से दैट यू आर द बेस्ट जज. हर एक बच्चे को मैं बोलूंगी, यू आर द सन एंड एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड यू. यू हैव टू सी दैट एवरीथिंग इज इनसाइड यू. आपकी जितनी पोटेंशियल है आपके अंदर, आप उसको कितना टैप कर रहे हैं वो भी आप जान रहे हैं. अगर आप यूपीएससी निकालना चाह रहे हैं तो आपको मेहनत भी वैसा करना पड़ेगा. आप अगर यूपीएससी निकाल रहे हैं, इफ यू थिंक दैट वो खेल हंसते खेलते निकल जाएगा, तो वैसा बात नहीं है. जो टेंथ का बोर्ड देता है, जिसको पोजीशन चाहिए बिहार में रैंक लाना, तो वो उतना एफर्ट डालता है तब उसको मिलता है. और जो बच्चे हंसते खेलते पढ़ रहे हैं तो वो भी पास हो जाते हैं, वो भी निकल जाते हैं. तो दोनों का डिटर्मिनेशन और दोनों का एफर्ट के लेवल में कमी होती है. तो मैं, जो भी बच्चे ऐसे डिसहार्टेंड होते हैं, आई वुड जस्ट टेल देम दैट प्लीज डोंट बी डिसहार्टेंड. आपको बैठ के फिर अपने आप को आप एनालाइज कीजिए. सब इंसान को सोचना चाहिए कि ही और शी हैज टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ हरसेल्फ. डोंट कम्पीट विद अदर्स, कम्पीट विद योरसेल्फ. अपना बेस्ट वर्जन आप कैसे बन सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना. मेरे लिए तो कोई काम खराब नहीं. मैं बोलूं कि मैं जितना एक ग्रामीण क्षेत्र में, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाई, मैं मिडिल में, हायर सेकेंडरी में, नाउ आई एम इन यूनिवर्सिटी. अब बड़े बच्चों को पढ़ा रही हूँ पीजी लेवल में. तो मैं तो सोचती हूँ बहुत भाग्यशाली थी कि भगवान ने मुझे हर एक लेवल के बच्चों को पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी दिया.
0: नानी को देख के ऐसा लग रहा है कि एक चीज कम्प्लीटली एब्रेंट है, वो है आपकी निरंतरता. आप हमेशा चीज, इवन एट दिस एज आप प्रोफेसर बनी, जो बहुत ही टफ है इस एज तक पेशेंस रखना. तो आप अपनी प्रोफेसर बनने की जर्नी प्लीज शेयर करें.
1: देखिए ऐसा था कि जब मैं तो पीएचडी की हुई थी और जब आता था तब अप्लाई भी करती थी, बट ऐसा कभी कोई कोर्ट केस का मामला हो जाए, कभी पूरा कैंसिल हो जाए एप्लीकेशन जो हुआ, फिर जो 14 में हुआ 19 में जाके बाली हुई, उसमें नेट को वेटेज दिया गया. मैं अप्लाई हमेशा करती थी और लेकिन इस बार हुआ पीएचडी को वैल्यू दिया गया और मेरा एकेडमिक्स भी बहुत अच्छा था, तो इंटरव्यू फेस किया एंड हो गया. कभी भी अपने इससे आदमी को पीछे नहीं हटना चाहिए. आप जिस फील्ड में है उसमें लगे रहिए और अपने आप को सोचिए कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, कैसे अच्छा कर सकती हूँ. और कभी भी कोई काम को बहुत इजी लाइटली, और ये कोई छोटा काम मिल जाता तो लगता है कि आई विल नॉट डू दिस. नहीं, ओनली ग्रेट पीपल कैन डू स्मॉल थिंग्स.
0: शैलजा जी, सिंस अभी आप प्रोफेसर हैं एंड आफ्टर फ्यू इयर्स यू आर गोइंग टू गेट रिटायर्ड, इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं, इसके बाद आप क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगी वो बताइए.
1: मैं हमेशा से एजुकेशन से कनेक्टेड रहूंगी एंड समाज से रिलेटेड रहूंगी. आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज अ सोशल एक्टिविस्ट. समाज के लिए, शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ मैं हमेशा करते रहूंगी.
0: तो हमारी यूथ को आप एक ऑब्जेक्टिव बताना चाहें कि अगर वो कुछ अच्छा करें तो अच्छा करके वो किन विषयों पर ध्यान दे जिससे हमारे देश का विकास हो.
1: शुरू से कहते हैं कि हर एक इंसान को, हर एक यूथ को, यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. आप जो आज हैं, आप सोचिए कि कल में अगर हम लोग सब अच्छे होंगे ना, तो हमारा समाज खुद ही अच्छा हो जाएगा. रादर देन मेकिंग चेंजेस इन अदर्स.

0: में चेंज इन योरसेल्फ, अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए। सबको का दायित्व है, आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने फैमिली के प्रति होता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने समाज के प्रति है, आपका जिम्मेवारी अपने देश के प्रति भी है। सिर्फ परिवार तक सीमित मत रहिए, जिंदगी सिर्फ लेने का नाम नहीं है, देने का नाम है। यू नो, यू गिव लव, यू गिव काइंडनेस, यू गिव योर टैलेंट। तो हमेशा हमको जिस समाज में हमें सब कुछ दिया है, आपको समझना चाहिए कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को आपका भी जब चांस आए तो आप उसको भरपूर दें।
1: बिल्कुल, हमेशा ये सोचने के बजाय कि देश ने हमें क्या दिया है।
0: हाँ नहीं, बहुत दिया, आप आजाद हैं, ये देश ने आपको दिया। आपके पास एक संविधान है जिसमें फंडामेंटल राइट है, वो देश ने आपको दिया। आज इतने अच्छे इंस्टीट्यूट हैं पढ़ने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी, एवरीथिंग इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। बट जब हम स्ट्राइक पे जाते हैं, द फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट की चीज को ही हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे से बना है। तो ये सोचना चाहिए, लाइफ बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। एंड मैं तो यूथ से ये कहूंगी, डोंट कॉम्प्लिकेट। एंड अब ज्यादा फ्रस्ट्रेशन अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम लोग देखते हैं, बिकॉज चिल्ड्रन दूसरे को इमिटेट करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं। दे विल नॉट से दैट आई एम अ बिहारी। अगर वो बाहर जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को मत छुपाइए। आप वहाँ अपनी आइडेंटिटी बनाने नहीं गए, आप वहाँ पे किसी एक मकसद से आप बाहर गए हैं। आपके पेरेंट्स लोग आपको एक मकसद से वहाँ भेजे हैं, आप वहाँ अपना ड्रीम्स फुलफिल करने। जो बच्चा उलझ जाता है ना, उसी का फ्यूचर डूम्ड होता है। सो सब कुछ लाइफ में है, कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आप अगर सक्सेसफुल हैं तो वही लोग आपके पीछे आएंगे जो आपका लेग पुलिंग करना है।
1: इसका मतलब फिर भी क्रिटिसिज्म आप ही करते हैं, उनको पास में रखिए।
0: रखते हैं आप उसको ज्यादा वेटेज नहीं दें, बिकॉज टुडे दे आर क्रिटिसाइजिंग यू, टुमारो वंस यू अचीव समथिंग दे विल बी बिहाइंड यू। यू नो, बट लाइफ का जो क्रीम पीरियड होता है, हम लोग बच्चे जब खो देते हैं तब उसी में उनको फ्रस्ट्रेशन आता है। हम कहीं भी जा रहे हैं, हम कुछ भी करें, तो मेरा एक मिशन एंड विजन होना चाहिए और हम लोग को उसी के पीछे रहना चाहिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका शारदा जी, हमारे यूथ के लिए इतनी वैल्यूएबल बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच। द प्लेजर वाज माइन। आई एम ट्रूली ऑनर्ड। अगर मैं किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकूं, आई थिंक आई गिव मीनिंग टू माई लाइफ।
2: अरे हमार बाबू जी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज्ड नमक।
5: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सैलेजा और नीलिमा की बातचीत। तो दोस्तों आगे हम और भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और सुनवाते हैं आपको प्यारा सा ट्रैक।

0: वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ है डॉक्टर एमडी तबरेज खान मोतिहारी से। क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
1: मैम, ये हम अगर नींद अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं, जो एडिक्वेट होनी चाहिए आवर्स और गुड स्लीप होनी चाहिए, साइलेंट स्लीप अगर हम लोग नहीं करते हैं, तो इस पे इससे भी हार्ट पे प्रेशर हमेशा दबाव पड़ते रहता है और इससे जल्दी बहुत जल्दी हार्ट अटैक होने का चांसेस होता है। तो हमें चाहिए प्रॉपर तरीके से हम साइलेंट होकर सोएं और बिना किसी आवाज का अंधेरा करके रूम में प्रॉपर तरीके से बेड हो, ठंडा एटमोसफेयर हो रूम का, और जल्दी सोएं और सुबह उठें और एटलीस्ट 6 से 8 घंटा कम से कम हमें नींद लेनी चाहिए। अगर इससे कम लेते हैं तो हमेशा दबाव प्रेशर बना रहता है शरीर पे और जिसकी वजह से हार्ट पे अटैक होने का चांसेस होता है।
0: अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।
2: अंतराल से पहले आप सुन रहे थे जुग जुग जीवे फिल्म सद्दत से साचेत टंडन और परंपरा की आवाज में ये ट्रैक। दोस्तों, सिंस अभी आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे किए हैं, तो आइए जानते हैं श्रोताओं से आकाशवाणी के साथ उनका अनुभव।
3: सर, आकाशवाणी ने अपना 90 वर्ष का सफर पूरा कर लिया है 8 जून को, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
4: हाँ, मेरा नाम अश्विनी कुमार आलोक है और मैं एक लेखक हूँ, और इस आकाशवाणी से जो मेरा रिलेशन है वो जो है बीते 40 वर्षों का है, और 40 वर्षों से निरंतर आकाशवाणी के लगभग सारे के सारे जो है आर्टिस्ट और सारे के सारे आयोजन हमारे लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण हुए हैं, और आकाशवाणी हमारे लिए जो है बहुत ही आवश्यक है, उपयोगी है।
3: हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
4: संचार के बदलते हुए जो है माध्यमों के बीच में आकाशवाणी हमारे लिए जो है बहुत ही आवश्यक है। इसकी सूचनाएं बहुत ही विश्वसनीय होती हैं और इसके सारे के सारे जो आयोजन जितने सारे हैं वो सब अच्छे होते हैं, इसलिए आकाशवाणी से हर किसी का जो है लगाव होना चाहिए।
3: जी शुक्रिया सर, हमारे श्रोताओं को ये अच्छा संदेश देने के लिए
4: आपका आभार बहुत बहुत।
3: और आकाशवाणी ने 8 जून को अपना 90 वर्ष पूरा कर लिया है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे?
5: पहली बात, आकाशवाणी को सारी शुभकामनाएं, उन्होंने 90 वर्ष पूरा किया, मैं चाहता हूँ कि 100 वर्ष भी पूरा करें, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे श्रोतागण को, आकाशवाणी के सभी कार्यकर्ता को, जिन्होंने हमें समय समय पे अपना योगदान दिया, हमें गाना सुनाया, हर एक अनुभव शेयर किया हम लोगों को।
3: जी धन्यवाद सर, हमारे श्रोताओं को आप ये संदेश देने के लिए। सर, आपका नाम क्या है?
5: मेरा नाम सुशोभित झा है।
3: थैंक यू सो मच सर। सर, आपकी पेशा क्या है?
5: मैं प्रोफेशनली एक्टर हूँ, मुंबई में काम करता हूँ, अभी पटना आया।
3: मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि आप एक एक्टर होकर भी आप आकाशवाणी यानी हमारे रेडियो से अभी तक जुड़े हुए हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे रेडियो से आगे भी जुड़े रहें। सर
5: बिल्कुल, मैं जुड़ा रहूंगा। मुझे एक याद आ रहा है कि जब मैं दिल्ली में रहता था, मतलब बिलो 10 जब मेट्रो चल रहा था, तो हम लोग रेडियो पे ही गाना सुना करते थे। जब गाड़ी से गुजरते थे तो रेडियो पे ही, गाड़ी में रेडियो चला देते थे, गाना चलता, जहाँ कहीं नेटवर्क नहीं पकड़ता था वहाँ पर रेडियो का नेटवर्क पकड़ता था, और गाना सुनते सुनते रेडियो पे चलते चलते हम लोग अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच जाते थे।
3: और सर क्या बात है, तो मुझे लगता है कि आप रेडियो से काफी जुड़े हुए रहे हैं, तो धन्यवाद सर आपका ये प्यारा सा अनुभव शेयर करने के लिए।
5: थैंक यू सो मच। रेडियो सबसे मुझे अपने बाबा की याद आ गई, वो हमेशा सुना करते थे, जब खाना खा के सोने जाते तो वो रेडियो चलाते थे, वो सुना करते, मुझे अभी सच में अपने बाबा की याद आ रही। थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू सर।
6: नमस्कार सर।
7: नमस्कार
6: सर, आकाशवाणी ने 8 जून 2025 को 90 वर्ष पूरे किए हैं, और आगामी 10 वर्ष,
7: कांग्रेचुलेशन फॉर दैट,
6: और आगामी 10 वर्षों में 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो वैसे नाम क्या हुआ आपका?
7: मेरा नाम रोशन झा है।
6: अच्छा जी, और करते क्या हैं?
7: मैं अभी जनरल कॉम्पिटिशन का प्रिपरेशन करता हूँ।

0: आजकल के युवाओं को या फिर क्या संदेश देना चाहते हैं आकाशवाणी की तरफ से कि आगामी 10 वर्षों में वो 100 वर्ष पूरे करने वाला है?
1: आजकल के युवा के लिए एक संदेश बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हमारे पास समय जो है सो बहुत ही कम रहता है इन सब चीज़ों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों के पास जो है सो अब सब मोबाइल चलाने लगे हैं, तो रेडियो की जो रेलिवेंसी है वो थोड़ी सी यूज़ ज़रूर कम हुआ है, लेकिन रेलिवेंसी अभी भी बहुत है, क्योंकि जिस तरह के प्रोग्राम्स रेडियो पे आते हैं वे अभी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स
0: हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: पढ़ाई से ही रिलेटेड नहीं, वो मनोरंजन का भी साधन देखिए तो आप लोगों के पास जो प्रोग्राम आता था, गाने हो गए या फिर किसी भी पर्सनालिटी के लिए जो है सो स्पेशल प्रोग्राम रखा जाता था, जो फेमस पर्सनालिटीज होती थी तो उन लोगों का भी प्रोग्राम होता था, तो सीखने को बहुत कुछ मिलता था रेडियो से। हम लोगों को याद है कि हम लोग के टाइम में जब टीवी का उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था तो रेडियो पे कमेंट्रीज वगैरह बहुत होती थी, तो हम लोग उसको सुन के इतना आनंदित हो जाते थे, मज़ा आ जाता था। संजय बनर्जी और विनीत गर्ग और वो सब जो है सो उसको कमेंट्री में रहते थे पैनल में, और वो इतना अच्छा कमेंट्री करते थे कि हम लोग को लगता था कि हम लोग लाइव जो है सो उस चीज़ को देख रहे हैं, और उसका मज़ा बहुत ज़्यादा आता था। मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट्री ही हम लोग सुनते थे तो वो इतना मज़ा आता था कि लगता था कि हम लोग जो है सो लाइव देख रहे हैं, और वो चीज़ आज हम लोगों के पास टीवी है, मोबाइल है, सब कुछ है, और वो चीज़ लाइव देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं वो मस्ती और वो मज़ा नहीं आ पाता जो रेडियो पे हम लोग को सुन गया था।
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम क्रिकेट ही था, स्पेशली आप क्रिकेट के लिए रेडियो देखते थे?
1: हाँ, क्रिकेट मैं कमेंट्री खूब सुनता था क्योंकि मेरा वो फेवरेट स्पोर्ट्स है, तो इसीलिए। और गाना भी सुनता था हम लोग, उदित नारायण जी जो है ना,
0: बिल्कुल,
1: उनका बहुत सारा प्रोग्राम आता था रेडियो पे। नेपाल से जो है नेपाली FM चलता था हम लोग के तरफ, दरभंगा मधुबनी के तरफ, तो उस पे भी प्रोग्राम्स आते थे।
0: आप मधुबनी से हैं?
1: हाँ, मैं।
0: तब तो मधुबनी पेंटिंग भी वहाँ की बहुत ही मतलब फेमस है, जीआई टैग भी मिला।
1: अभी आकाशवाणी पे मुझे लगता है कि दरभंगा वो मधुबनी की मैथिली ठाकुर है।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: दोस्तों, समय अब हो चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलेंगे आपसे इसी संदेश के साथ कि जहाँ न पहुँचे पानी वहाँ पहुँचे वाणी। तब तक के लिए दीजिए अपने रेडियो दोस्त ऋचा और नीलिमा को इजाज़त। नमस्कार, नमस्कार।

युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवावाणी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। श्रोताओं, प्रस्तुत है मैथिली कार्यक्रम भारती।

श्रोता नमस्कार। आजुक भारतीमे पवन अपने लोकनिक स्वागत करैत अछि। श्रोता, आइ भारतीमे अपने लोकनि एकटा कथा सुना, टूटैत बान्ह। कथाकार अथि प्रेमलता मिश्र प्रेम, सङ्गहि नीलू मिश्रा गीत सुनौती। मुदा आउ पहिने हम लोकनि किछु गप कऽ लै छी। श्रोता, गप करब धरोहरके सम्बन्धमे, जे हमरा लोकनिके अपन पुरखासँ भेटल अछि। धरोहर माने ओ बहुमूल्य सम्पत्ति, वस्तु, परम्परा वा संस्कृति जे पूर्वजसँ भेटल अछि आ ओकरा सम्हारि कऽ राखब हमरा लोकनिक दायित्व थिक। श्रोता, धरोहरके कोना ओरिया कऽ राखी, ओहिसँ की लाभ अछि? ऐतिहासिक धरोहर सभ्यता आ इतिहासक प्रतीक थिक। ओहिसँ हमर सभक सांस्कृतिक पहचान होइत अछि। आबयवला पीढ़ीक लेल ई ज्ञान आ संस्कृति थिक। धरोहरके सम्हारि कऽ रखलासँ आर्थिक लाभ सेहो थिक। प्राचीन धरोहर पर्यटनके बढ़ावा दैत अछि, जे रोजगारक अवसर अनैत अछि आ रोजगार अर्थोपार्जनक साधन थिक। श्रोता, जरूरत अछि प्राचीन धरोहरके मान देब, ऐतिहासिक स्थलके कोनो तरहक नुकसान नहि पहुँचाबी आ ओकर साफ सफाइ राखी। अपन भाखा, परम्परा आ विलुप्त होइत संस्कृतिके जिया कऽ रखबाक प्रयास करी। प्राचीन कला, लोकनृत्य सन धरोहरके बचा कऽ रखबाक प्रयास करी आ अपन

मृणालोकन के ओकर शिक्षा दी, तखने धरोहर के रक्षा संभव थिक। स्वतः हिंदी में एकटा कहवी थिक, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक चींगे। एकर माने भेल, दुनिया में मनुख के हंसमुख माने हंसित रहक चाही, संगे स्वभाव से हो निक रखक चाही। हतोत्साहित मनुखक जीवन बोझ सन रहित अछि। ई गप जीवन के दर्शन थिक। जाहि व्यक्ति लग प्रसन्न रहबाक गुण छे, ओ स्वतः दोसर के अपना दिस खींच लैत अछि। एकर विपरीत जाहि व्यक्तिक मुंह लटकल रहै छै, ओतय कोनो दोसर व्यक्ति जाय नहि चाहै छथि। ई गप स्पष्ट करैत अछि जे प्रसन्न रहनिहार व्यक्ति लग सकारात्मक अभिव्यक्ति रहै छनि, जाहिसँ सब केओ जुड़ि अपना के आनंदित करय चाहै छथि। प्रसन्न रहै वाला व्यक्ति लग नीक स्वास्थ्यक खजाना रहै छनि। तऽ श्रोता, एहन की कयल जाय जे चित्त सदिखन आनंदित बनल रहै। जब किछु गप पर ध्यान देल जाय तऽ ई आजुक तनाव भरल समय में संभव थिक। जना असगर खालीपन के दूर करबाक लेल संगी बनाबी। नेनपन में सभक किछु ने किछु शौक रहै छै, मुदा बढ़ित जिम्मेवारी संग ओ लोक के दिमाग से निकल जाय छै। ओकरा पूरा करबाक लेल समय निकाली आ पूरा करी। पेंटिंग, संगीत, खेलकूद आ आन कोनो तरहक शौक के पूरा कऽ मन के आनंदित राखल जा सकै छै। नियमित रूपे घूमबाक लेल समय निकाली, व्यायाम करी। बढ़ैत वयसक संग व्यक्ति के मन में एकटा ठहराव आबि जाइ छनि। जीवन में सब तरहक उतार चढ़ाव आबिते रहै छै। वयस तऽ बस एकटा अंक थिक, संख्या थिक। मन के आनंदित राखी, अपन सोच के सकारात्मक राखी। खाली समय में बीतल समय के मन पारित, स्वयं के भेल गलती पर हंसी। एहन सब किछु प्रयास सँ मन के प्रसन्न राखल जा सकैत। आ जखन मन आनंदित रहत, मन मस्त रहत, तऽ जीवन जे छै से आराम सँ हंसी खुशी सँ बीतत। श्रोता, गप सब चलैत रहत। आओ हमरा लोकनि कार्यक्रम दिस बढ़ी। पहिने सुनै छी नीलू मिश्रा सँ ई विद्यापीठ गीत।

0: श्रोताई विद्यापति गीतक संग इछली नीलू मिश्रा कार्यक्रम में इनका सर खनहार गीत सुन के अच्छ कार्यक्रम में आगा बढ़े छी सुने छी एकटा कथा टूटेत मान कथाकार छथि प्रेमलता मिश्र प्रेम।
1: ड्राइंग रूम में तीन कप चाह राखि सिंटुआ चुपचाप चलि गेल। आन दिन का बात रहत तो किछु टोक टाक जरूर करते। घरक माहौल देख ओहो एकदम सकदम छल। ओकरा किछु बुझबा में नहीं आबि रहल छलैक जे एना सब गोटा माथ पर हाथ धक चुपचाप किया बैसल छथि। पीताम्बरक आँखिक नोर सुखा गेल छल। गाल पर एखनो धरि नोरक टघार साफ देखा पड़ल छल। हीरा दाई गुमसुम अपना भरि अपना के संयमित कयने छलीह। कामनी सँ नहीं रही भेलन। ओ कनेक जोर दैत बाजि उठली, अहाँ सब एतनीटा बात लेल एना भऽ कऽ अपन अपन माथ किया खराब कयने छी? बेटी वाला के की? बेटी वाला तऽ दस कथा पर जाइत अछि। विवाहक समस्या तऽ बेटा वाला के छनि। बेटा वाला किनका कहथिन जे हमर बेटा से अपन बेटी के कन्यादान करू? हीरा दाई के आब चुप नहीं रही भेलन। कहि उठली, हे बहिना, अहाँ नहीं बुझबैक। अहाँ के कन्यादानक अवसर नहीं भेटल तैं बेटी वालाक अपमानक स्वाद नहीं बुझलहुँ। पीताम्बर सन दुलारू पुत्र जे कहियो कतौ अपमानित नहीं भेल छला तनिका ई बेटी सभक कथा मादे सब बुझा गेलनि। कहू, गीता में कोन गुणक कमी छनि? बीएससी पास, घरक सब काज में दक्ष, एकटा अवगुण जे रंग कने कम छनि आ नौकरी नहीं करैत छथि। अरिपन पुरहर सब अबैत छनि, आब की चाही? विवाह से पहिने सब पिता अपन बेटी के नौकरी नहीं कर देबय चाहैत छथि। कतेक कथा एहू से टूटि गेल जे अहाँक बेटी नौकरी करैत छथि। कहियौन जे ओ नौकरी छोड़ि देती तऽ कथा भऽ जायत। हमर बेटा जतऽ रहता ततऽ नौकरी हेतनि तऽ नौकरी कऽ लेती। आहि रौ बा, एतऽ तऽ दूध माछ दुनू बाँतर। कामनी भरोस दैत फेर बुझयबाक साहस करैत बाजि उठली, देखू पीताम्बर, एखनुक हवा विवाहक मामला में विचित्र बहि रहल अछि। एकरा मादे किछु कहब कठिन। कतेक इंजीनियर बौआ रहल छथि, बेटी वाला सेहो आ बेटा वाला सेहो। बेटा कहैत छनि, हमरा नौकरी करैत हमरा इंजीनियर लड़की चाही, सेहो हमर जतऽ नौकरी पोस्टिंग होयत ताहि ठाम। एम्हर कन्यागत सब सेहो परेशान, हुनकर बेटी अरल छनि जे हम नौकरी जतऽ करैत छी ताहि ठाम करब, अपन नौकरी किएक छोड़ब? लेन देनक समस्या तऽ बादमे अबै छै, पहिने कन्या बरके राजी तऽ करू विवाहक हेतु। पहिलुका समय नहि छै बौआ जे माता पिता जतऽ चाहथि जनिकासँ चाहथि अपन कन्याक हाथ बरक हाथमे धरा, बेटीसँ निश्चिंत। कामनीक जेना कोनो बिसरल बात मोन पड़ि गेलनि। चहक उठली, हे बहिना, हमर एकटा सखी छथि महानगरमे रहै छथि, हुनक बेटा एकटा प्राइवेट कंपनीमे काज करै छथिन। सखी के नौकरी वाला नहीं, घरेलू लड़की चाहिए। वो अपने

आश्वस्त रहै छथि। पति सेहो एकटा नीक फर्ममे काज करै छथि। घर देखयवला क्यो नहि, सब नौकरिये करत तऽ घरके देखत। तखन तऽ घर सम्हारबाक हेतु चाकर चाही, आ चाकर केहन घर सम्हारत से बुझले अछि। ई बात सबके पसिन भऽ गेलनि। बात आगा बढ़ल, कथा तय भऽ गेल। महानगर से बर बरियाती आयल, हुनका लोकनिक खूब नीक स्वागत सत्कार भेल, इदाई विदाई सेहो नीक। सब प्रसन्न चित विदा भेला, दुनू परिवार प्रसन्न। कथा बुझल गमल छल तैं बेसी निश्चिंत। वस्तु जात ततेक देल गेल जे महानगरी के घर छोट पड़ि गेल। कतबो आमदनी हो, पैघ शहर में घर कतेकटा। बरक माता पिता समधियाना से आयल वस्तु जात सम्हारैत सम्हारैत परेशान छली। कतेक बेर कामनी के हुनक सखी उल्हनो देलथिन, एतेक पैघ पैघ सामान सब पठेबाक कोन काज छलनि, कतौ राखू कोना राखू। किछु दिन तऽ बड़ बढ़िया, मुदा गीता के सासुरक घर पसिन नहि। जतेक पैघ आ हवादार में रहैत छली से महानगर में संभव नहि। परिवारक सदस्य प्रसन्न छलथिन पुतहुक व्यवहार से। प्रसन्नता और दुगुना भ गेल जखन गीता एकटा पुत्री के जन्म देलनि। घर में पहिल लक्ष्मी के आगमनक स्वागत खूब जोरदार भेल। नाम राखल गेल विजया। विजया सौंसे घर के आनंदित क देलनि। सौंसे घर चहक उठल, दिनानुदिन बढ़त गेली। नाना दादा दुनू परिवारक दुलारू संतान। बेसी नाना परिवार से निकटता भ गेलनि, जना होइत छै छोट बच्चा के। एम्हर गीता अपन सासुर परिवार से कटैत जा रहल छली। घर में बैसल हुनका मोन नहीं लगैत छलनि। घरक बगल में एकटा रेणु नामक लड़की जे हुनका भौजी कहैत छल, हुनका से गीता के खूब दोस्ती भ गेल। ओकरा घर अबरजात बढ़ि गेल। दुनू संग संग बाजार हाट जाय लगली। सहे सुस्ते दुनू मिल एकटा पैघ रेडीमेड कपड़ाक दोकान खोलि लेलनि। बाहरी दुनिया से परिचय पात बढ़ल। एकटा सूरज नामक सप्लायर बरमहल कपड़ाक व्यवसाय करैत छल, तनिका से गीता के निकटता बढ़ि गेल। ओ बेस सम्पन्न परिवार से छल। हिनका लोकनिक निकटता तते बढ़ि गेल जे गीता अपन पति के स्नेह, सास ससुरक दुलार, पांच वर्षक विजया के अपन माता पिता के आश्रय में छोड़ि सूरजक घर के अपन घर बना लेलनि। सास अस्वस्थ तऽ रहिते छलथिन, आब ओ ओछाओन धऽ लेलखिन। ससुर गुम भ गेला। गीता के पति लोक समाज से मुँह चोरौने घुमैथ, ककरो से गप नहीं करैथ। ऑफिस से दू मासक छुट्टी पर चलि गेला। गीता के माता के कथे कोन। दुनू छोट नातिन विजया के पालन पोषण में मोन बहटारा लगला। दिन बीतैत गेल बेटी के बाढ़। किछुए दिन में विजया अपन नानाक देखरेख में पढ़ाई में अव्वल आबे लगली। आब पीताम्बरक नातिन विजया सेहो विवाहक योग्य भ गेली। गीता के नैहरक लोक प्रायः बिसरि गेल। गीता के दोसर पति से एक पुत्रक जन्म भेलनि, से कोनो अज्ञात सूत्र से ज्ञात भेल। गीता के सास कामनी के सखी जनिका घर भरोसक संग गीता सन पुतौ देने छली, ओछाओन धैलनि तऽ फेर उठली नहि। किछुए दिन में विदा भ गेली। सासुर नैहर दुनू ठाम अनहार। आब गीता के बेटी विजया शिक्षाक हेतु अपन शहर से दोसर शहर जयबाक जिद करय लागल। नाना ताई हेतु तैयार नहीं छलथिन। नाना कहब छलनि जे जतेक पढ़बाक हो अपने ही शहर में सबटा व्यवस्था छै। माय तऽ अहाँ के छोड़ि गेली हमरा लोकनिक भरोस पर, मुदा हम अहाँ के अपना से एको क्षण लेल अलग नहीं होबय देब। विजया अपन जिद पर अड़ल रहली। हुनक जिद हमर कॉलेजक मित्र उज्ज्वल हमरा संग रहत। हम आब बालिक छी, अपन जीवनक निर्णय स्वयं कऽ सकैत छी। नाना नानी के जाहि बातक डर छलनि से समस्या फेर सोझा आबि गेल। नानी कहलथिन जँ अहाँ के उज्ज्वल पसिन छथि तऽ हमरा लोकनि हुनका संग अहाँ के विवाह हेतु राजी छी। अहाँ विवाहक उपरांत संग रहू, मुदा विजया के जिद हम विवाह एखन नहि करब, मुदा संगे रहब, पढ़ाई करब, कोनो छोट छीन नौकरी ताकि अपन जीवन यापन करब। अहाँ सब पर कोनो भार नहीं रहत। सब एहि निर्णय पर गुम भ गेल। ककरो कोनो बाट नहीं सुझा रहल छल। सौंसे घर मातम पसरि गेल। बुझू तऽ एना कोना समाज चलत। दुनिया में भावना से बढ़ के कोनो नदी नहीं अछि। ओहि नदी में जब बाढ़ आबि गेल तऽ के कतऽ कोना बहि जायत तकर कोनो ठीक नहि। केहनो ऋषि मुनि केहनो विद्वान विचारक ओहि भावना रूपी नदी में बहि जाइत छथि तऽ हुनका कोनो बान्ह नहि रोकि सकैत अछि। फेर

0: वह ड्राइंग रूम पीताम्बरक आँखि मे नोर, सोझाँ छथि परम हितैषी कामिनी जे बेटी गीताक विवाह मे मदति कयने छलीह, मुदा आइ हुनको कोनो बाट नहि सुझैत छनि। आ हीरा दाई निरुत्तर भेल बैसल छथि। कामिनी साहस कऽ स्थिति के सम्हरबा मे लागल छथि। एना मे तऽ अराजकता पसरि जायत। स्त्री के अपन भावना पर नियंत्रण राखऽ पड़त, भावनाक बांध के टूटबा सँ बचाबऽ पड़त।
1: टूटैत बांध, ई छल कथा जे अखन अपने लोकनि सुनब। कथाकार छलीह प्रेमलता मिश्र प्रेम, हिनका मोनसँ धन्यवाद यनि। आ श्रोता आउ हमरा लोकनि फेरसँ नीलू मिश्रासँ सुनी ई अगिला गीत।

0: श्रोताई छल भगवती गीत जे सुना रहा छल नीलू मिश्रा। आओ हम लोकन कार्यक्रम में आगा बढ़ी, मुदा पहिने सुनी एक गुड संदेश।
1: वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ है डॉक्टर एम डी तबरेज खान मोतिहारी से।
2: मेरा नाम मोहम्मद तबरेज खान हुआ। मैं जनरल फिजिशियन मोतिहारी बिहार में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले 3 सालों से मोतिहारी में प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, और इससे पहले हम वेस्ट बंगाल में एज ए फिजिशियन कंसल्टेंट हम काम कर रहे थे।
1: मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
2: देखिए मैम, ये जो हाइपरटेंशन होता है सिर्फ हार्ट अटैक को ही ट्रिगर नहीं करता है। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं किए लंबे टाइम तक, अगर

0: क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: देखिए मैम, ये जो हाइपरटेंशन होता है सिर्फ हार्ट अटैक को ही ट्रिगर नहीं करता है। अगर हम इसको कंट्रोल नहीं किए लंबे टाइम तक, अगर अच्छे से इसको कंट्रोल नहीं किए, मेजर नहीं किए और प्रॉपर तरीके से डॉक्टर से इंस्ट्रक्शन अगर हम नहीं लिए, मेडिसिन नहीं लिए, तो ये ट्रिगर कर सकता है हार्ट को भी।
0: अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।
2: श्रोता, अपने लोकनी के एक बेर फिर से भारतीय कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोता, पर्यावरण संरक्षण आजुक जरूरत है। पर्यावरण संरक्षण के मतलब है प्राकृतिक संसाधन वायु जल भूमि आ गाछ वृक्षक सुरक्षा आ ओकर सुरक्षित उपयोग, जाहिसँ आबय वाला पीढ़ी सेहो ओहिसँ लाभ उठा सकय। पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण, वनक कटाई आ जलवायु परिवर्तन सन समस्या के कम करबाक लेल जरूरी अछि। श्रोता, की उपाय कयल जाय जाहिसँ पर्यावरण के संरक्षण भऽ सकय? पहिल उपाय थिक, बेसी से बेसी गाछ वृक्ष लगाबी आ ओकर देखभाल कऽ कऽ ओकरा नमहर करी। गाछ वृक्ष हवा के शुद्ध करैत अछि आ बढ़ैत तापमान के रोकैत अछि। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग कम से कम करी, ऐसा भूमि प्रदूषण रुकत। पानिक बर्बादी के रोकी आ वर्षा जलक संचयन माने रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक के उपयोग में आनी। ई भूमिगत जलक स्रोत के खत्म हो से रोकत आ खेती करबाक लेल जरूरी जल उपलब्ध कराओत। ऊर्जाक बर्बादी रोकला से पर्यावरण संरक्षण हैत। एहि लेल सौर ऊर्जा के सहारा ली आ LED बल्ब उपयोग में आनी। कचराक प्रबंधन से सेहो पर्यावरण संरक्षण हैत। पर्यावरण संरक्षण मानव स्वास्थ्य आ जैव विविधता के बनौने रखबाक लेल जरूरी अछि। प्रकृतिक प्रति जागरूकता हमर सभक दायित्व। श्रोताओ, हमरा लोकनि फेर सँ नीलू मिश्रा सँ सुनी ई झूमर।

श्रोता, ई छली नीलू मिश्रा सुना रहल छली झूमर। आ श्रोता, आजुक भारती में बस एतबे, अगला कार्यक्रम में फिर भेंट घाट हेतै, गपशप हेतै। ताधरि पवन के विदा दियौ, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे मैथिली कार्यक्रम भारती। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब आपको अवगत करा दें हमारे केंद्र से आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों से।

अब से कुछ देर बाद शाम के 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। संस्कृत में समाचार प्रसारित होंगे शाम के 6:20 पर। प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम के 7:30 पर और जिले की हलचल शाम के 7:47 पर प्रसारित होगा।

नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण होगा रात के 9:30 पर, और रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण होगा रात के 10:00। प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में आशिकी फिल्म के इस गीत को। संगीत नदीम श्रवण का है और गीतकार हैं रानी मलिक।

0: वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ है डॉक्टर एमडी तबरेज खान मोतिहारी से। क्या बीपी डायरेक्टली लिंक्ड है हार्ट डिजीज से?
1: हाँ, ये जो बीपी है डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि लिंक है, क्योंकि कंटिन्यूअस अगर बीपी ब्लड प्रेशर हाई रहता है हमारे शरीर में तो कंटिन्यूअस हमारे हार्ट को जो कोरोनरी आर्टरी होती है जो ब्लड को हार्ट को सप्लाई करती है वो कंटिन्यूअस उस पर फोर्स पड़ते हैं, और बीपी हाई होने के कारण से हार्ट फेल होने का भी चांसेस होता है डायरेक्टली। और एक वर्ड होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जो कि बीपी हमेशा कंटिन्यूअस बढ़ा रहता है उससे डायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाता है हार्ट को, तो हार्ट का साइज भी इसमें बढ़ जाता है। तो कह सकते हैं ये बीपी अगर हमेशा अगर बढ़ा रहा तो डायरेक्टली हार्ट का रिलेशन है।
0: अ पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया।
2: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। अगला गाना सुनिए पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज में, मोहरा फिल्म से। संगीत विजू शाह का है और गीतकार है इंदीवर।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश हीरो नंबर वन फिल्म से उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज़ में, गीत के बोल समीर ने लिखे हैं।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब संस्कृत में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायां गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्तवान्। सः स्वीडन देशस्य प्रधानमंत्रिणा उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह व्यापार हरित परिवर्तन एआई तथा रक्षा क्षेत्रेषु सहकारस्य समीक्षायै वार्तालापं करिष्यति। भारत नीदरलैंड्स देशौ द्वैपाक्षिक संबंधान सामरिक सहभागित्वेन वर्धितवन्तौ। प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहयोगं सुदृढं कर्तुं 17 संधिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। होर्मुज जलसंधौ वाणिज्यिक नौकायानस्य उपरि आक्रमणानि अस्वीकार्यानि इति भारतेन निन्दितम्। कांगो युगांडा देशयोः इबोला प्रकोपः अंतर्राष्ट्रीय चिन्तायाः सार्वजनिक स्वास्थ्यापत्कालेति विश्व स्वास्थ्य संघटनेन घोषितम्। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य श्रेयांसी वाल्लिसेट्टी इत्येषा बावोजी चाइना मास्टर्स स्पर्धायां महिला एकल क्रीडायां रजत पदकं विजितवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्तवान्। नीदरलैंड्स देशस्य स्वीयां यात्रां समाप्य असौ अद्य सायंकाले स्वस्य पंच देशानां यात्रायाः तृतीये चरणे स्वीडन देशं सम्प्राप्तवान्। स्वीडन देशस्य स्वीयायां द्विदिवसीय यात्रायां श्रीमोदी अद्य स्वीडिश प्रधानमंत्रिणा उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा द्विपक्षीय संबंधानां सर्वेषां पक्षाणां समीक्षापि विधास्यति। उभयोः पक्षयोः व्यापारः हरित परिवर्तनं कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप्स सुदृढ आपूर्ति श्रृंखलाः रक्षा अंतरिक्षं जलवायु परिवर्तनं जनसंबंधाश्च इत्यादिषु सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् अन्वेष्टुम् अपेक्षा अस्ति। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ उर्सुला फॉन डेर लेयन इत्यनया यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षया सह मिलित्वा यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलनम् अपि सम्बोधयिष्यतः यत् प्रमुखं अखिल यूरोपीय व्यापार मञ्चम् अस्ति। स्वस्य द्विदिवसीयायाः नीदरलैंड्स देशस्य यात्रायां प्रधानमंत्री श्रीमोदी स्वस्य डच समकक्षीयेण सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। उभौ देशौ रक्षा महत्वपूर्ण खनिज तथा अन्येषु प्रमुख क्षेत्रेषु सहयोगं सुदृढीकर्तुं 17 संधिपत्राणि हस्ताक्षरितवन्तौ। उभौ नेतारौ पश्चिम एशिया देशस्य स्थितेः तथा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति व्यापारस्य उपरि तस्य प्रभावस्य विषये गभीरां चिन्तां प्रकटितवन्तौ। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते सन्देशे श्रीमोदी उक्तवान् यत् नीदरलैंड्स देशस्य तस्य यात्रा द्विपक्षीय संबंधान नूतने स्तरे नेष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई मासस्य 31 दिनांके आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे देश विदेशस्थ जनैः सह विचार विनिमयं करिष्यति।

0: 19 इव वैश्विक महामारी आपत्कालस्य श्रेण्यां नागच्छति तथा च अन्ताराष्ट्रिय सीमाः न निरोधव्याः इति परामर्शः अपि प्रदत्तः। स्वास्थ्य अधिकारिभिः उक्तं यत् अयं प्रकोपः इबोला विषाणोः दुर्लभेन बंडिबुग्यो प्रभेदेन सम्बद्धः अस्ति, यस्य कृते अधुना किमपि स्वीकृतम् उपचारः उपवा उपलब्धः नास्ति। इबोला रोगः शरीरद्रवसंस्पर्शेन प्रसारं करोति तथा च गभीरां प्रायः प्राणघातिनीं च व्याधिं जनयितुं शक्नोति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य श्रेयांसी वाल्लिसेट्टी इत्येषा बाबूजी चाइना मास्टर्स स्पर्धायां महिला एकल क्रीडायां रजत पदकं विजितवती। अद्य नेपाल देशीया पर्वतारोही कामी रीता शेरपा इत्येषा द्वात्रिंशद्वारं माउंट एवरेस्ट शिखरम आरुह्य ऐतिहासं विरचितवती। 65 वर्षीया एषा पर्वतारोही विश्वस्य उच्चतम शिखरं सर्वाधिकवारं आरोहणस्य स्वकीयमेव कीर्तिमानं पुनः आरेखितवती। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी।

0: उदय भाई को नमस्कार।
1: नमस्ते शोभा बहन।
0: और उदय भाई, बताइए, हाल चाल तो हम लोग ले लेते हैं जब हम लोग सामने एक दूसरे से मिल रहे हैं,
1: निश्चित निश्चित।
0: लेकिन
1: और हालचाल तो हो कहीं के चाहे
0: हाँ
1: पता चले लगे कि कैसन बा।
0: कैसन, हाँ
1: जब नजदीक में आदमी होला तो बात करके, फिर इशारा से, फिर अटकी से, मटकी से, जैसे भी होला संवाद
0: सम
1: संप्रेषणीयता हो जाला।
0: एकदम।
1: लेकिन यदि कोई दूर होखे तो वह दशा में जे संवाद संप्रेषण बा वो थोड़ा कठिन भी हो
0: कठिन
1: जाला,
0: होता
1: भी
0: है।
1: जटिल भी हो जाला। और पहले के जमाना में जब हमनी के यहाँ यह तरह के कोनो साधन ना रहे
0: नहीं
1: कि
0: रहता
1: हमनी का
0: था।
1: संवाद कैसे भेजी, तो लोग जे बा चिड़ै चुरू बहुत बार ऐसा
0: हाँ
1: होके कि अंगना में कौआ बोले
0: बोले, हाँ
1: तो
0: तो
1: लोग के मन के अंदर
0: कि कोई आने
1: तो
0: वाला
1: हाँ शुभता के साथ
0: शुभ, हाँ
1: ओकरा बाद बहुत एक दौर आयल कि कबूतर के माजर और बहुत
0: कबूतर
1: सारा गीत भी बनल कि जा
0: बिल्कुल जे,
1: संदेश
0: देखिए
1: पहुंचा।
0: आप बोल रहे हैं, मुझे वो गीत याद आ रहा है कि कबूतर
1: लेकिन
0: जा जा जी
1: हाँ,
0: जी
1: लेकिन
0: सही।
1: दौर बदलल, समय बदलल। और ओकरा साथे हमनी का दूरसंचार के क्षेत्र में तरह
0: बहुत
1: तरह से वैज्ञानिक
0: सही
1: प्रयास
0: बात,
1: करके
0: परिवर्तन हुआ, एक कह
1: और
0: सकते हैं कि
1: बदलाव
0: बदलाव
1: कईल।
0: एकदम। और आज के समय में बात करें तो इसके बिना तो लगता है कि हम लोग अधूरे ही हो गए हैं। और विज्ञान और ये जो समय है, विज्ञान और तकनीक का युग है, और संचार के इतने सारे साधन हो गए हैं कि हम लोग चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, एकदम लगता है कि वो एकदम हम लोग
1: निश्चित
0: आसपास
1: निश्चित निश्चित।
0: है, बातचीत हो रहा है, वीडियो कॉलिंग से हो रहा है। पहले तो चलिए ये चिड़िया और इनके थ्रू हम लोग उनके जरिए भेजते थे, उसके बाद चिट्ठी आई, चिट्ठी के जरिए, तो उसमें होता था कि मतलब एक चिट्ठी गई तो महीनों के बाद समाचार मिलता था।
1: निश्चित।
0: और
1: और
0: अब
1: ओकरा
0: तो
1: बाद एक
0: हाँ
1: दौर हुआ और भी याद कर
0: हाँ
1: कि जब टेलीग्राम
0: टेलीग्राम,
1: हाँ जे पैसा लगे आ
0: हाँ
1: आदमी जे बा वो छोट से छोट संदेश लिखे
0: छोट
1: खातिर कि पैसवा बांट जाओ, तो बड़ा ही छोट सब संदेश जे बा वो आदमी सोच के और
0: हाँ
1: तब लिखे ओकरा से फिर ये होके, और जहाँ पोस्ट के ऑफिस रहे
0: हाँ
1: वहाँ से जे बा उस जाए
0: और वहां
1: संदेश,
0: जाके,
1: और तब
0: हाँ
1: जा करके जे संबंधित व्यक्ति के
0: व्यक्ति को
1: संवाद भेजे के रहे ओकरा लगे पहुँचावल जाओ।
0: सही
1: वजह
0: बात
1: से फिर यात्रा हमनी के शुरू भेल, तब तो हमनी का बहुत आगे निस लैंडलाइन फोन के दुनिया
0: एकदम
1: में लैंडलाइन से हमनी का आगे

0: यही सब मोबाइल की दुनिया।
1: मोबाइल। हाँ
0: और फिर भी बीच में पेजर वेजर और का
1: वो
0: का
1: तो बहुत सारे हैं।
0: और आज तो अब कहे के नहीं के संवाद संप्रेषण के बहुत
1: बहुत
0: सारा।
1: तकनीक आ गए हैं, बहुत
0: हाँ
1: आसान हो गया है। और
0: हाँ
1: आज हम लोग, श्रोता भी समझ रहे होंगे कि हम लोग इतनी सारी बातें दूर संचार के बारे में क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि आज 17 मई है और आज विश्व दूर संचार दिवस है। और इस बदलाव के, इस परिवर्तन से लोग कितने एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं। अब जो ये दूरी है ना, दूरी नहीं रह गई है। और इसका मुख्य उद्देश्य भी है मनाने का कि दूर संचार तकनीक के महत्व को भी लोग इससे अवगत हो, और जो डिजिटल संचार के माध्यम से समाज और देश का विकास हो, इस पे इसको भी बढ़ावा देना है।
0: निश्चित। और यह दिवस की याद करत सुमा बहन 17 मई 1865 ईस्वी के विश्व स्तर पर दूर संचार संघ के स्थापना भेल रहे।
1: सही बात है।
0: और दूर संचार के क्षेत्र में जो क्रांति आई रेडियो के माध्यम से, जौन जौना विधा से हमनी
1: हम
0: आज
1: लोग
0: बैठ के बात
1: बात
0: कर
1: कर रहे
0: रहल
1: हैं,
0: बनी,
1: सही बात है।
0: दूरदर्शन के माध्यम से जहाँ से हमनी का सीधा तस्वीर देख करके बोलत भी लोगों के देख सकीले, और ओकरा से आ करके इतना बड़ा सेमीकंडक्टर और सब कुछ ये सब जेबा हमनी के सतत प्रयास और शोध और मानवीय जे हमनी के सोच के विकसित स्वरूप
1: विकसित
0: के
1: हुआ,
0: रूप में
1: बिल्कुल।
0: सामने
1: और हम लोग, दूर संचार का महत्व तो हमारे जीवन में है ही उदय भाई,
0: आए।
1: लेकिन अगर आप याद कीजिए COVID-19 का, उस समय तो दूर संचार ने मानव जीवन को में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, क्योंकि सब कुछ घर बैठे ही हो रहा था। चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो काम काज हो,
0: निश्चित
1: लोग
0: निश्चित।
1: घर में बैठ के ही इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई, बैंकिंग, बिजनेस, सब कुछ
0: सब कुछ
1: उसी से था।
0: निश्चित।
1: तो उस समय का ये जो दूर संचार का जो महत्व है, हम लोग को ज्यादा पता चला कि ऐसे जब कोई समय आता है, महामारी का समय आता है, जब लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में ये सब जो संचार के साधन है, इससे काफी काम करने में काफी आसानी हो गई।
0: हमनी के माध्यम जौन माध्यम
1: बिल्कुल।
0: जे हमनी के आकाशवाणी
1: हाँ
0: पर
1: हाँ
0: कई
1: बिल्कुल।
0: बार जे बार ग्रस्त समय आइल बा,
1: हाँ
0: और जब बहुत संपर्कता भंग हो जाला
1: भंग।
0: जे
1: हाँ
0: सड़क संपर्कता या दूसर तरह के, तो उस समय में वायु संपर्कता के माध्यम से कोनो
1: सही बात।
0: संवेद के संवाद और फिर कोनो तरह के यदि जे मैसेज बा वो तरह के पहुँचावे में
1: सही बात,
0: एक सबसे उपयोगी माध्यम के रूप में सामने
1: बिल्कुल।
0: आवे।
1: और हम लोग के लिए कितनी, मतलब हम लोग खुशनसीब है कि हम लोग आकाशवाणी के माध्यम से हमारी आवाज़ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, और लोग हमें देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ के जरिए अगर वो कभी मिलते हैं तो उन लोग को लगता है कि अच्छे, यही वो व्यक्ति है, यही वो लोग हैं
0: हाँ
1: जिनकी
0: निश्चित
1: आवाज़
0: निश्चित
1: हम लोग
0: निश्चित
1: सुनते हैं।
0: निश्चित
1: तो
0: निश्चित।
1: कितना आसान, और इससे जुड़ने का एक बहुत अच्छा ये साधन हो गया कि जो जिन्हें हम पहचानते भी नहीं हैं,
0: वो
1: इसके माध्यम से हम लोग जुड़
0: उनसे
1: सकते
0: वहां
1: हैं।
0: सभी से जुड़
1: हाँ,
0: जाइए।
1: और अगर हम लोग बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में इतना, मतलब अत्यधिक प्रगति हुई है, इतना विकास हुआ है, और मोबाइल सेवाओं का इतना विस्तार हुआ है। 4G से हम लोग 5G में आ गए हैं, और इस तकनीक ने संचार को एक बहुत ही तेजी और बहुत ही प्रभावी बनाया है। और साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया अभियान की भी शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से लोगों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने का प्रयास भी किया गया।
0: सोमाबेन
1: हाँ
0: एक चीज होला हर
1: हाँ
0: विज्ञान हर शोध
1: हाँ
0: कि ओकरा के उपयोगी बनावे
1: उपयोगी।
0: खातिर
1: हाँ
0: ओकर सकारात्मक पक्ष के हमेशा
1: सही
0: ध्यान में
1: बात है,
0: रखे के चाहिए।
1: एकदम
0: कुछ चीज जब शोध होला तो ओकर नकारात्मक पक्ष भी सामने आवे।
1: सामने आता है।
0: आज इंटरनेट की दुनिया के इस्तेमाल बहुत ही सकारात्मक ढंग से हो भी रहल बा, ज्ञान विस्तार या फिर दूसर चीज में जैसे रुआ चर्चा कहनी है, लेकिन कहीं कहीं ओकर जे
1: दुर्भाग्य
0: बा ओकर दुरुपयोग भी हो
1: दुरुपयोग भी
0: रहल
1: हो रहा
0: बा,
1: है।
0: और दुरुपयोग यह रूप में कि ओकरा से समाज प्रभावित हो रहल बा।
1: बिल्कुल।
0: तो अब आशा हमनी के करे के चाहिए और ई जिम्मेवारी भी बा समाज के भी कि इस तरह के दुरुपयोग से दूर होके
1: दुर्भाग्य,
0: कोनो
1: बिल्कुल
0: चीज के जे बा लाभ बा ओकरा बारे में सोचे। यदि
1: सोचना
0: यदि
1: चाहिए।
0: ओकर गलत पक्ष के उपयोग करे तो निश्चित रूप से ओकर
1: सही बात है।
0: नकारात्मक असर सामने आई। आ कोनो शोध कोनो विज्ञान के कोनो प्रगति वो अब एक साध्य बा,
1: एकदम
0: तो रुआ ओकरा के एक साध्य के रूप में इस्तेमाल
1: लेना
0: करें
1: चाहिए,
0: ताकि ओकरा से रुआ के और बेहतर जीवन
1: सही बात है।
0: जिए के।
1: अच्छी
0: हाँ
1: चीजों को लेना चाहिए,
0: हाँ
1: और दूर संचार दिवस मनाने का भी उद्देश्य
0: उद्देश्य भी
1: यही
0: यही
1: है, और यही
0: उद्देश्य भी।
1: संदेश देता है कि जो भी तकनीक है उसका सही उपयोग करें, समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण
0: निश्चित
1: भूमिका
0: निश्चित।
1: हम निभा सकते हैं। तो चलिए, इसी बात पर हम लोग

0: वाह, बटगमनी ये गीत हम लोग सुन रहे थे मीना मिश्रा जी से, और उदय भाई आगे भी इनसे और गीत सुनेंगे।
1: सुनल जी जरूर सुनल जी, अभी समय बाकी हमनी का एगो भेंट वार्ता सुनल जाओ। अस्थि कैंसर कारण एवं बचाओ, भेंट वार्ताकार बने डॉक्टर ओम प्रकाश कुंवर, और वहां से भेंट कर रहे बने श्री आशीष कुमार रंजन। तो सुने
0: सुनते।
1: के ई भेंट वार्ता।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर, अस्थि कैंसर यानी बोन कैंसर पर।

0: हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश कुंवर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी पटना में।
1: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अस्थि कैंसर क्या होता है, बोन कैंसर क्या होता है?
1: बोन कैंसर आज के समय में बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों में मिलता है,
0: जी
1: तो हर एक तरह से बोन कैंसर को समझना चाहिए कि एक्चुअली है क्या। जहाँ भी कहीं हड्डी में ह्यूज मात्रा में स्वेलिंग होता है
0: जी
1: या बहुत सीवियर पेन होते रहता है, तो वहाँ एक संभावना बनती है, तो वहाँ ट्यूमर का डेवलपमेंट होता है। सारे ट्यूमर कैंसर नहीं होते हैं, कुछ नॉन कैंसरस होते हैं, कुछ ट्यूमर कैंसर होते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में मुख्यतः तीन प्योर बोन कैंसर होता है। एक को बोलते हैं ओस्टियोसारकोमा, दूसरे को बोलते हैं कॉन्ड्रोसारकोमा और तीसरे को इविंग सारकोमा। ये प्योर कैंसर है बोन का। इसके अलावा कुछ कैंसर ऐसा होता है कि किसी दूसरे अंग में होता है, वो वहाँ से मेटास्टेसिस होकर बोन में सेटल करता है, तो उसको बोन कैंसर नहीं बोलते हैं। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये बात रहता है, लेकिन प्योर बोन कैंसर तीन ही होता है।
0: जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हड्डियों में होने वाला हर एक ट्यूमर कैंसर है?
1: नहीं, करीब करीब 80% ट्यूमर बिनाइन होता है
0: जी
1: और 20% 25% ही बोन कैंसर के रूप में होता है।
0: क्या यह रोग शरीर के किसी भी हड्डी में हो सकता है क्या?
1: हाँ, हो सकता है किसी भी बोन में,
0: जी
1: लेकिन मुख्यतः जो हम लोग देखते हैं बोन कैंसर, वो कुल्हे की हड्डी, पेल्विस, थाई बोन और नी, लेग, कभी कभी शोल्डर गर्डल में भी होता है।
0: डॉक्टर साहब, अब हम बात करेंगे कि इस बीमारी के मुख्य कारण क्या हैं? इस बीमारी का मुख्य कारण क्या-क्या हो सकता है?
1: देखिए, इस बीमारी का मुख्य कारण बहुत कुछ अनसर्टेन रहता है। अब कुछ में जेनेटिक फैक्टर भी होता है, कुछ में कोई प्रीवियस इंजरी हुआ उसके चलते टिश्यू का मल्टीप्लिकेशन और एग्रीगेशन ज़्यादा हो गया बोन टिश्यू का, तो उसके चलते होता है, या बहुत जगह अननोन इटियोलॉजी होता है जो स्वतः होता है। और कुछ केसेज में देखा गया है कि जो कैंसर थेरेपी जिनका चल रहा है, रेडिएशन है या केमोथेरेपी है, उन लोगों के केस में बोन ट्यूमर मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
0: जी किसी परिवार में अगर ये बोन कैंसर है, क्या उसके परिवार में किसी और को हो सकता है? क्या अनुवांशिक है ये?
1: ऐसा बहुत क्लियर ट्रेंड नहीं है, लेकिन कुछ ट्यूमर में ऐसा देखा गया है, 1-2% केस में हेरिडिटरी इफेक्ट होता है।
0: क्या कहीं चोट लगा हो पहले या पुराना रेडिएशन का इफेक्ट है वहाँ पे, वहाँ बोन कैंसर हो
1: हाँ,
0: सकता
1: वहाँ पर
0: है?
1: संभावना रहती है।
0: अगर किसी को किसी अन्य प्रकार का कैंसर है तो क्या वह बोन कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है?
1: नहीं, जैसे मान लीजिए कि लंग का कैंसर है और उसका मेटास्टेसिस बोन में हुआ, तो उसको बोन कैंसर नहीं बोलते हैं, उसको लंग कैंसर ही बोल रहे हैं। बोन कैंसर प्योर तीन ही होता है, जिसका हम लोग चर्चा किए,
0: जी
1: ओस्टियोसारकोमा, कॉन्ड्रोसारकोमा एंड इविंग सारकोमा।
0: अब हम बात करेंगे इसके लक्षण क्या हैं। डॉक्टर साहब, इस बीमारी को पहचानने के लिए कौन कौन से लक्षण हैं इसके?
1: दो तीन ही इंपॉर्टेंट लक्षण होता है इसका। एक तो जिस साइट में ट्यूमर डेवलप कर रहा है वहाँ पेन हो सकता है, कभी कभी पेन नहीं भी हो सकता है अर्ली स्टेज में। दूसरा है कि वहाँ पर टिश्यू का साइज जो है, मतलब उस सरफेस में एक एलिवेशन जिसको बोलते हैं कि ग्रोथ हो रहा है, तो एलिवेशन जो हो रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसमें ब्रोन कैंसर की संभावना बढ़ जाती है,
0: कहीं हड्डी में दर्द हो तो हम मान के चले कि यह बोन कैंसर भी हो सकता है।
1: हो सकता है।
0: जी
1: कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रोथ नहीं हो रहा है, अब बोन के इनसाइड में टिश्यू ग्रो कर रहा है, बाहर नहीं आ रहा है और कैंसर भी होता है, तो अर्ली स्टेज में पता चलता नहीं है कि बाहर कुछ हमको फील हो रहा है, लेकिन हो सकता है।
0: हड्डी बार बार किसी का टूट रहा है या वहाँ सूजन हो गया, बोन कैंसर का ये लक्षण है क्या?
1: नहीं, सूजन होने पर यदि पेनफुल है तो मान मान सकते हैं कि कैंसर का डेवलपमेंट हो सकता है। फ्रैक्चर होना हमेशा कैंसर का कारण नहीं हो सकता है, लेकिन कैंसर भी एक कारण है उसमें, उसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं, कोई डिजीज के चलते होता है।
0: जो लक्षण आपने बताया, क्या ये अचानक से बढ़ता है या धीरे धीरे उसमें?
1: ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, और बहुत तेज़ी से नहीं होता है, लेकिन जब ग्रोथ बड़ा होने लगता है तो थोड़ा इफेक्ट उसका
0: दर्द
1: अर्ली
0: बढ़
1: होता
0: जाता
1: है।
0: है जी। अगर हम इसके जांच और निदान की बात करें, अगर कोई इन लक्षणों को अनुभव करता है तो उसे कौन कौन सी जांचें करानी चाहिए?
1: सबसे पहले तो उनको किसी अस्थि रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, और वो देखकर बेसिक जांच, तो उसका एक्सरे होता है और एक्स

0: में यदि डाउट बनता है तो उस एरिया का सीटी स्कैन इम्पॉर्टेंट है, सीटी स्कैन से कंफर्म हो जाता है। कभी कभी होता है कि बोन का जो कैंसर है सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू में भी इन्फिल्ट्रेट करता है, तो ऐसे कंडीशन में एमआरआई भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभी इसके लिए बोन स्कैन भी किया जाता है।
1: क्या इसमें बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ती है?
0: हाँ, यदि हमको कंफर्म हो जाता है कि कैंसर है तो वहाँ पर एक फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी होता है जिसको FNSC बोलते हैं, या वहाँ से डायरेक्ट ओपन करके टिश्यू निकाल कर जिसको ओपन बायोप्सी बोलते हैं भी कर सकते हैं।
1: अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बीमारी का इलाज क्या है और इससे कैसे हम बच सकते हैं?
0: इस बीमारी का मुख्यतः तीन इलाज है। यदि अर्ली स्टेज में है और कुछ पर्टिकुलर जोन में ही उसका इन्फिल्ट्रेशन है तो सर्जरी करके उस एरिया को रिमूव करके उसको बचाया जा सकता है, और यदि वो एडवांस हो गया है दूसरे टिश्यू में ज़्यादा फैल गया है तो वहाँ पर दो ऑप्शन बचता है, एक रेडिएशन का और दूसरा केमोथेरेपी का। यही तीन इसका मुख्य इलाज होता है।
1: बोन कैंसर का इलाज पूरी तरीके से संभव है।
0: संभव है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है डिपेंड करता है किस स्टेज में हम उसको डिटेक्ट करते हैं और किस प्रोसीजर से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। यदि सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ तो ज़्यादा चांसेस है कि आदमी डिजीज फ्री हो जाता है, लेकिन रेडिएशन और केमोथेरेपी उसके बल्क को रिड्यूस करता है, पूर्णतः ख़त्म नहीं करता है।
1: अगर एक बार बोन कैंसर हो गया और उसको ठीक भी हो गया, तो क्या यह दोबारा हो सकता है?
0: यदि हम सर्जरी करके उस एरिया को कट करके हटा देते हैं, कहीं उसका एक सेल भी माइग्रेटेड है दूसरे जोन में, तो फिर वो रिवाइव कर सकता है।
1: अस्थि कैंसर के कितने तरीके के इलाज उपलब्ध हैं?
0: एक सर्जरी है
1: जी
0: जिसमें काट के हटा देते हैं उस पार्ट को, दूसरा है रेडिएशन रेडियोथेरेपी, और तीसरा जो ड्रग के द्वारा किया जाता है जिसको केमोथेरेपी बोलते हैं हम लोग। यही तीन उपाय है।
1: इलाज के दौरान मरीज को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: इलाज के दौरान एक तो पेशेंट को जितना जल्दी हो संपर्क में जाना चाहिए इस विशेषज्ञ के, और जो भी डायरेक्शन मिलता है उसको पूर्णतः फॉलो करना चाहिए।
1: क्या कोई परहेज, खान पान या जीवन शैली में बदलाव की जरूरत है?
0: इसका असर तो थोड़ा बहुत पड़ता है लेकिन कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दिखता है उसमें। हाँ, बोन कैंसर के केस में
1: अब हम बचाव की बात करें तो डॉक्टर साहब, हम अस्थि कैंसर यानी बोन कैंसर से कैसे बच सकते हैं?
0: देखिए, बचने का तो सबसे इम्पोर्टेंट उपाय है कि जैसे ही कुछ सिम्टम मिलता है उसका अर्ली डिटेक्शन करना चाहिए, और खाने पीने रहन सहन से कुछ असर तो उसमें नहीं पड़ता है। हाँ, कहीं इंजरी कुछ हो जाती है या कुछ हम दूसरे डिजीज में बहुत सारे मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसके लिए अर्ली डिटेक्शन करना चाहिए, कुछ भी समस्या दिखता है तो।
1: जी, बोन कैंसर से बचाव में हड्डियों की नियमित जांच, कैल्शियम और विटामिन डी की भूमिका क्या है सर?
0: बोन कैंसर में विटामिन डी की भूमिका बहुत नहीं है, लेकिन किसी दूसरे कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा हो तो उसमें कैल्शियम विटामिन डी कम हो जाता है, तो उसका भी एक प्रॉपर निगरानी करके उसको सप्लीमेंट करना चाहिए उसको।
1: क्या योग, व्यायाम या धूप लेना उपयोगी हो सकता है?
0: धूप लेना तो उपयोगी होगा, विटामिन डी का सिंथेसिस होगा, और एक्सरसाइज तो हर कंडीशन के लिए अच्छा होता है तो इसमें भी कुछ फायदा रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, आपसे बात करके हमारे श्रोताओं को बहुत लाभ हुआ। अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: कि जब भी शरीर में कहीं कुछ भी समस्या खड़ा होता है तो जल्दी उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, और अपना सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ किसी के कहने से कोई उपाय नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम आगे बढ़ता नहीं है, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है, उसका प्रॉपर निदान हो जाता है।
1: आज का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हमसे जुड़े रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी पटना। नमस्कार और स्वस्थ रहें।
2: क्षमा बहन, अभी हमने का भेंट वार्ता सुनत रही है अस्थि कैंसर कारण एवं
1: एवं बचाओ।
2: बचाव। भेंट वार्ता कर रही है डॉक्टर ओम प्रकाश कुंवर, और वहाँ से बातचीत करते हैं श्री आशीष कुमार रंजन। धन्यवाद दिया हो यहाँ के।
3: दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और देख रहे हैं उदय भाई, ये कैंसर, पहले हम लोग जब कैंसर की बात करते थे तो कहते हैं, मतलब बहुत कम लोगों को ये बीमारी के बारे में, या ये बीमारी होती थी, मतलब अगर बात कर 1,000 में एक दो आदमी। अब तो ये ऐसा हो गया है कि घर घर में ये कैंसर देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पहले और अभी में कितना बदलाव आया है, आपके रहन सहन, खान पान, जीवन में बदलाव, यही जो परिवर्तन है ना, कहीं कहीं हमारे जो जीवन शैली में हम लोग परिवर्तन करते हैं, कुछ नया सोच

0: हैं ऐसे और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस तरह की मतलब जो बीमारी है
1: सोमा
0: उसका
1: बहन,
0: रूप ले लेता है।
1: एक बड़ा कारण बा जे हमने के कैंसर होला का। कैंसर तो वैसे 100 तरह के होला, डॉक्टर साहब अभी चर्चा एक अस्थि कैंसर के
0: अस्थि के
1: करत
0: बारे में।
1: रहे, लेकिन कैंसर में होला ही कि जे हमने के सामान्य कोशिका रहला, हमने के शरीर में कोशिका रहला, हमने के जानतनी की कोशिका रहला, वो कोशिका कैंसर कोशिका में बदल
0: बदल
1: जाए।
0: जाता।

0: हमने के शरीर में कोशिका रहला, हमने के जानतनी की कोशिका रहला, वो कोशिका कैंसर कोशिका में बदल
1: बदल
0: जाला।
1: जाता है।
0: और जब वो कैंसर कोशिका में बदल जाला तो कई गुना तेजी से वो फैले लगेला, और वो कोशिका जो कैंसरस कोशिका होला ओकर फैलाव बढ़ जाला, आ वो जे बा धीरे धीरे रुए के एक तरह से ग्रस लेवेला, और फिर जे बा हमनी का ओकर दुखद परिणाम जे हमनी का रोज झेल
1: झेल
0: रहला।
1: रहे, सही बात है। कई तरह के जो कैंसर्स हैं।
0: अब सबसे जे हमनी के यहाँ होला का कि बहुत प्रारंभिक अवस्था में कैंसर के पता ना चले।
1: नहीं चलता है।
0: हमनी के यहाँ जे जांच होला, जांच में हमनी के बहुत पता ना चले, फिर भी बहुत सारा कैंसर जैसे स्तन कैंसर महिला लोग के हो जाला, फेफड़े का कैंसर, प्रोस्टेट, कोलेरेक्टल भी होला, रक्त कैंसर होला, तो होला का कि एकर कुछ प्रारंभिक लक्षण होला। यदि थोड़ा सा एकरा पर ध्यान दिया,
1: ध्यान दे।
0: जैसे बिना काम कैले यदि थकान महसूस होता, कोशिका टूटे लगी तो कोशिका टूटी तो अनावश्यक थकान बुझाई, बुखार रात में होखे लगेला, क्योंकि शरीर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता
1: क्षमता
0: बा
1: है।
0: वो
1: हाँ।
0: ओकरा से सामना करेला, वो तो कोशिका से लड़े के प्रयास करेला, और हमनी का सामान्य जानते विज्ञान के रूप में कि वो लड़ के जेबा और अपना के स्वस्थ रखे
1: स्वस्थ
0: के शरीर
1: रहना,
0: रखे के प्रयास करेला,
1: बिल्कुल
0: भूख की कमी हो
1: कमी
0: जाला,
1: से। हाँ।
0: रात में सुतला पर पसीना आवे लगे, तो ई सब जे कुछ लक्षण बा,
1: लक्षण।
0: लगातार शरीर में दर्द रहे, त्वचा में विशेष रूप से तिल के आकार, और जैसे बहुत लोग के छोट छोट तिल होला,
1: हाँ
0: लेकिन बहुत लोग के तिल जे बा तिलवे बड़ा होखे लगे, कोई
1: हाँ
0: मशा हुई मशा
1: मसा।
0: अनावश्यक
1: हाँ
0: रूप से
1: हाँ
0: बढ़े
1: हाँ
0: लगे, तो एकरा में कोई असामान्य बदलाव
1: हाँ
0: ई ध्यान देवे के
1: ध्यान देना।
0: आवश्यक।
1: हाँ
0: तो
1: जब भी, हाँ
0: ई
1: जब भी
0: सब चीज
1: लगे
0: पर
1: कि
0: यदि
1: हाँ।
0: ध्यान दी, कभी कभी उल्टी होखे लगेला, तो ये सब यदि ध्यान दी तो
1: सही बात
0: निश्चित
1: है
0: रूप
1: कि
0: से
1: जब
0: हमने का
1: भी कुछ
0: आरंभिक
1: भी, हाँ
0: अवस्था
1: हाँ
0: में
1: कुछ भी असामान्य लगे आपको अपने शरीर में, तो तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लेनी
0: तो यदि एकरा
1: चाहिए।
0: के करी तो
1: हाँ
0: हमने का बच सकीले,
1: बिल्कुल,
0: जरूरत
1: तो
0: बा कि थोड़ा ध्यान दी,
1: ध्यान
0: जैसे
1: देना,
0: ही बदलाव
1: बिल्कुल।
0: होके ध्यान दे, और हमने का ध्यान दे गीत
1: गीत पर तो
0: पर।
1: कलाकार है मीना मिश्रा, इनसे सुनते हैं ये झूमर।

0: तो उदय भाई हम लोग सुन रहे थे मीना मिश्रा से ये झूमर गीत, और इसी के साथ हमारा चौपाल कार्यक्रम का समय अब संपन्न होता है, और अब समय हो चला है खेती गृहस्थी कार्यक्रम का। तो इसमें हम लोग बात करेंगे खेती संबंधी,
1: हाँ
0: लेकिन
1: हाँ
0: उससे पहले अभी समय है प्रायोजित कार्यक्रम का, तो सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम रोजगार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस।
3: रोजगार रोजगार कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आप सबों के घर आंगन में आ गया। जी हाँ, ये कार्यक्रम हम लेकर अब आ रहे हैं गोड़ौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जी हाँ, जो एसएस प्रोफेशनल के ही कैंपस में है। हमने कहा गोड़ौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से ये रोजगार कार्यक्रम आप सबों के लिए राजेश लेकर आ रहा है। साथियों, कोविड के बाद हेल्थ सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे युवक और युवती, युवा जो हैं, जब हम युवा बोलते हैं तो लड़के और लड़की दोनों उसमें शामिल होते हैं, किसी कारण से शहरों में पढ़ाई करने नहीं जा पाते हैं। इसीलिए डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी ने एसएस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट वाले कैंपस में, और हमने कहा था कि ढेर सारे इंस्टीट्यूशन खुलने जा रहे हैं, और उसी में गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम की पढ़ाई इसी सत्र में शुरू होने जा रही है। जी हाँ, वैसे युवा साथियों के लिए जो बाहर नहीं जा सकते हैं किसी भी कारण से, जिसमें आर्थिक कारण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, अगर ऐसा है तो आप हमें फोन करके पता कर लें, 9162413233, ये हमारा एक नंबर है, और दूसरा नंबर है 9155558888। और ये गोरौल स्टेशन से आगे बढ़ने पर पीएससी के तरफ संस्कार नगर है, वहीं ये संस्थान है, कैंपस है। एसएस प्रोफेशनल में बीबीए और बीसीए की पढ़ाई, और गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बीएससी, हाँ, नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम की पढ़ाई शुरू हो रही है। और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, लगातार सुनते रहे हैं, और भी कार्यक्रमों में आते हैं, और स्टूडेंट के साथ लंबा अनुभव है काम करने का, एक गार्जियन की तरह से श्री राज ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं, और अब ये श्री राज ग्रुप का ही गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि गोरौल में, हाँ, स्थापित किया गया है, यहाँ पर इसी सत्र से बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जीएनएम की पढ़ाई शुरू होने जा रही है आपके गोरौल में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारा ये कार्यक्रम रोजगार जो है उसके अंतर्गत।
4: स्वागत है हमारे श्रोतागण का भी, और आपको जानकर के बेहद खुशी होगी कि इसी सत्र से एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई शुरू होने जा रही है, और यह पढ़ाई जो सबसे उम्दा पढ़ाई होती है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मांग वाली शिक्षा है नर्सिंग की शिक्षा। और
3: जी
4: यह बहुत लोगों को के बाद फोन आता था जब हम लोग बीसीए और बीबीए
3: बीबीए,
4: के बारे में चर्चा
3: हाँ,
4: करते थे, तो इनके बारे में आता था
3: एस एस प्रोफेशनल
4: कि
3: इंस्टीट्यूट।
4: यहाँ, हाँ, कि यहाँ क्यों नहीं, यहाँ सर बीएससी और जीएनएम और एएनएम का पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है, सिर्फ श्री राज में होता है, यहाँ क्यों नहीं होता है। तो मैंने उनके लिए यह गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना किया, और इस साल से हमारे तीनों फैकल्टीज में एडमिशन शुरू हो गए हैं, और एडमिशन के साथ साथ लगभग 1-1.5 महीने के बाद से हम लोग पढ़ाई शुरू कर लेंगे।
3: हम लोगों ने बताया था पहले रोजगार कार्यक्रम हमने शुरू किया था।

0: SS प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से, जिसमें कंप्यूटर के दो कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, और उसी कैंपस, हम बार बार कहते थे कि कैंपस बहुत बड़ा है और यहाँ अभी बहुत सारी चीजें खुलनी बाकी है, जिसमें से अगली कड़ी में गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आ गया, जहाँ की जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि BSc नर्सिंग, GNM और ANM की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू हो रही है। अगर जो आपको अधिक जानकारी चाहिए तो डॉक्टर NP प्रियदर्शी, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, और इसके लिए उसका नंबर है 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888। ये वही भरोसा है श्री राज ग्रुप का, जिसका पैरामेडिकल आप पारा सुनते हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप लोगों ने जैसे ही BC और BBA के लिए बातें की तो आप लोगों ने फोन कॉल्स इसके लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए शुरू किया, और ये देखिए कार्यक्रम में हम जानकारियां दे रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ बैठ के, कि उधर जो इलाका है, गोरौल है, भगवानपुर है, मुजफ्फरपुर है, छपरा है, सिवान है, बिदुपुर है, राजापाकर है, हाजीपुर है, अगर वो बच्चे या लड़कियां जो नहीं आ सकते हैं पटना में, तो उनके लिए घर पर ही सारी सुविधाएं दी जा रही है। ढेर सारी बातें अभी और जानेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, एक बार इन कोर्सेज के बारे में बता दीजिए, और किसमें एलिजिबल है लड़के और किसमें एलिजिबल है लड़कियां।
1: हाँ, देखिए मैं सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ कि ANM का कोर्स जो होता है वो इंटर पास लड़कियां कर सकती है, इंटर पास किसी भी स्ट्रीम से इंटर पास होना चाहिए, और वो 2 साल का कोर्स होता है। इसमें भी नर्स की पूरी पढ़ाई होती है, मतलब एनाटॉमी फिजियोलॉजी की सारी बात बताई जाती है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बताया जाता है, उसके साथ साथ उसके बायोकेमिस्ट्री बताए जाते हैं, फिजियोलॉजी बताए जाते हैं, साइकोलॉजी बताई जाती है, बायोकेमिस्ट्री की सभी विधाएं बताई जाती है। इस तरह से ANM की पढ़ाई भी एक पूरी नर्स की पढ़ाई है, और ये जो देखते होंगे कि एक्जिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इसको कहते हैं, जो पहले 1.5 साल का होता था, अब 2 साल का हो रहा है। अब ये जो होता है बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा होती है, पहले BNRC के द्वारा होता था, अब बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा होता है। तो गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के, गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ANM की पढ़ाई शुरू हो गई, उसके साथ साथ GNM है। तो GNM होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये उससे कुछ ऊपर दर्जे का हुआ, और ये 3 साल की पढ़ाई होती है। इसमें ANM और GNM से में विशेषता क्या है कि ANM तो एक तो 3 साल की पढ़ाई हो गई, और उसके साथ साथ इसमें कुछ एडवांस पढ़ाया जाता है उससे, कि ताकि ये सब जो ANM को उससे ऊपर की पढ़ाई कर लेने के बाद जैसे और ज्यादा सघन चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, ICU की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ ANM को नहीं रखा जाता, वहाँ GNM को रखा जाता है, क्योंकि वो ज्यादा जानकार होते हैं और उसमें ज्यादा दक्ष होते हैं, तो उसकी पढ़ाई थोड़ा उससे लेवल जो होता है वो ऊपर होता है। और उसके साथ साथ, उसके साथ साथ अब जो होता है तीसरे 3 साल के बाद एक और पढ़ाई होती है जिसको कहते हैं BSc नर्सिंग। तो BSc नर्सिंग जो होता है ये नर्सिंग का ही क्षेत्र है, और ये बैचलर का कोर्स होता है, तो ये 4 साल का कोर्स होता है। इसको भी बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ही संचालित करती है, और इस तरह से ये उससे भी एडवांस होता है, ANM से एडवांस GNM हुआ, GNM से एडवांस BSc नर्सिंग हुआ। तो इस तरह से ये तीनों कोर्स जो है वो नर्सिंग क्षेत्र में अपना अपना योगदान देती है। एक सबसे नीचे का जो हुआ डिप्लोमा कोर्स जो हुआ वो हुआ ANM का कोर्स, उसके बाद डिप्लोमा से थोड़ा ऊपर इसको मेजनाइन कोर्स कहते हैं, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है, GNM का कोर्स होता है, और बैचलर का कोर्स, डिग्री कोर्स जिसको कहते हैं, वो होता है BSc नर्सिंग का कोर्स।
0: ये पूरी जानकारी दी, एक बात बता दें आपको, हाँ यहाँ जो गोरौल में,
1: अच्छा BSc नर्सिंग में एक चीज बातें, GNM और BSc नर्सिंग के बाद एक चीज बात बताना भूल गया,
0: बोलिए,
1: कि उसमें क्या है कि GNM कोर्स और BSc नर्सिंग कोर्स, इसमें लड़का लड़की दोनों कर सकता है।
0: क्या बात है।
1: अच्छा, GNM में जो है किसी भी स्ट्रीम से कर सकता है, कोई भी स्ट्रीम से इंटर पास किया हो, लड़का कॉमर्स भी हो, आर्ट्स भी हो, साइंस भी हो, कोई भी स्ट्रीम से हो तो वो कर सकता है। और उसके साथ साथ BSc के जहाँ तक बात होती है तो उसमें सिर्फ ISC पास ही लड़के कर सकते हैं, लड़का लड़की कर सकती है, ISC बायोलॉजी से होना चाहिए, और उसके बाद ही ये 4 साल का कोर्स कर सकता है। तो इसमें बाध्यता है कि ISC

0: बाकी में कोई बाध्यता नहीं है।
1: बाकी में कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी तीनों में है। हेल्थ सेक्टर के बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स हैं, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम। अगर इसके अलावा आपको कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो डॉक्टर साहब का नंबर है 9162413233 और दूसरा नंबर है 9155558888। और ये संस्थान जो है गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जैसा कि हमने बताया था एसएस प्रोफेशनल के समय कि गोरौल स्टेशन से लेकर के आप जब पीएससी की तरफ आते हैं तो बीच में कौन सा नगर पड़ता है, संस्कार नगर में ये संस्थान है। बहुत बड़ा कैंपस है, आप देख सकते हैं जाके। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, प्रैक्टिकल की जरूरत होती है तो बच्चों को ये बताइए कि क्या व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ प्रैक्टिकल के लिए।
0: देखिए वहाँ अपना अस्पताल भी संचालित होने वाली है, कुछ ही दिन में उसका उद्घाटन हो जाएगा
1: जी।
0: और उसके साथ साथ जो श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग में के जो कैंपस अपना है उसका एडवांस के लिए तो यहाँ है ही, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो वहाँ पर है गोरौल है
1: जी, जी।
0: उसमें भी हमने व्यवस्था कराई है कि उसका जब 2 साल हो जाएगा दूसरे साल में उसको वहाँ पर प्रैक्टिकल की सुविधा दी जाएगी।
1: मतलब कुल मिलाकर समझिए ये सवाल हमने आपकी तरफ से डॉक्टर साहब से किया था, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। और बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि गोरौल में तुरंत हॉस्पिटल की स्थापना हो रही है, उद्घाटन होगा। इसके अलावा श्रीराज ट्रस्ट हॉस्पिटल है इस संस्थान का, क्योंकि ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो श्रीराज ग्रुप है। आप पटना भी आ सकते हैं और पीएससी में भी आपको मौका मिलेगा। आपके घर के अंदर, आपके घर में, मोहल्ले में कहिए कि ये संस्थान आ गया। क्या सोचकर आपको लगता है कि सफल होगा वहाँ, के बच्चों के लिए कुछ फायदेमंद होगा?
0: 100% इसलिए जरूर कि सबसे मांग वाली, देखिए बच्चों को आजकल अभी भी बिहार इतना एडवांस हुआ, उसके साथ साथ भी अभी भी कुछ ऐसे हैं कि जो होम सिकनेस रहता है कि पास के में ही पढ़ ले तो अच्छा रहे, हमारी बच्ची उतना दूर नहीं जाएगी, नजदीक में ही होगा तो हम पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो आसपास के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बहुत दूर आना बहुत लोगों को संभव नहीं होता है, तो उनको लिए वो है। बाकी जो रेसिडेंशियल रहना चाहते हैं वो तो कहीं से भी आ सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन कुछ लोग डे स्कॉलर जो होता है
1: हाँ।
0: वो चाहता है कि हमारा घर का भी काम हो जाए, पढ़ भी ले और इस तरह से उच्च शिक्षा भी पा ले, तो उसके लिए यह सबसे उपयुक्त जगह है गोरौल। बहुत ही अच्छा जगह में हम लोग ने इसकी व्यवस्था किया है, तो संभवतः की मुझे पूरी आशा है कि वहाँ के लोगों के लिए यह एक माइलस्टोन होगा।
1: ऐसे भी बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम हॉट केक है। हाँ, हेल्थ के सेक्टर में हमेशा सीट की कमी रहती है। 2 सवाल पूछना चाहते हैं आज के एपिसोड में डॉक्टर साहब। इतनी बड़ी बात आपने यहाँ की है कि गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना और इसी सत्र से ये 3 कोर्सेज आ रहे हैं। अगर जो लड़के मुजफ्फरपुर से या छपरा, सीतलपुर या इस इलाके से आएंगे तो उनके लिए इनिशियली बच्चे या बच्चियों के लिए रहने की व्यवस्था है या
0: हॉस्टल है? अपना हॉस्टल है,
1: अपना
0: दोनों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल है
1: हाँ।
0: दोनों को हमने हॉस्टल की व्यवस्था कराई है
1: हाँ।
0: और पूर्ण रूप से व्यवस्था कराई है।
1: और इसी सत्र से क्या उन्हें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलेगा?
0: जी हाँ,
1: मिल जाएगा।
0: एएनएम में तो नहीं मिलता, लेकिन जीएनएम और बीएससी में दोनों में मिलेंगे,
1: दोनों में मिल जाएगा, यानी पैसे की समस्या भी नहीं है। तो गोरौल और उसके आसपास वालों, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर साहब से अगले एपिसोड में और बातचीत होगी। जब आपके रिस्पांस आना शुरू होंगे, आपके सवाल आना शुरू होंगे, तो हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब आप आए रोजगार कार्यक्रम में, और एसएस प्रोफेशनल में जो बीबी और बीसीए है वो तो एज इट इज है, अभी
0: एज इट इज है, उसी का ग्रुप, उसी ट्रस्ट के अंतर्गत ये गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब तो समय निकाल कर आए, कार्यक्रम किया गोरौल वालों के लिए, पास वालों के लिए, और बहुत अच्छी जानकारी देके चले गए कि गोरौल में स्थापित हुआ गोरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। कहते हैं ना कि आप लोगों ने फोन किया और एसएस प्रोफेशनल के बाद उन्होंने बीबीए और बीसीए के बाद कमिट किया था कि हम बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और एएनएम लेके आएंगे आपके लिए, वो तो आ गए। अब आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि जो गार्जियन अपने बच्चियों को बाहर नहीं भेज पा रहे थे, जो लड़के हाँ प्रोफेशनल पढ़ाई करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, पास पड़ोस, चाहे वो राजा पाकर हो, हाजीपुर हो, जंदाहा हो, महनार हो, गोरौल हो, भगवानपुर हो, या कहीं भी आसपास के

0: इलाके के जो भी युवा साथी हैं, जिन गार्जियन हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम सुना, अगर आप चाहते हैं बात करना डॉक्टर साहब से तो नंबर है 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर 9155558888। और अब राजेश को दीजिए इजाजत, रोजगार कार्यक्रम खत्म करने की। मुलाकात होगी अगले रविवार के दिन इसी समय इसी मीटर पर, आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गरौल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस।
2: तो उदय भाई, हम लोग सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम रोजगार, और अब कुछ बातचीत हो जाए हमारे किसान भाई बहनों के लिए।
3: देखिए, बातचीत उपयोगी बातचीत,
2: उपयोगी बातचीत,
3: और उपयोगी बातचीत ही करें कि जो हमनी के पशुधन बा ओकरा में टीकाकरण, टीकाकरण तो सामान्य रूप से सब आदमी समझते बा, टीका लग भी रहल, टीका जो हमनी का लगाई ले तो टीका से जो हमनी के पशुधन बा ओकरा प्राकृतिक रूप से बीमारी से लड़े के क्षमता मिल जाला। ओकरा अलावे कुछ कुछ चीज में जैसे कुत्ता उत्ता के होला, ओकरा के जे हमनी के टीका लगाइले वो ऐसे लगाइले कि कहीं भी ओकरा अंदर के जे रैबीज बा ओकर संक्रमण जे बा मानव शरीर में ओ तरह से ना पहले, और वो रैबीज जे बा नुकसान ना पहुँचा। तो ऐसे ये आवश्यकता होला कि हमनी का टीका जरूर लगाएं
2: समय समय पर जो भी है, और जिसमें पशुओं को रोगों से बचाने के लिए जो विशेष दवाएं हैं या टीका है, ये जो पशुओं की, जैसा कि आपने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाता ही है और उन्हें खतरनाक रोगों से सुरक्षित भी रखता है। और अगर हम लोग पशुओं में होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में या संक्रमण के बारे में बात करें, तो आपने तो कहा कि रेबीज हुआ, फिर उसी तरह मुंह पका रोग, गलघोटू, लंगड़ी बुखार, तो लेकिन अगर समय पर सही समय पर उनका टीकाकरण ना किया जाए तो ये जो रोग है वो तेजी से फैलते हैं, जिससे काफी नुकसान हो सकता है।
3: सही बात, सुमा बहन, एक आध बीमारी के रूप में चर्चा करनी है, लेकिन सामान्य तौर पर जो रेबीज बा हम तय सामान्य रूप से कहनी है, बहुत सारा रोग होला जो पशु धन के प्रभाव में ले वाला, गलघोटू बा जेकरा के हमनी के एचएस कहिले, मुंह पका, खुरपका, लंगड़ा बुखार, चेचक होला, खास तौर पर ये भेड़ बकरी सबके होला, फिर वही तरह से पीपीआर होला, पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेट, यो सब भेड़ बकरी में ही होला, एकरा खातिर भी टीका दियाला, ई टीवी होला, तो टैक्सीमिनिया, वही तरह से रेबीज के तो बात हमने कहबे कहीं, स्वाइन फीवर वगैरह भी होला, जो शुअर में बहुत जगह लोग शुअर पोसेला, आप पोस के शुअर के तो हमने का समझते बने, वो भी जेबा हमने खातिर लाभप्रद जेबा पशु बा, तो ये सब जेबा ओकरा में सबके टीका के समय निर्धारित बा, और वो हिसाब से यदि हमने का टीका दिवाई तो हमने का,
2: अब जैसे हम ही लोग, हम लोग मानव में बच्चे जब जन्म लेता है तो हर महीने हर साल अलग अलग टीका उसके लिए निर्धारित है, तो ये सब तो हमारे जो पशु हैं इनसे भी है, जब हम लोग लाभ लेते हैं तो उनसे संबंधित जो टीके हैं, ताकि उनको कोई भयंकर बीमारी ना हो, कोई ऐसा रोग ना हो जिससे उन्हें तो नुकसान पहुंचेगा ही, लेकिन उनसे जो हम लोग आसपास जुड़े लोग हैं उन्हें भी नुकसान हो सकता है।
3: अब देखिए, जैसे हमने कि हम गलघोटू होला, बड़ा परेशान करेला, साल में दो बार एकर टीका दियाला, और ये जून में और दिसंबर में एकर टीका देवल जला, आ चमड़ा के नीचे 5 मिलीलीटर, हाँ देख ले मैंने सुइया गाय माला ला सुइया कैसन होला,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: वो जब 5 मिलीलीटर दियाला, एकरा से गलघोटू से रक्षा हो जाला, घर घर जाके सरकार के योजना के तहत अब मुफ्त में भी टीकाकरण चल रहा बा, वही तरह से मुंह पका, मुंह पकल, खुर पकल, यो सब मोटा मोटी समय अंतराल ही है बा, 6 महीना के अंतराल पर दियाला। एक चीज ध्यान देखे के जे सुमा बहन, सबसे आवश्यकता होला कि गर्भवती
2: जो पशुधन
3: बा ओकरा के टीका ना लगावे के चाही। टीका लगावे के पहले 10 दिन 15 दिन का पहले ओकरे के कीड़ा के दवाई देती,
2: अच्छा
3: कीड़ा के दवाई देती, ओकरा से कीड़ा ओकर नष्ट हो जाए, ये भी ध्यान रखें कि जी बीमार पशुधन जो ना का बीमारी बा,

0: चाहे असामान्य स्थिति में
1: स्थिति में।
0: बा, एकदम
1: हाँ
0: थाकल बा, हारल
1: हाँ
0: बा, तो ओकरा के टीका ना लगाई। कई बार कहीं कि कुछ ना कुछ तो ओकर प्रभाव होला
1: प्रभाव
0: नु।
1: एकदम।
0: जैसे हमनी के याद बा, लइकाई में जब टीका लगे स्कूल में तो
1: हाँ
0: घरे आवत आवत बुखार हो जाए,
1: बुखार
0: भले
1: होता।
0: एक दो दिन
1: हाँ एक
0: रहे,
1: ही लेकिन होता ही था।
0: लेकिन
1: हाँ
0: एकदम जे बा नु चौवनी खानी के चिन्हा होके
1: हाँ
0: आ घरे आवत आवत
1: जब
0: जे बा
1: बुखार।
0: से
1: हाँ
0: बुखार
1: वो तो
0: के
1: है।
0: तरह बुझाए लगे। तो ई होला वही तरह से। तो यदि अस्वस्थ पशु के वो तरह से दियाई तो ओकरा के झेल पावे में उनका थोड़ा शारीरिक रूप से परेशानी होला।
1: हाँ
0: तो ऐसे ही सब चीज पर ध्यान
1: लेकिन अभी तो
0: रखा।
1: इस सब में काफी जागरूक भी हमारे किसान
0: हाँ
1: भाई हो
0: हाँ हाँ
1: चुके हैं,
0: निश्चित निश्चित।
1: पशुपालक लोग, और सरकार भी इस तरह के समय समय पर, जैसा कि आपने कहा कि पशु टीकाकरण अभियान उनके द्वारा भी चलाया जाता है, ताकि पशुपालक जो हैं अपने एक कर्तव्य समझकर कि पशुओं को नियमित टीकाकरण वो करवाए, और पशु चिकित्सकों की सलाह से ही नहीं कि
0: हाँ
1: जो मन में आया वो दे दे, ताकि, और ये सब चीजें लोगों में जागरूकता भी फैलाने की आवश्यकता
0: अब
1: है,
0: लोग
1: क्योंकि
0: जानता
1: हाँ
0: बुझता ऐसे
1: हाँ
0: नहीं
1: पर
0: है,
1: हाँ तो किसान
0: लेकिन
1: बोले ना कि जागरूक तो हो गए।
0: हमनी के काम का हो, जैसे
1: हाँ
0: उत्प्रेरण, जैसे
1: हाँ
0: माने रुआ दिमाग में बात कोनो नहीं खे आई तो हमनी के काम आपके टन से
1: टन
0: बजा
1: से
0: के
1: बजा दीजिए ताकि वो सजग हो जाए,
0: सके।
1: सचेत हो जाए हमारे किसान भाई। तो हमारे किसान भाई सजग रहे, सचेत रहे, और नियमित
0: लाभ
1: रूप से
0: लाभ
1: अपने पशुओं
0: के
1: धन की सेवा तो करें ही, और समय समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। तो चलिए इसी बात पर हम लोग मीना मिश्रा से सुनते हैं एक लोकगीत।
0: सुनेंगे।

0: क्षमा बहन, विद्यापति गीत रल और मीना मिश्रा अपने सुनाओ तरली है। धन्यवाद दिया, अंतिम प्रस्तुति रल मीना जी के, और समय अब संपन्न हो गई बा,
1: चलने का समय हो चला
0: हाँ,
1: है।
0: हाँ,
1: तो चले तो उदय भाई को नमस्कार।
0: नमस्ते क्षमा बहन।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे
1: जीन्स।
2: रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दी,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: हो गया इंतजाम।
4: किसका?
5: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले, और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दिया भरोसा, TRE4 भर्ती परीक्षा के लिए शीघ्र जारी की जाएगी अधिसूचना। केंद्रीय पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, केंद्र सरकार पशु विकास के लिए कर रही है गंभीर प्रयास। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजगीर में एक महीने तक चलने वाले मलमास मेले का शुभारंभ किया। 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि TRE4 भर्ती परीक्षा के लिए जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी। श्री तिवारी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग परीक्षा के आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुटे रहे, बहुत जल्द अच्छे परिणाम आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है और शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी अधिसूचना जारी करें।
0: केंद्रीय पंचायती राज, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार पशुओं के नस्ल सुधार के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। मुंगेर दौरे पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्णिया के बाद लखीसराय में भी सेक्स सॉर्टेड सीमेन प्लांट की स्थापना की गई है। इससे पशुओं के विकास और दुग्ध उत्पादन में काफी लाभ होगा।
2: मदर डेयरी का भी काम बहुत तेजी से जमालपुर में शुरू होगा, डेयरी का। और इसके साथ साथ पशुओं के विकास के लिए और पशुओं के जो दूध देने की क्षमता है उसको आगे बढ़ाने के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन का इस्तेमाल करने को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसके लिए भी एक पूर्णिया में बना है सेक्स सॉर्टेड सीमेन का प्लांट और एक लखीसराय में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सेक्स सॉर्टेड सीमेन का प्लांट लगाएगा, फॉर्म लगाएगा, ताकि अच्छे क्वालिटी का सीमेन कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग हो सके।
0: श्री सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर के विभिन्न भागों का दौरा किया और क्षेत्र में चलाई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री के ईंधन बचाओ की अपील का स्वागत किया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को इसे जरूर अपनाना चाहिए।
3: नरेंद्र भाई मोदी जी, जो आज है समस्या आ गई हम लोगों के सामने, विश्व समस्या है, खास करके पश्चिम एशिया का, उसके चलते उन्होंने सावधान किया है कि एक संयम बरतने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई गलत बात नहीं कही है, एकदम ठीक बातें हुई है, उसको अपनाना चाहिए। इससे कोई ऐसा ना समझना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई चीज थोपा गया है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार लगातार सक्रिय है। पटना में

0: संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री सरावगी ने कहा कि जिन लोगों ने बच्चों के भविष्य से खेलने का प्रयास किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
1: केंद्र की सरकार लगातार सक्रिय है, जो भी इसमें मास्टरमाइंड से लेकर जो लोगों ने यह इतना बड़ा अपराध किया है, बच्चों के जीवन से खेला है, उसको किसी हालत में भी सरकार बकसने वाली नहीं है। लगातार कार्रवाई हो रही है, सीबीआई को जांच दी गई और उसके साथ साथ बड़ी मात्रा में कार्रवाई हो रही है।
0: पथ निर्माण मंत्री शैलेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र भागलपुर के बिहपुर में एक खेल स्टेडियम स्थापित किए जाने की मांग रखी है। श्री शैलेंद्र ने युवाओं के कौशल विकास, रोजगार के अवसरों के विस्तार और श्रमिक हितों से जुड़े तमाम विषयों पर चर्चा भी की। केंद्रीय मंत्री श्री मांडविया ने उन्हें सकारात्मक पहल का भरोसा दिया है। देश का प्रमुख औद्योगिक संस्थान अडानी समूह बिहार के संरचनात्मक विकास के क्षेत्र में अगले 3-4 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगा। समूह के प्रमुख गौतम अडानी ने आज सारण जिले के मस्तीचक में 150 करोड़ रुपए की नेत्र चिकित्सा पहल की शुरुआत करते हुए ये घोषणा की है।
2: हमारा टारगेट है कि कम से कम 50,000 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर नेक्स्ट 3-4 साल के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, और अखंड ज्योति के साथ में ये खाली मस्तीचक तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे बाकी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां जहां जरूरत होगी मृत्युंजय तिवारी जी टीम फिजिकली जो पूरा देखेंगे।
0: अडानी समूह अखंड ज्योति आई अस्पताल के सहयोग से सारण में अत्याधुनिक नेत्र चिकित्सा केंद्र और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर रहा है। इसके तहत आज भूमि पूजन का आयोजन किया गया। समूह प्रमुख गौतम अडानी ने बिहार की भूमि को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान की भूमि बताते हुए कहा कि यहाँ आकर उन्हें शांति का अनुभव हुआ है।
2: यह भूमि सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। गायत्री शक्तिपीठ में आकर मुझे एक शांति का अनुभव हुआ और समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए एक नई प्रेरणा मिली।
0: प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकानों की गिनती और उनके सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामान, उपलब्ध सुविधाएं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। गणना कार्य को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न जिला प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। इसके माध्यम से लोगों की शिकायतें और आपत्तियों का निष्पादन भी किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के भारत नेपाल सीमा के करीब रक्सौल बीरगंज मैत्री पुल पर एसएसपी जवानों ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। संदिग्ध व्यक्ति से प्राप्त पासपोर्ट के आधार पर उसकी पहचान चीनी नागरिक याओ सू जांग के रूप में की गई है। सुरक्षा एजेंसियां उसके भारत में प्रवेश के उद्देश्य, उसके संपर्क और गतिविधियों की जांच में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। श्री शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार और पार्टी संगठन के बीच समन्वय भाजपा की असली ताकत है। श्री जायसवाल आज किशनगंज में पार्टी के 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान जिला प्रशिक्षण वर्ग 2026 के समापन सत्र में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
2: भारतीय जनता पार्टी का लगातार कार्यक्रम और प्रशिक्षण चलता रहता है। हम चुनाव के दूसरे दिन से ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण वर्ग जो है, कार्यकर्ताओं को और सरकार के साथ कैसे समन्वय और भी संगठन कैसे मजबूत हो, इसके लिए ये प्रशिक्षण वर्ग लगाया है।
0: पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र भी प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन, विचारधारा और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नालंदा जिले के राजगीर में मलमास मेले का शुभारंभ किया। ये मेला 15 जून तक चलेगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री चौधरी ने कहा कि सनातन धर्म के 33 करोड़ देवी देवता एक माह के लिए राजगीर में प्रवास करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को मलमास मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को हर प्रकार की सुविधा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। राजगीर तीर्थ रक्षार्थ पंडा समिति के सचिव विकास उपाध्याय ने बताया कि इस वर्ष करीब 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इधर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए 950 दंडाधिकारी की निगरानी में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश भागों में उमस के साथ तेज गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज किए जाने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
3: दिनांक 18 मई राज्य के बक्सर, पूर्वी चंपारण एवं शेखपुरा जिलों में उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना।
4: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहा बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने संग्रहालय दिवस के अवसर पर अपने संदेश में कहा कि संग्रहालय वर्तमान और अतीत तथा भविष्य के बीच सेतु का काम करते हैं। ये हमें विरासत से जोड़ते हैं और भविष्य के लिए प्रेरित करते हैं। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जाँच करें और इस बीमारी को हराएं। इस अवसर पर कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बिहार इकाई की ओर से पटना समेत कई जिलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 80 नए अग्निशमन वाहनों का लोकार्पण और AI आधारित अग्नि नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इससे राज्य अग्निशमन सेवा को अधिक सशक्त और आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे होगा।

0: जहानाबाद जिले के अरवल मोड़ के समीप साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रचार प्रसार किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के प्रति जागरूक किया गया। भारत स्काउट एंड गाइड की टीम ने जहानाबाद के उर्दू कन्या विद्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दिया भरोसा, TRE-4 भर्ती परीक्षा के लिए शीघ्र जारी की जाएगी अधिसूचना। केंद्रीय पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, केंद्र सरकार पशु विकास के लिए कर रही है गंभीर प्रयास। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजगीर में 1 महीने तक चलने वाले मलमास मेले का शुभारम्भ किया। 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: RBI कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
7: को आई एम हियर।
8: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
7: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
7: देखा
8: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
8: फ्री वाईफाई है ना?
7: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
8: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
10: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गया जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती।
11: बीते दिनों राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी गया जिले के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जिले में यह उनका पहला दौरा था। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर NDA कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। एयरपोर्ट से लेकर विष्णु पद मंदिर, महाबोधि मंदिर और शंकराचार्य मठ तक पूरे मार्ग पर राजनीतिक उत्साह, धार्मिक आस्था और शक्ति प्रदर्शन का माहौल दिखा। जगह जगह बैंड बाजा और फूल मालाओं से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। श्री चौधरी सबसे पहले विष्णु पद मंदिर पहुँचे, जहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने प्रस्तावित विष्णु पद कॉरिडोर और घाटों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री बाद में बोध गया पहुँचे, जहाँ उन्होंने महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन किए और प्रस्तावित बोध गया कॉरिडोर की योजनाओं का जायजा लिया। दौरे के अंत में मुख्यमंत्री शंकराचार्य मठ पहुँचे और वहाँ आयोजित आम सभा को संबोधित किया। इधर प्रस्तावित विष्णु पद मंदिर कॉरिडोर को लेकर पंडा समाज के लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। मंदिर के विश्राम गृह में सैकड़ों की संख्या में पंडा समुदाय के लोग जुटे और विष्णु पद क्षेत्रीय जन जागरण मंच नामक संस्था का गठन कर कॉरिडोर निर्माण के विरोध में बैठक की। बैठक में विष्णु पद प्रबंधन कारिणी समिति के अध्यक्ष शंभु लाल विट्ठल ने कहा कि शुरुआत में उन्होंने कॉरिडोर निर्माण का समर्थन किया था, लेकिन वर्तमान नक्शा में गयापाल पंडों के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। ऐसे में वर्तमान स्वरूप में कॉरिडोर निर्माण स्वीकार नहीं होगा। पिछले दिनों वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के गया आगमन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और बिहार विधानसभा

0: सभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से वियतनाम के राष्ट्रपति सड़क मार्ग से बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए। इसके बाद वे वियतनामी मठ भी गए। दिन भर के कार्यक्रम के बाद वे देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वैश्विक ईंधन संकट के बीच तेल विपणन कंपनियों ने देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर 3.14 रुपए जबकि डीजल की कीमतों में 3.11 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कहा कि खाड़ी देशों में जारी युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, जिसका प्रभाव पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 7 महत्वपूर्ण अपील की है और संकट के इस घड़ी में सभी को देश के साथ खड़ा होना चाहिए।
1: खाड़ी देशों में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई जाकर के लगातार युद्ध हो रहे हैं, उसका असर दुनिया पर हो रहा है, उसका असर डीजल पर हो रहा है, पेट्रोल पर हो रहा है। इसीलिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है होम टू वर्क, सोना न लोग खरीदें जाकर, और कम से कम डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करें, खेतों में खादों का प्रयोग कम करें, जैविक खेती को बढ़ावा दें। संकट घड़ी में हम सबको मिल करके देश के माननीय प्रधानमंत्री खड़ा होना जाकर।
0: जिले में भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। प्रगणक घर घर जाकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इधर जिले में किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए किसान पंजीकरण अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके लिए प्रशासन की ओर से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिले के नादरागंज ब्राह्मणी घाट निवासी छात्र शुभम कुमार ने जेईई मेन परीक्षा में एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने जेईई मेन 2026 के सेशन 2 में 100% अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। खास बात यह है कि इससे पहले भी वह सेशन 1 में 100% अंक हासिल कर चुके हैं। लगातार 2 बार यह उपलब्धि हासिल कर शुभम ने पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। इधर अग्निवीर भर्ती वर्ष 2026 के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परीक्षा 1 जून से 15 जून तक आयोजित की जाएगी। गया स्थित भारतीय सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण बिहार के 11 जिलों कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और जमुई से कुल 38,040 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। भर्ती कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जल्द ही भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
2: अभी आप सुन रहे थे गया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता धर्मवीर भारती।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुनिए गीत श्रीमती डे की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुन रहे थे गीत श्रीमती डे की आवाज़ में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आप सुनिए अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार और साथियों की आवाज़ में तेजाब फिल्म के इस गीत को। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीतकार हैं जावेद अख्तर।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश अनुराधा पौडवाल और मनोहर उदास की आवाज में। फिल्म है हीरो, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीतकार है आनंद बख्शी।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। अगला गाना सुनिए अग्नि साक्षी फिल्म से, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। संगीत नदीम श्रवण का है और गीतकार हैं सभी।

कार्यक्रम में अगला गाना फिल्म इश्क में सुनिए, कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़, अनु मलिक का संगीत और राहत इंदौरी के गीत।

फिल्म संगीत में अगला गाना सुनिए उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाज में। संगीत यार रहमान का है, गीतकार हैं गुलजार और फिल्म है दिल से।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुनिए गजल शोभना राव की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुन रहे थे गजल शोभना राव की आवाज़ में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन

0: कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित चार लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वरीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपिन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, इन तीनों को जोड़ने वाला एक संस्था।

0: स्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
0: टुडे वी हैव सक्सेसफुली मैनेज्ड।
2: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्याधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्याधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
0: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट

को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए

ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे 4 दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गुजरात में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी विलशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने दो रोज़ा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की सूरत हाल और आलमी सतह पर तवानाई की सप्लाई, नेस तजारती नेटवर्क पर इसके असरात पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को फ़रोग देने और आबी वसायल, सेमी कंडक्टर्स, इख्तिरा, दिफा, पायदारी और नकलो हमल के शोबों में तआवुन को वसी करने के बारे में एक खाका तैयार किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में आज स्वीडन के शहर गोदनबर्ग पहुंच गए हैं, जहां उनका खैर मकदम गोदनबर्ग लैंडवेटर हवाई अड्डे पर स्वीडन के वजीर आजम वुल्फ क्रिस्टर्सन ने किया। जैसे ही वजीर आजम का तैयारा स्वीडन की फजाई हदूद में दाखिल हुआ, मेहमान खसूसी के तौर पर उनके हवाई जहाज की मुहाफजत स्वीडन के ग्रिपन लड़ाई जेट तैयारों ने शुरू कर दी। वजीर आजम मोदी को हवाई अड्डे पर बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उनका इस्तकबाल भारतीय बिरादरी के अरकान ने बड़ी गर्मजोशी से किया। इस दौरे की खासियत दो वज़रा आज़म की एक मुश्तरका खिताब है जो वो सनद से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से करेंगे। सीओज की इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी के साथ यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वोन देर लेयन शामिल रहेंगी। गोदनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तिजारत, एआई, स्टार्टअप समेत मुख्तलिफ शोबों में तबादले ख्याल करेंगे। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन की क्यादत में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में हलफ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वी डी सतीशन को केरलम का अगला वजीर आला नामजद किया था, जिसके साथ ही 10 दिन से जारी सियासी ड्रामा और गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो गई। कांग्रेस की क्यादत वाले मुत्तहदा जमहूरी महाज यूडीएफ ने केरलम असेंबली इंतखाबात में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल की। तहम मुख्तलिफ ग्रुपों की लॉबिंग और कारकुनों के एहतजाज के बायस मस्कूरा इत्तेहाद वजीर आला के नाम पर फैसला नहीं कर पा रहा था। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: कांग्रेस के सीनियर लीडर वी डी सतीशन कल केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमरा 20 दिगर वजरा भी हलफ लेंगे। नामजद वजीर आला वी डी सतीशन ने आज शाम गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें वजरा की फेहरिस्त पेश की। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 अफराद के बैठने के इंतजाम समेत वसी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज गुजरात के शहर गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID के इख्तरा और इब्तदाई कारोबार के मरकज का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने इस मौके पर इस इदारे की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा इदारा है जो तख्लीकी सलाहियत को कारोबार से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे इदारे नौजवानों को इख्तरा और पेशेवराना तरक्की के मौजूं प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं।
3: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी इस मौके पर मौजूद थे। जनाब शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने आज गांधीनगर में मदर डेयरी के 5 लाख लीटर की गुंजाइश वाले नव तामीर शुदा प्लांट का भी इफ्तिताह किया। अहमदाबाद में उन्होंने मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी मरकज कैंपस का भी इफ्तिताह किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026

के लिए पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा है कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतअल्लिक तकरीब के दौरान पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड्स अता करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमुई तौर पर 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। रेलवे की वजारत ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डिब्बों में आग लगने के वाकये की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया है। आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे कोटा डिवीजन के नागदा जंक्शन के करीब त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डिब्बों में आग लग गई। इन डिब्बों में एक गार्ड कोच और एक AC 3 टियर कोच शामिल था। वजारत के मुताबिक कोच में नस्ब हिफाजती निजाम फौरी तौर पर मुतहरिक हो गया और ट्रेन खुद ब खुद रुक गई। ट्रेन के अमले ने फौरन आग से मुतासिर दोनों डिब्बों को अलग किया, जिसकी वजह से किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान रेल कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ है। जनाब वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि जनूबी और मशरकी कर्नाटक के लोगों का एक देरीना मुतालबा पूरा किया जा रहा है। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि उम्मीद है कि बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू हो जाएगी। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार की जानिब से हवाई जहाजों के ईंधन ATF पर वैल्यू एडेड टैक्स को 25% से कम करके 7% करने के फैसले की तारीफ की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब हवाबाजी का शोबा आलमी सतह पर ऑपरेशनल और माली दबाव का सामना कर रहा है, रियासती हुकूमतों के इस किस्म के सरगर्म इकदाम एयरलाइंस को जरूरी सहारा फराहम करते हैं और मुसाफिरों के लिए फजाई सफर को सस्ता रखने में मदद फराहम करते हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि महाराष्ट्र के विदर्भ जिले में किसानों की खुदकुशी की एक बड़ी वजह पानी की किल्लत है। उन्होंने ये भी कहा कि पानी की बचत इस बुहरान का मुअस्सर तरीन हल है। नागपुर में कौमी कॉन्फ्रेंस नागपुर जल संवाद से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि पानी के तहफ्फुज़ से मुतअल्लिक कोशिशों की कामयाबी के लिए लोगों का इनमें हिस्सा लेना लाजमी है। उन्होंने ग्राम पंचायतों से कानून साज अरकान तक तालमेल के साथ उठाए गए इकदाम पर जोर दिया ताकि गांवों और किसानों की खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। नशीली अशिया पर काबू पाने वाले ब्यूरो NCB ने मुल्कों के माबैन नशीली अशिया की नाजायज तिजारत के उन नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है जो भारत म्यांमार सरहद पर अपनी कार्रवाइयां अंजाम देते हैं। ब्यूरो ने म्यांमार में मुकीम सरगना थांगकिंग तुआंग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। NCB ने एक बयान में कहा है कि यह गिरफ्तारी वसी तौर पर निगरानी खुफिया मालूमात में इजाफे तालमेल के साथ किए जाने वाले बैन रियासती तालमेल और लगातार पीछा करने की कार्रवाइयों की बदौलत की गई है। थांगकिंग तुआंग कई तरह की मनशियात और नशीले मादों के कानून के तहत मतलूब था। ये केस NCB और मनशियात से मुतअल्लिक कानून नाफिज करने वाली कई एजेंसियों ने दर्ज की थी, जिसमें से NCB ने दो केस दर्ज किए थे। नई और काबिले तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की बिजली की मांग को पूरा करने में, जो अब तक की सबसे बड़ी मांग है, कामयाबी हासिल की है। एक प्राइवेट अंग्रेजी रोजनामे के साथ बातचीत में जनाब जोशी ने कहा कि बिजली की 33% मांग काबिले तजदीद तवानाई के वसायल से पूरी की गई है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस बड़ी तब्दीली से तवानाई की सलाहियत में बड़ी तेजी से इजाफे, ग्रिड को मुस्तहकम बनाने और मुल्क की तरक्की के सफर को तकवीत देने में माहौल के लिए साजगार तवानाई के बढ़ते हुए हिस्से का अंदाजा होता है। रूस में मास्को और आसपास के इलाकों पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में 4 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें एक भारतीय मजदूर भी शामिल है। मास्को के मेयर सरगेई सुबियानिन ने बताया कि रात भर हुए इन ड्रोन हमलों में कम से कम 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रूस के हुक्काम के मुताबिक मास्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को तबाह भी किया गया है। यूक्रेन के सदर विलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए इन्हें दुरुस्त कार्रवाई करार दिया।

0: इस दौरान रूस में भारतीय सफारतखाने ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में बताया कि मास्को को मुख्तलिफ इलाकों में हुए ड्रोन हमलों में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। सफारतखाने ने मजीद बताया कि सफारतखाने के अहदेदारों ने हादसे की जगह का दौरा किया और अस्पताल में जेर इलाज जख्मी मजदूरों की कैफियत दरियाफ्त की। भारत के महकमे मौसमियात का कहना है कि जनूब मगरबी मानसून इस माह की 26 तारीख को केरलम में दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि मॉडल एरर की बुनियाद पर इसमें 4 रोज आगे या पीछे होने की भी गुंजाइश है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के जनूब मशरकी बहिरे अरब के कुछ मजीद हिस्सों जनूब मगरबी और जनूब मशरकी खलीज बंगाल अंडमान जजायर और बहिरे अंडमान के बाकी हिस्सों और मशरकी वस्ती खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 रोज के दौरान हालात मुआफिक रहेंगे। महकमे मौसमियात ने कल मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी की पेशगोई की है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ मध्य प्रदेश पंजाब राजस्थान तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान जाहिर किया गया है। बैडमिंटन में आज चीन में बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने बाओजी सिटी जिम्नेशियम में सुपर 100 के फाइनल में चीन की एन क्वी युआन को सीधे सेटों में 14-21, 6-21 से शिकस्त खाई, लिहाजा उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के जरिए दिए गए 223 रन के निशाने को हासिल करते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 199 रन ही बना सकी। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दिन के एक और मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 194 रन का निशाना रखा है। इससे कबल दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने तो रोजा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 मुआहदों पर दस्तखत किए। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतेसन को कल केरलम के नए वजीर आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा नाटक कूपे।
2: ये है मेरा कूपे। जूडिस का प्रोग्राम अचानक बदल गया। मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो तो?
3: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता।
2: कूपे में भी?
3: क्यों, कूपे में क्या है? 2 बर्थ है, उन पर कोई भी 2 यात्री सफर कर सकते हैं। 2 स्त्री 2 पुरुष या 1 स्त्री 1 पुरुष।
2: जी हाँ, 1 स्त्री और 1 पुरुष 2 ही होंगे इस कूपे में। अच्छा सफर कटेगा।
3: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद

0: बिल्कुल नहीं आएगी।
1: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
0: वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग।
2: अच्छा, मैम साहब आ गई। आप तो कह रहे
1: थे। सुनो कलेक्टर, 2 कप कॉफी मिलेगी। लेकिन रुको शांतना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया है।
0: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर, मेरे लिए केवल एक कॉफी।
2: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
1: मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा। 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना ना, अब और मन को नहीं मार सकता।
0: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
1: ओके, लौट कर बातें होंगी।
0: ओके।
2: मैम साहब, ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
0: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला। सोने से पहले अपनी डायरी लिख लो। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं। वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं, न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है। वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा,
3: हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची। कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही। ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है। मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही।
0: अच्छा,
3: मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
0: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
3: मेरी शादी नहीं हुई है।
0: क्या?
3: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर है, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं। उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
0: आप कितने दिन से घूम रही हैं?
3: कई वर्ष हो गए। आपके बहुत मित्र हैं।
0: स्वाभाविक है,
3: अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ। उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
0: बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, LSD आदि का सेवन करती हो?
3: करती हूँ। उनसे मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
0: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाए जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं, महात्माओं, योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
3: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उथार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
0: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ है जो परिवार के शासन से परेशान है, कुछ को आज के शोषण की राजनीति त्रस्त करती है। वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं। ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे।
3: आती हूँ।
2: बाहर भी वर्षा होकर चुकी।

0: मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है।
1: अरे आप एक लिखे जा रही हैं? कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद, देख सकता हूँ?
2: ये मेरी डायरी है।
1: तब नहीं देखूंगा, डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
2: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
1: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी।
0: खिड़की खोल दूं, वर्षा से भीगी हवा है।
1: मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
2: सब काम पूछकर ही करते हैं आप।
1: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीती हैं?
2: पीती तो नहीं, पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
1: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
2: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
1: प्लीज, साथ देने के लिए एक पैक।
2: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
1: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊं तो?
2: पीजिए।
1: बुरा मान ली, प्लीज। बात यह है कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत घूमा हूँ हिप्पियों के साथ, जिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज हैं ये विदेशी युवतियां, बड़े मजे के साथ कह सकती हैं लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूँ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
2: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ।
1: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
2: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
1: गणित विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
2: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
1: आप ऊपर कैसे जाएंगे?
2: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है, आप पुरुष है ना। मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
1: नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुरा कर लौट गया। अरे अब फिर नाराज हो रही है? प्लीज।
2: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
1: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ। We have made love many times. लेकिन वहां गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। सिर्फ दिख भी तो यही था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडिथ को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे।
2: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
1: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई, तुम उससे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक। तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरी बाल।
2: बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
1: प्लीज, अभी कुछ देर और बैठूंगा।
2: बैठे रहो।
1: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ?
2: नहीं।
1: तुम्हें छू सकता हूँ?
2: नहीं।
1: मेरी प्रेम कहानियां सुनोगे?
2: नहीं।
1: क्यों?
2: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं। वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व तो एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया, जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो।
1: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
2: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
1: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सांत्वना।
2: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं। प्रेम निर्लज्ज नहीं होता।
1: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचा

0: बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
1: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही हैं। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में। माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह। व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं। स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने
0: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे, उस आनंद को? मेरे पास है, पियोगी।
1: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
0: और न जाऊं तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज शांत होना, प्लीज।
1: नहीं नहीं, पीछे हटो, हटो पीछे।
0: मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं हटूंगा। किसी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया।
1: लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए। मत तेज पूंछ, औरत उसके तेज को छीनने वाली है।
0: देखो,
1: ये दलीलें अब्बासी होती
0: हैं। प्लीज,
1: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश्या।
0: अब मैं नहीं,
1: मैं कहती हूँ तुम क्षण उत्तर चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं।
2: सांत्वना,
1: कौन है, क्यों आए हैं इस समय?
3: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
3: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ। लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
1: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
3: देखिए, मुझे नींद कम आती है, आप लोग शोर मचाएंगे तो विवश होकर मुझे।
1: क्या मतलब है आपका?
3: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं। इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सके।
4: सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था। कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
1: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। मैं माफी चाहती हूँ।
3: ठीक है, मैं जाता हूँ। गुड नाइट।
4: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ।
0: मुझे बहुत दुख है दरअसल।
1: चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: नसीब का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडेट, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है, जिनके लिए देह ही सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही है? अंतर में कहीं न कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तो न मानोगी, एक बात पूछूं?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम माँ बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
1: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार के बाद तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
0: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
1: लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
0: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
1: देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहते हैं कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
0: इसका अर्थ समझी?
1: समझी। वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
0: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही

0: है अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है क्या नहीं है? कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। स्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई। देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था? कौन हो तुम? मैं कौन हूं ये पूछने का साहस है तुमने? अपने अंतर में झांक कर देखो, वहीं से बोल रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो, लेकिन क्या सर्वजीत के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था? अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था? तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा। शत्रु के माया जाल में फंसने की चेष्टा मत करो। ये ठीक है, छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देह का अपमान है। लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो। इसी द्वंद्व से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाहने से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है। इस छद्म को उतार फेंको।
1: सुनो, कहाँ गई तुम? बोलो।
0: कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूँ। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सचमुच मेरा पति नहीं है। मैं डर गई। कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद डिब्बे से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतनी सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं, द्वंद में फंसी मैं भी भटक रही हूँ। क्या इस भटकन का अंत देह के मिलन नहीं है? कहाँ है सत्य? कौन सा छद्म इन तर्कों को ठगे हुए है? किससे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
2: छद्म, ये छद्म है, इस छद्म से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति।
3: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हो।
0: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
3: तुम बहुत अच्छी हो।
0: सच?
3: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
0: अच्छा, अब सो रही हूँ। गुड नाइट।
3: गुड नाइट।
4: बहुत देर से आई हो। कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
0: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
4: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गए?
0: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।
4: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगेज मिला, शायद खराब था।
0: हाँ शायद, असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर

0: सरकार का रख दिया था।
1: हाँ, यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगे मामा?
0: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को।
1: पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा।
0: माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं। मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में कांट ना पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती इस सर्वग्रासी एकांत को। क्या मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है? क्या इससे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
2: सांत्वना? सांत्वना, तुम सो गई?
1: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
2: सांत्वना, हम ये लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
1: हाँ, कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
2: तुम शादी कर लो।
1: मैं शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
2: धोखा तुम आप दे रही हो।
1: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ।
2: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है, जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार न बनो, वैसे क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार न बनूं?
1: शिकार? तुम क्या कह रहे हो विनोद? विनोद!
3: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही हो?
1: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
3: या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल,
1: तुम्हें ऐसा होती है?
3: स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बर्थ पर लेटा लेटा।
1: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह एक कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे। बेचारे परवर्टेड।
3: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
1: आप नहीं पूछोगे?
3: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
1: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी।
3: जी में आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालूं और
1: फिर रुक क्यों गए?
3: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
1: तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
3: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी।
1: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य, वो न तन को बांध पाता है न मन को। इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
3: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छंद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना,
1: इसे हटा, मैं कैसे हूँ एक कदम भी आगे न बढ़। कौन आया अब? कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
4: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ, विलायत से कब आए, कैसे हो? और मार्था? ओह, ये मार्था तो नहीं है?
1: मेरा नाम सांत्वना है।
4: ओ, देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरजीत भाई, बधाई हो।
3: निगम, इनसे मिलो, ये है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो कहाँ कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो।
4: हाँ, वो तो है, तो तुम हो भाग्यशाली, अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सलेंट है, वाह। माफ कीजिएगा मिस्टर थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं, यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
1: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
4: ओ आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
1: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप
4: जा रहा हूँ, खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला। तो सरजीत एक

0: बात याद रखो, ये भारत है, यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
1: दरवाजा खुला रहने दो।
0: क्यों?
1: मेरी इच्छा।
0: कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती।
1: तो आपने भी समझने की शक्ति है। स्टेशन आ रहा है, मैं यहीं उतरूंगी।
2: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
1: बड़ी सुंदर जगह है ये।
2: सुंदर तो तुम हो।

0: आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा जा रही हूँ, बुरा ना मानना, प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा नमस्कार, क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
1: नमस्कार। तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
0: कंडक्टर मैं यही उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
2: जी अभी आया, लाइए।
3: मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए।
2: ये लीजिए।
3: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ, खूब बातें करेंगे दोनों। सामान ले।
1: क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है जो एक तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूं।

कूपे। अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल नांगिया, शर्मिला मलखानी, हरि मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। ये कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

ये आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के सभा में प्रस्तुत हैं सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन

0: और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोह में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दीकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार राग चंद्र कंस प्रस्तुत करेंगे। आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
1: दिस इज आकाशवाणी, वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय रेनाउंड फ्लूटिस्ट श्री विवेक सोनार। Born and raised in Chalisgaon, Maharashtra, and inspired by his late father, Shri Ramchandra Sonar, an eminent vocalist of the Warkari Sampradaya, Vivek started playing the flute at a tender age. After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek moved to Mumbai to be professionally trained under Pandit Hariprasad Chaurasia. Vivek thus began his new journey under the maestro who took him into deeper realms of exploration and expression. Flautist par excellence and torchbearer of the Hindustani tradition of classical music, himself a guru to countless disciples as also a composer, Vivek Sonar is one of the leading flautists of India, renowned for his strong command over Tantakari and Layakari styles. Blessed with powerful blowing skill, a multi-talented person, Vivek Sonar is widely regarded by music lovers and critics for having honed unparalleled skills of instrumentation in flute playing. He is also known for his initiatives like his Sui Generis, the Grand Bansuri Utsav, and the Flute Symphony, a magnificent concert that has 111 flutes playing together. Vivek has performed solo as well as jugalbandi concerts with leading exponents of the santoor, sitar, violin and also Carnatic instrumental music in many prestigious music festivals in India. Vivek has performed at many prestigious events like Savai Gandharva Bhimsen Mahotsav Pune, Mogubai Kurdikar Sangeet Samaroh Goa, Hampi Mahotsav in Hampi, Urja Music Festival, Delhi, Pandit Ram Marathe Festival, Thane, Pandit Jitendra Abhisheki Sangeet Mahotsav, Goa, Gunjan Sangeet Mahotsav, Indore, Goa Kala Academy Music Festival. Vivek has received many prestigious scholarships and awards. To name some, Akashwani A-Grade Artist for Indian Classical Flute, Thane Ratna Award by Hindustan Times, Pandit Sangameshwar Gurav Puraskar, Pandit Ram Marathe Puraskar, Surmani title from Sur Shringar Sansad Mumbai, National Scholarship from Union Government of India, Vrindaban Gurukul Scholarship. Tonight Sri Vivek Sonar presents Rag Chandra Kaus Alap, Jod and Madhyalayagat set to Rupak Tal and Dutagat set to Teen Tal. He will be accompanied on tabla by Shri Ojas Adhiya.

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौंस, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: यू आर लिसनिंग टू राग चंद्र कौंस बाय रिनाउंड फ्लॉटिस्ट श्री विवेक सोनार। He was accompanied

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब

0: अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वी डी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honor that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honor for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by the Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defense, critical minerals, and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum to bilateral ties. He said the two countries have charted an ambitious roadmap for the future by elevating ties to a strategic partnership and expanding cooperation in water resources, semiconductors, innovation, defense, sustainability and mobility. He expressed confidence that the friendship between India and the Netherlands will continue to grow stronger in the years to come. He also thanked Prime Minister Jetten for the warm hospitality and for personally coming to the airport to bid him farewell. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in tomorrow in Thiruvananthapuram. Congress had announced Satheesan as the next Chief Minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore.